वेदर के हालचाल जान लेते हैं। 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 7 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला। बारिश के आज भी वैसे आसार दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन यस सनसेट होगा 5:34 यानी कि 34 मिनट, बट इट वॉज अ फ्रीजिंग मॉर्निंग।

नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। आप मुझे सुन रहे हैं हम 104.2 एफएम के जरिए, अगर आप सिटी में हैं तो 87.7 एफएम के जरिए भी मुझे सुन सकते हैं। जी हाँ, वैसे यस, मैं अभी से लेकर 3 बजे तक हूँ यहाँ पे, बहुत सारी बातें होने वाली है। शुरुआत करेंगे होमसिक रेमेडीज में। आप मुझे दिल खोल के मैसेजेस भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि यू नो इफ एनीथिंग यू आर मिसिंग आउट ओवर हियर बीइंग अवे फ्रॉम योर होम टाउन या फिर होम स्टेट, होम रीजन बोले तो, या फिर होम कंट्री, तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 5599 पे। कॉल भी कर सकते हैं 0800-004-866 पे। बट यस, अभी उससे पहले गाना चलाते हैं रोजाना श्रेया घोषाल। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सूदिंग आवाज है। दो ये गाना जो है डेडिकेट किया है एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इतना अमेजिंग गाया है, इतना अमेजिंग फील हो रहा है दैट इवन आई आल्सो फील द सेम। सो यस, और उसके बाद एक बहुत ही नॉन रोमांटिक गाना लेके आता हूँ आप सभी के बीच।

0: What a song, what a song. Mar Jaani. यार पता है क्या, स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार सुना ना तो मैं कहा ये क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं पंजाबी बोलता नहीं हूँ, पंजाबी समझता नहीं था मैं, अभी भी उतनी नहीं है, उतना फ्लुएंट नहीं हूँ मैं, उतनी समझ जो है वो बहुत ही कम है पंजाबी लैंग्वेज को लेके। तभी जब कोई बोलता है तो मेरे को थोड़ा सा जो मेरा ब्रेन है उसको थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है कि भाई क्या बोला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो यस, बट हाँ अगर मैं फोकस करूँ और कुछ कुछ अगर ईजी वर्ड्स आ जाते हैं बीच में तो मैं थोड़ा समझ लेता कि अच्छा ठीक है ये ऐसी बात कर रहे हैं। बट ये जब गाना मैंने पहली बार सुना था तो मैं वही सोचता था कि मर जाने खसमणू क्या पता। मैं एक तो आधे टाइम तो मैंने ना बोलना नहीं आता था मेरे को, फिर मैंने किसी पंजाबी दोस्त, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा दोस्त है पंजाबी, उससे मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या, फिर उसने बताया कि मतलब लेडी कोई बोलती है किसी को, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कर सकते हैं, बट सो क्या एग्जैक्टली क्या मतलब पता नहीं, आई एम अलाउड टू शेयर दिस थिंग, आई थिंक मैं रहने देता हूँ, मैं सिर्फ लोगों से पूछता हूँ। आप मुझे मैसेज करिए ये जो लाइन आई ना उसका एग्जैक्ट मतलब क्या था, खसमनो खानू मर जानी, मतलब मर जा खाके, क्या खाके, खसमनु खाके क्या पता, शायद कुछ खाना होगा, तो मुझे बताइए 5599 पे। ये मुझे बताया मेरे दोस्त ने, अब ये सही है गलत है मेरे को पता नहीं, आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेजिए और बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। आई एम प्रीटी श्योर आपको तो पता ही होगा, अगर आप नॉन पंजाबी भी हैं या फिर यू नो, आई एम प्रीटी श्योर आपको तो ये पता ही होगा, मुझे डेफिनेटली यही बताया गया है कि खसमनु खानू मर जानी, पता नहीं ये यहाँ पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एनीवेज एक मैसेज आया है ओम सिक रेमेडीज का, उसमें बात हो रही है, उन्होंने लिखा है ख्योरा केतन, यस्टरडे वाज ट्यूसडे एंड आई स्पेंड द एंटायर डे डूइंग लॉन्ड्री, ट्यूसडे के दिन लॉन्ड्री, वाओ, बिकॉज आई गेट डे ऑफ ऑन ओके नाउ मेक सेंस, ऑफकोर्स उनको ट्यूजडे को डे ऑफ मिलता होगा। वैक्यूमिंग द कार्पेट, विशिंग डिशेज एंड टेकिंग आउट द बिन्स ऑल बाय माई सेल्फ इन माई फ्लैट, ओके, बैक होम इन इंडिया संडे, सॉरी ट्यूजडे ऑफकोर्स यू नो वहाँ पे तो संडे ही छुट्टी मिलती है मेजोरिटी केसेस में, यू नो फैमिली मैन बारबेक्यू, बीच आउटगोइंग एंड प्लेइंग रग्बी विद कजिन्स व्हाइल द होल हाउस वाज बिजी बजिंग विद लाइफ एंड सेम गोज टू अदर पीपल एज वेल, संडेज बैक होम वर फॉर लेजी मॉर्निंग प्लेइंग क्रिकेट विद नेबरहुड फ्रेंड्स एंड एंजॉइंग ह्यूज फैमिली लंचेस हियर इन ऑकलैंड, weekend I don't usually get but Tuesday I get it, which I try to celebrate it like this, but often feel like just another shift of hard labor doing endless course alone. How do we turn these lonely weekend or so called weekdays, for me it is just a weekend but it is weekdays for many people, how can I use my time where my friends are all busy at work but I am sleeping at home doing nothing or sometimes doing laundry or whatever, we get it. चलिए बात करते हैं इस बारे में, if there's someone over here who wants to share their thoughts, their रिव्यू, आप खुल के मुझे कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पे। बट आई फील या देखिए ये मुझे ही पता, ये ना उस टाइम ये होता था, मतलब मैं इसमें राय तो पता नहीं मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, बट अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज इन कागिल और जब मैं नया था, जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे क्लीनिंग जॉब किया करता था, टाइमिंग इतना ऑफ था दैट जहाँ पे सब पार्टी कर रहे होते हैं मुझे सैटरडे नाइट को अर्ली सोना पड़ता था, क्यों, बिकॉज द रीज़न वॉज क्योंकि संडे अर्ली मॉर्निंग मुझे शिफ्ट करनी थी तो 3 बजे शुरू होता था, उस वजह से मेरा टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा ऑफ हुआ था। एक काम करते हैं, फ़ोन ही उठा लेते हैं, लेट्स पिक अप। हेलो,
1: हाय केतन, आकृति हियर, हाउ आर यू?
0: गुड आकृति जी, क्या हाल है आपके? मैं एकदम बढ़िया हूँ।
1: बढ़िया बढ़िया, आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है एंड जिसने मैसेज किया है कि दे डोंट गेट टू एंजॉय द वीकेंड्स बिकॉज उनके रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑब्वियसली अपने अपने उनके फ्रेंड्स बिजी होते हैं, तो आई अंडरस्टैंड दैट क्योंकि वी हैड वी बीन इन अ बिजनेस फ्रॉम लास्ट 17 years or so.
0: Right.
1: And being in retail, I understand that. So retail mein toh weekend pe hi sab, like, you know, that's when you make the actual money.
0: Yes.
1: So me being, maine bhi kud weekend pe kaam kiya hai, and I used to take my children to work. They used to sit in the back office. Fir main apna, you know, I used to serve customers. And abhi kya hai ki main bachchon ke karan ghar reh rahi hu, lekin mere husband weekend pe jaate hi jaate hain.
0: Kaam pe.
1: So I totally understand ki jaisa ye banda keh raha hai ki, you know, it gets hard. But then slowly you can develop friendship according to this also.
0: Right.
1: Ke, you know, I'm sure agar aap dekhenge to aapko aise friends bhi mil jayenge jo aapke saath same boat mein hote hain.
0: Right.
1: To, you know, aap shaam ko enjoy karna shuru kar do. Agar aap shaam ko kaam karte hain, so, you know, aap din mein dekh lo weekends pe. whatever it is. So, you know, like-minded people, to ho jata hai, mil jata hai.
0: That is true.
1: That's what I'm
0: actually... मैं एक्चुअली यही बात बोलने वाला था अबाउट माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा भी संडे वाज लाइक फुल पैक्ड विद माय वर्क व्हेन आई वाज इन इनवकागल. तो हाँ, स्लोली स्लोली फिर एडजस्ट हो जाते हैं, और स्लोली स्लोली आपको उसी दरमियान उसी तरीके के लोग भी मिल जाते हैं विथ होम यू कैन एन्जॉय. और थोड़ा बहुत तो वक्त आप निकाल ही सकते हैं फॉर एन्जॉइंग विद पीपल हु डजंट हैव टाइम ड्यूरिंग वीकडेज और वीकेंड वाइस वर्सा. But glad to know your feedback. Yeah, glad to know your feedback. And I hope aapka din bahut hi badhiya ja raha hoga. Right? Hello?
1: As I said, mera bhi... Hello, can you hear me?
0: Main ka kya ho gaya bhai, baat karke gaya bhi ho gaya. Aap to bol nahi rahe.
1: I'm driving, so maybe shayad raaste mein kat jati
0: hai. Nahi, wo bahut hi zyada zaruri hai. Wo wahan pe zyada dhyan dena padega na, driving. But cool, aap kuch bol rahe the?
1: नहीं, डेज हैव बीन फाइन, क्योंकि वीकेंड्स पे मैं भी काम करती हूँ घर से, काइंड ऑफ लैपटॉप से. लेकिन वीकडेज बच्चों को स्कूल छोड़ के, देन इट्स मी टाइम, व्हाई नॉट,
0: राइट?
1: तो या, सो द पर्सन हु टेक्स्टेड यू, इफ ही लुक्स एट द लॉन्ग टर्म, ही इज गोना एंजॉय दिस.
0: आई थिंक मैं तो
1: स्कूल में एंड घर मेरा.
0: हां, मैं तो कहता हूँ उसको बोलो शादी कर ले, जिसने एक्चुअली, इनका नाम आनंद है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है. और मैं तो कहता हूँ शादी कर लो. इट लुक्स लाइक, बाय द वे ही इज मैसेजिंग, ही इज लिविंग विद हिज फ्लैटमेट, सो ही मे बी अनमैरिड राइट नाउ. तो आई थिंक टू स्टार्ट यूजिंग, व्हाट डू यू थिंक, शुड ही गेट मैरिड?
1: यस,
0: परफेक्ट पार्टनर शुड गेट इट, राइट?
1: नहीं नहीं, शादी कर लो भाई आज.
0: हाँ जी,
1: आजकल तो यार पार्टनरशिप के लिए शादी करना भी जरूरी नहीं होता.
0: हाँ, वो तो है, लेकिन क्या
1: अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है.
0: हाँ,
1: शादी इज ओवररेटेड. आई एम मैरिड दो, आई एम मैरिड.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
5: वेलकम टू कबाब्स किचन. आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
6: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
5: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
6: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
5: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
7: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
10: TradeStaff, industrial employment solutions. TradeStaff.
11: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
11: हम playing Bollywood's biggest hits.
13: Lunchbox with Ketan.
14: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
13: Hum.
15: Hi, hi, hi, hi.
11: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

क्या कितना प्यारा गाना ना ये केसरिया, अरिजीत सिंह की आवाज में आपने सुना है ये, इतना प्यारा इतना सूदिंग गाना है। वैसे इसी को इसी गाने से इंस्पायर होके मैंने भी एक गाना बनाया था केसरिया, जो कि यू नो काफ़ी बढ़िया लोगों का रिस्पांस आया, उसमें भी 43,000 व्यूज मिले थे मुझे, जिसमें मैंने एक्चुअली ना मैशअप बनाया था केसरिया और एक था बारिश। अगर आप देखना चाहते हैं आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, YouTube पे कम्प्लीटली ऑफकोर्स आप देख सकते हैं VR3 फिल्म अंडर माई सेम चैनल, आप उसे देख सकते हैं, केसरिया बाय केतन करके भी आप सर्च कर सकते हैं। पर यस, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं अभी हाल फिलहाल, तो उसमें आज के दिन 29 जुलाई आज डेट है 1897 की ये बात है, जब न्यूजीलैंड के पैसेंजर स्टीमर SS तस्मानिया माहिया पेनिनसुला के पास एक तेज स्टॉर्म के दौरान चट्टानों से टकराकर सिर्फ एक आर्क के अंदर डूब गई। शिप ऑकलैंड से डनेडिन जा रही थी और इस हादसे में 9 लोग जो क्रू मेंबर थे और कुछ पैसेंजर्स थे उसमें, वो उन सब की जान चली गई थी, जबकि ज्यादातर लोग लाइफ बोट्स की मदद से बचे हुए। लेकिन इस शिप रैक को फेमस बनाया एक और वजह से, शिप में एक ज्वेलरी मर्चेंट का 3,000 pounds के हीरे जवाहरात, उस टाइम की बात कर रहा हूँ 1897, 3,000 pounds तब के टाइम में, यू जस्ट कैलकुलेट, पाउंड एक्चुअली यूरो, उसके जो गहने थे उसकी कीमत ये था, जो उस दौर में बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। काफ़ी साल बीत गए, वो खजाना ढूंढते रहे बट मिला नहीं और वो वहीं पर छुपा रहा। फिर 1973 में फेमस मरीन एक्सप्लोरर केली टाल्टन ने रैक से लगभग 250 ज्वेलरी पीसेस रिकवर किए। आज भी माना जाता है कि उस खजाने का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी समंदर के बीच में है। बट यस, यहाँ पे मेरा सवाल पता है कि आप सबसे, केली टाल्टन क्या है? शायद आपको काफी फेमिलियर नाम लग रहा होगा, राइट? सो यस, ये आपका सवाल है, आप जल्दी से मुझे 5599 पे भेजिए और बताइए कि ये केली टाल्टन जी हाँ ये क्या है और क्या जुड़ा हुआ है लिंक उससे। जी हाँ, जल्दी से मुझे बताइएगा 5599 पे।

0: Nice vibe of the song, right? Race Sansoki, Neeraj Sridhar ki awaaz mein. ये भी आप सुनेंगे आज. मुझे किसी ने बोला है कि प्ले करने के लिए. डेफिनेटली ब्रो, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग एज वेल. बस मेरी लाइब्रेरी में मिल जाए वो गाना. बट आई एम श्योर यहाँ पे लाइब्रेरी में होना तो चाहिए गाना. बट अभी जो गाना आपने सुना है, इतना सन्नाटा क्यों है, अमित मिश्रा, अदिति सिंह और अदिति सिंह शर्मा, एक्चुअली और नहीं, ये एक ही नाम है, अदिति सिंह शर्मा, इन्होंने गाया है. वैसे मेरे एक सवाल था थोड़ी देर पहले, केली टाल्टन का क्या लिंक है विथ द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू, जो 1897 की खोई हुई जो ज्वेलरीज जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर मिली थी 1973 में, वो केली टाल्टन ही थे. लेकिन उनका लिंक क्या है, क्या फेमिलियर हैं आप इस नाम से? मैसेजेस मिले हैं मुझे एंड यस, हमारे ऑकलैंडर्स की जो नॉलेज है इट्स लाइक वेरी ऑन टॉप. It's Aquarium located in Auckland. Kelly was a sea driver and founder of Aquarium. That is so true. आप नाम लिखते तो आपको पता है क्या एक प्राइज मिल सकता था. अब तो खैर कोई बात नहीं, आपने नाम नहीं लिखा तो जस्ट kidding, मायूस मत होना, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया. बट येस, टू टॉक मोर अबाउट केली टाल्टन, एक न्यूजीलैंड मरीन आर्कियोलॉजिस्ट, डाइवर और ट्रेजर हंटर थे. उन्होंने कई फेमस शिप रैक्स एक्सप्लोर किए, जिसमें एसएस तस्मानिया का जो रैक है वो भी शामिल था, जहां से उन्होंने ज्वेलरी रिकवर की थी. अंडरवाटर एक्सप्लोरेशन के अपने एक्सपीरियंस को पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए उन्होंने केली टाल्टन अंडरवाटर वर्ल्ड का आइडिया दिया था, जो 1985 में काफ़ी यू नो तमाकी ड्राइव में ओपन हुआ था. एक्वेरियम की सबसे बड़ी इनोवेशन थी कर्व्ड एरिलिक अंडरवाटर टनल्स और मूविंग वॉकवे, जिससे विजिटर्स को ऐसा फील होता है जैसे वो समुद्र के अंदर चल रहे हो. ये डिज़ाइन बाद में दुनिया भर के एक्वेरियम ने अडॉप्ट किया. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्वेरियम पुराने अंडरवाटर सीवेज स्टोरेज टैंक को कन्वर्ट करके बनाया गया है. वाओ, ये तो मेरे को भी नहीं पता था यार. मतलब एग्जिस्टिंग जो टनल था उसे ही यू नो रिनोवेट करके एक्वेरियम बनाया. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ऑब्वियसली मैंने बताई, पुराने अंडरग्राउंड सीवेज को इन्होंने कन्वर्ट किया था. बट एक सैड न्यूज़ ये है कि एक्वेरियम की ओपनिंग के सिर्फ 7 हफ्तों बाद, यानी कि ये 1985 में ओपन हुआ था और ठीक 7 हफ्तों बाद केली टाल्टन की हार्ट फेलियर से डेथ हो गई थी. और आज भी एक्वेरियम उनके नाम से जाना जाता है और अब सी लाइफ केली टाल्टन एक्वेरियम के नाम से ऑपरेट होता है. कैसा लगा? हाउ वुड यू रेट ऑफ दिस एक्वेरियम, हाउ वुड यू रेट दिस एक्वेरियम? मुझे बहुत मज़ा आता है जितनी बार जाता हूँ. बट द ओनली थिंग, वन थिंग आई फील इज बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है. मुझे लगता है कि जितना पैसा हम टिकट देते हैं उस हिसाब से तो थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. व्हाट यू गाइस थिंक, सही प्राइस है या महंगा है, सस्ता है? व्हाट यू थिंक? आप अपना रिव्यू दीजिए मुझे 5599 पे.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर क्या हालचाल जान लेते हैं। 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 7 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 0% चांस है बारिश के आज, लेकिन सनसेट होगा 5:34 पीएम पे। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है आज का दिन।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। फिर से लंच बॉक्स शो इट इज, और आप मुझे सुन रहे हैं हम 104.2 एफएम के जरिए। अगर आप सिटी में हैं तो 87.7 एफएम के जरिए आप मुझे सुन सकते हैं। वेल, अगर आप सुनते हैं 87.7 तो मुझे बताइएगा, काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी, काफी अच्छा साउंड क्वालिटी आ रही है। पर यस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताइए 5599 पे 87.7 से, और क्वालिटी कैसी आ रही है वो भी आप मुझे बताइए। पर यस, शुरुआत करेंगे इस गाने से, धक धक धक मिका सिंह की आवाज में ये गाना है, बहुत ही बढ़िया है, और इस आर में काफी कुछ आपको सुनने को मिलेगा। सो यू स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू माय शो लंच बॉक्स शो अंटिल 3।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
0: इसके पीछे हम
2: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: Celebrate your favorite big screen icons with pocket-sized pals and oodles of fun. Featuring a blockbuster cast of 40 characters, get one free Disney Ushi with every $30 you spend. Now playing at Woolworths. T's and C's apply while stocks last.
7: The sleepless nights. The aching knees. The energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
8: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event tomorrow till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
9: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
8: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event. Tomorrow till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
10: Hi, Kevin Eder here, Trade Staff. Everyone knows that trade staff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. Trade staff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
11: Trade staff, industrial employment solutions. Trade staff.
12: Takanini Auto Group mein electric or hybrid cars or SUVs brand new sirf 29,990 se. Leap Motor, Dongfeng or bike ke latest hybrid or EV models. Trade-ins welcome. Finance bhi available hai. Visit Takanini Supersite. Petrol or diesel ke crazy prices ko boliye goodbye aur nayi ya quality used EV ya hybrid ghar le jaiye. Aur haan, ye almost sab kuch trade kar lenge. Bas aapke brother-in-law ke ilawa. Takanini Auto Group, 170 Great South Road, Takanini. Fees, C's, D's and credit criteria apply.
0: Lunchbox with Ketan.
13: Mujhe pasand hai ladka.
0: Hum. Lunchtime rant line. Lunch ke munch pe.
14: Hoi hoi hoi hoi.
0: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
15: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. वेल, हमारे बीच में काफ़ी सेलिब्रिटीज आ चुके हैं यहाँ पे, जिसका इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में हम करेंगे. लेकिन उससे पहले आप बताइए आपका दिन कैसा जा रहा है. एक बज चुकी है, एक बज के एक्चुअली 18 मिनट हो चुके हैं, सवा एक. सो यस, लेट्स इंट्रोड्यूस नाउ. अभी हाय गाइस, हाउ आर यू?
5: बढ़िया केतन, तुम कैसे हो?
15: मैं एकदम बढ़िया हूँ. मैंने गाइस बोला ना?
5: तो हाँ, मैं तो आती रहती हूँ यहाँ पे, लेकिन जो रियल सेलिब्रिटी जो है जो लंच बॉक्स में है वो तो कोई और है.
15: हाँ, तो उनका इंट्रोडक्शन आप करोगे? मैं करूँ?
5: तुम करो.
15: लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स अप टुगेदर एंड वेलकम वन एंड ओनली केतन कुमावत. एमसी ऑफ ऑकलैंड. यार एमसी नहीं है, पूरा बोला करो. एमसी पता नहीं क्यों मेरे जहन में बैठा हुआ है बचपन से.
5: EMCEE ना?
15: आप ठीक है?
16: अच्छा, ऐसा बोल रहे हो क्या?
15: हाँ आप ठीक है, तू बैठ जाना ब्रो.
16: वो मेरी शक्ल देखकर ऐसा दूसरा भी शायद मन में आता होगा,
15: इसलिए मैंने कहा तू बैठ जा, मैं स्क्रीन ऊपर कर लेता हूँ.
16: ठीक है. एनीवे, मेरे को एक इम्पोर्टेंट बात ये जाननी है कि तुमने हमारे इंट्रोडक्शन के पहले तुमने कुछ इम्पोर्टेंट बोला कि पहले कुछ इम्पोर्टेंट कर लेते, और फिर तुमने पूछा कैसे हो तुम.
15: इम्पोर्टेंट कर लेते, मैंने बोला
16: हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यू आर सेइंग कैसे हो तुम, उसका रिप्लाई भी नहीं आया. देखो फिर
15: हाँ वो तो है,
16: तो तू हमको पूछ लेता ना
5: एक्चुअली वो लिसनर्स को इंपॉर्टेंस दे रहा था ना हमसे ज्यादा।
16: दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो केतन, मैंने देखा यार लंच बॉक्स में ये होता है रेंट लाइन होता है, तो क्या होता है ये रेंट लाइन में?
15: सो बेसिकली मैं लोगों से पूछता हूँ इफ दे कैन जस्ट गिव मी एन अपडेट रिगार्डिंग अगर उनके गिने चुने दिनों में या फिर
16: गिने चुने दिनों
5: दिस वाज नॉट राइट।
16: ये क्या हो रहा है भाई?
15: मेरे को, मैं कह रहा हूँ
16: ऐसा कि मैनिफेस्ट कर रहा है भाई।
15: विजय एंड सैंडी, आपको एक ऐसा शो रखो, मैं कह रहा हूँ ये हमारा ना, ये हम का लेटेंट करना चाहते हैं हम, लग रहा है। नहीं, नहीं। जहाँ पे हम किसी और को नहीं बुलाएंगे, हम एक दूसरे को ही
5: दिन बोल रहे हैं लोगों को
16: क्या क्या बोल रहे हैं, क्या
15: मेरी भावना, मतलब ठीक है अब
5: कहना क्या चाहते थे?
15: कहना मैं ये चाहता था मतलब एक दो दिन में, जो अभी आखिरी आखिरी नहीं, जो अभी बीता हुआ जो एक दो दिन था,
5: मेक इट वर्स।
16: हाँ, पिछले दो तीन दिनों में,
5: कुछ दिनों में
15: पास्ट उनका, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे वाला,
16: मैं क्या ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ
15: लेटेस्ट,
16: और उसके ऊपर कुछ रेंट करना चाहते हैं तो
15: हाँ, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं।
5: अरे कौन कॉल करेगा, अभी रुजबे आ गया यहाँ पे, फुल रेंट करेगा वो,
15: बताओ
16: कराओ यार 0800-004-866।
15: आज मुझे तुझसे जाना है, मतलब ऑब्वियसली लिसनर्स तो करते ही कॉल, बट एक्चुअली आई फील लाइक यू नो दे आर ऑल्सो एक्साइटेड टू नो कि तेरे साथ क्या हुआ है जो गिने चुने दो दिन
16: दो दिन का मेहमान क्या
15: बताइए, मैं अपना बताता हूँ, अभी हुआ नहीं है। नहीं,
5: तुम शुरू करो।
15: मैं
5: तुम
15: करता करो। था अभी इस बीच हुआ नहीं कुछ।
16: क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ?
15: यार ये तो किस्मत से पूछना पड़ेगा ना, ये तो अच्छी बात है ना कि अच्छा हुआ नहीं हुआ।
16: अच्छा, नहीं तो क्या क्या होता है ऐसे जनरली, क्या रेंट होता है?
15: यूजुअली एक बार ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, राउंड अबाउट है, मेरे को राइट साइड को गिवे देना है, बट लेफ्ट साइड वाला मुझे गिवे नहीं देके निकल जाता है। मैं बोलता हूँ व्हाट इज दिस, तो वो मुझे बहुत ही बढ़िया इमोजीज दिखा के जाता है।
16: अच्छा, मतलब ऐसे,
15: हाँ, हाँ,
16: अच्छा, ओके,
15: तो वो दिखा के जाता है। फिर मैंने कहा भाई मैं बीच में खड़ा हूँ, तो मतलब एक तो गलती वो कर रहे, ऊपर से एटीट्यूड भी ऐसा दिखा रहे, भाई क्या तो इस तरह के
16: ऐसे रोड रेज वाले इंस्टेंसेस होते हैं
15: ट्रैफिक में, एक्चुअली काफी होता है। एक सीन था, मैं खुशबू को ड्रॉप करने जा रहा था, और मैंने उसको ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद उस दिन के बारिश हो रही थी, सो आई थॉट कि मैं उसको जितना करीब जाके रोकूं ताकि उसको रोड क्रॉस नहीं करनी पड़े। तो मैं अंदर ले ली मैंने गाड़ी, और उधर से ही गाड़ी बाहर आ रही थी, वो इकलौता उनका जो ड्राइववे है वो बेसिकली राइट एंट्री, जब एंट्री मारते ना वो उस तरफ है, अदर साइड, ऑन द राइट हैंड साइड,
16: एग्जिट साइड से तुमने एंट्री मारी।
15: हाँ, तो जो मेरे को ऑब्वियसली एक वो वैसा था कि नहीं, एक्चुअली जाने का दोनों ऐसे ही था, दोनों का ही ऐसे ही था, लेकिन आते वक्त ना उधर से आधा कट हो जाता है, बट देन शी केम, उससे शायद नोटिस नहीं किया होगा कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, तो अगेन शी थॉट मैं शायद ऊबर वाला हूँ या फिर कोई डिलीवरी वाला हूँ, एंड दैट्स व्हाई शी वाज जस्ट वेरी रूड।
16: अभी टेस्ला की अगर इतनी बुरी औकात हो गई है तो ये तो बहुत गलत बात हो गई यार।
15: तो मैंने तो
16: टेस्ला में घूम रहे हो
15: यार, ये तो अच्छी बात है ना, इकोनॉमी वाइज अगर देखो तो इट इज गुड दैट न्यूजीलैंड इज ग्रोइंग एंड पीपल कैन बाय इट, अफोर्ड इट, बट माय पॉइंट इज कि वहां पे भी उसने इस तरह से रिएक्शन दिया मुझे कि भाई जैसे मैं कहीं गलत ही जगह घुस गया या फिर आई डोंट डिजर्व टू बी देयर,
16: ऐसा
15: इस तरह का रिएक्शन था। आई वाज लाइक मैं उसको पूरा ही ऐसे देखते रहा था, बट जब उसको लगा कि हाँ मैं नजर नीचे नहीं कर रहा हूँ, तो फिर पास आते हुए उसने कुछ नहीं बोला, बट फ्रॉम डिस्टेंस शी वाज लाइक अभी कार से निकलेगी, अभी चिल्लाएगी,
16: राइट।
15: तो इस तरह के मैं पूछता हूं
16: ऐसे वाले, तो 0800-004-866 आप भी, आप बताइए आज आपका क्या रेंट है ऐसा यार यहाँ पे,
5: कुछ अगर आपको रेंट करना है रिसेंटली कुछ हुआ है तो करो यहाँ पे रेंट, आपको क्या करना।
16: मेरा रेंट जो है यार वो बहुत इररिलेवेंट है फॉर न्यूजीलैंड, इसलिए मैं वो रेंट नहीं करना चाह रहा हूँ।
15: बताओ फिर भी,
16: क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ अभी सोशल मीडिया पे से यार, बहुत अभी भी वही रील्स चल रहे हैं, वही चीज चल रही है,
5: एल्गोरिथम, मैंने बताया ना रुजबे आज। मेरा भी एक्चुअली में ये रेंट सिर्फ वो नहीं है, मेरा ओवरऑल एक्चुअली में रेंट है कि लोगों को ना हेल्थी डिस्कशंस करना भूल गए हैं, यू नो डिस्कशंस डिबेट्स या व्हाटएवर जो तुम उसको नाम देना चाहोगे, एक दूसरे के व्यूज या ओपिनियन सुनना लोगों को पसंद नहीं आता है, वो मैंने नोटिस किया है।
15: जी परफेक्ट, चलो उससे पहले हम फोन भी उठा लेते हैं।
16: हाँ हाँ उठाओ।
15: हेलो
13: हेलो हेलो
15: हेलो, किससे बात हो रही है?
13: कितना अच्छा है, डिस्कशन चल रहा है। अरे नाम लेके बदनाम मत करो।
16: हाँ हाँ, नाम लेके नहीं बदनाम करेंगे,
5: ठीक है।
16: हाँ बताइए क्या आपका क्या टेक है इसके ऊपर,
5: आप क्या रेंट करना चाहती
13: हैं इसके ऊपर? एकदम सही है, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि पीपल हैव फॉरगॉटन टू एक्नॉलेज देयर मिस्टेक्स। हाँ ऐसे हो, सभी जगह पे ये बेसिक हो गया है,
16: हम बिजी है ना दूसरों की मिस्टेक पॉइंट आउट करने में।
13: हाँ वही, किसी को वो सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन बचा ही नहीं है लोगों में अभी.
16: हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस कर रहा है लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है.
13: बस बड़े बड़े रील्स वगैरह डाल देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर एंड ऑल दैट,
5: बट व्हेन इट कम्स
13: टू ऑनेस्टी और सिंसियरिटी नहीं है अभी लोगों में. पीपल हैव बिकम वेरी सेल्फिश फ्रॉम व्हाट वी वर बिफोर, यू नो, ओल्डन डेज.
16: जी जी,
5: ओके.
16: यही तो कलयुग कहते हैं ना, इसे कलयुग कहते हैं.
13: कलयुग तो पता नहीं, हम हमारे टाइम से बोल रहे हैं अभी कलयुग है, अभी पता नहीं कलयुग है कि नहीं है, बट पीपल हैव बिकम सेल्फ सेंटर्ड. जैसे हम बॉम्बे से है ना, तो वी आर यूज्ड टू दैट फैमिली एनवायरनमेंट. इवन नेबर भी हमारे फैमिली होते थे, फ्रेंड्स भी हमारे फैमिली होते थे एंड ऑल दैट. आजकल वो सब नहीं है एंड मेन रीजन यही है कि पीपल डोंट एक्नॉलेज देम.
16: अभी तो फैमिली भी फैमिली नहीं है.
13: नहीं है. लोगों को ऐसे लगता है हम गलती कर ही नहीं सकते, वो सामने वाला ही गलत है.
16: या
13: No, yeah, that's the biggest issue, I think, at this era.
5: It's but anyway, it will change. On disagreements nowadays.
13: और healthy discussion जैसे पहले हम लोग लड़ाई भी फन से करते थे. जैसे लड़ाई करते थे तो भी नेक्स्ट मिनट कोई एक मान जाता था कि नहीं हाँ गलती है ना. बट अभी नहीं है, अभी लड़ाई करते तो हफ्ते हफ्ते एक दूसरे को देख के स्माइल नहीं करते.
16: अभी तो ऐसी लड़ाइयां हो रही है, वो भी इसके बेसिस पे हो रही है, सोशल मीडिया पे तुमने क्या पोस्ट किया उसके बेसिस पे दोस्तियां टूट रही है कि भाई ये तो डिजर्व ही नहीं करता है मेरी दोस्ती. ऐसा भी हो रहा है अभी.
5: ऐसा भी हो रहा है.
16: हाँ, बहुत ही मतलब लिटरली किसी और के फटे में टांग डाल के हम खुद का फाड़ रहे.
13: हम बचपन में वो स्टोरी सुनते थे ना अंगूर वाला, कि बंदर के और किसी के लड़ाई में कोई और अंगूर खा गया था. वैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं.
16: अरे हम लोग यहाँ पे, मैं अभी काफी देख रहा हूँ कि हमने इज्जत करनी चाहिए और ये सर ऐसे सारी बहुत सारी चीजें चल रही है. अरे हम आपस में अपने फैमिली की, अपने दोस्तों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, फिर हम एक थर्ड पर्सन की इज्जत की बात कर रहे हैं.
5: वही ना.
13: वही हाँ, वही मेन तो है ना, खुद का कोई नहीं देखता कि सभी दूसरे पे ही डालते ब्लेम. एंड आई अग्री विद व्हाट इज, अरे तुम्हारा नाम भूल जाते हैं, लंच बॉक्स केतन. या यू आर राइट, पीपल डू दैट व्हेन दे. अरे तुम नए हो ना, इसलिए हम, मैं सिर्फ पुराने लोगों का याद है.
15: मतलब नए मतलब कितना, तुम्हें को कितना पुराना होना पड़ेगा ताकि आप याद रख सको?
16: अब बहुत पुराना होना पड़ेगा तुम्हें.
13: मतलब सैंडी सैंडी रुबे
15: तो नहीं होगा जिसके बारे में बात हो रही है.
16: हमें 7-8 साल लगे. सैंडी देख अभी भाई 12-15 साल हो गए.
5: नाम भूल रहे
15: हैं. नहीं नहीं, आपका तो काफी यूनिक नेम है. आई डोंट थिंक सो.
16: यूनिक नेम है सैंडी का.
15: हाँ, मतलब मेरे हिसाब से यार, तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ,
16: सही बोल रहे हो.
15: उस वे से तो आई थिंक तेरा नाम भी आई डोंट थिंक सो मैंने कभी सुना है अपार्ट फ्रॉम यू.
16: वो तो मैं मानता हूँ, मेरा है
15: सैंडी का भी. संदीप मैंने सुना है, बट सैंडी इज लाइक फॉर मी इट वाज द फर्स्ट टाइम. यार
5: ठीक है, बताओ कितने सैंडी सुन रहे हैं यहाँ पे केतन को. डबल फाइव डबल नाइन
13: केतन को. ओके
15: नहीं,
16: मैं केतन को क्या बोल रहे थे?
13: नहीं केतन को तो मैं सुन रही हूँ जब से वो आया है, बट नाम तो मतलब

0: आवाज गूंजेगी। हम
1: थ्रोबैक। चलिए अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। ऑकलैंड के आइकॉनिक वेस्टर्न स्प्रिंग स्टेडियम अब एक नए रूप में नजर आने वाला है। इसका नाम और कॉन्सेप्ट जो है वो बदलकर वेस्टर्न स्प्रिंग बॉल बनाया जा रहा है, जिसे एक डेडिकेटेड आउटडोर कॉन्सर्ट और इवेंट्स वेन्यू के तौर पर डेवलप किया जाएगा। नए प्लान के तहत ये वेन्यू 30,000 लोगों तक के कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल होस्ट कर सकेगा। स्टेडियम की जो नेचुरल बोल शेप्ड डिजाइन को प्रिजर्व किया जाएगा, साथ ही पॉन्सन बे रग्बी क्लब भी यहां बना रहेगा और कम्युनिटी स्पोर्ट्स का यूज भी कंटिन्यू होने वाला है। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टर्न स्प्रिंग स्पीडवे को पहले ही वाइकरा पार्क शिफ्ट किया जा चुका है। ऑकलैंड काउंसिल का मानना है कि नए वेस्टर्न स्प्रिंग बॉल सिटी को एक वर्ल्ड क्लास आउटडोर म्यूजिक वेन्यू देगा, जिससे बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट अट्रैक्ट होंगे और लोकल इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट मिल सकता है।

0: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के शो में फिर से। अगर आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इस आर में भी काफी कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द लेटेस्ट खबर, और उसके बाद आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि क्या कुछ नया स्पोर्ट्स यहाँ पे होने वाला है जिसे आप देखने जा सकते हैं, या फिर कुछ रिजल्ट्स फिक्स्चर के साथ साथ, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। सो यस, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी विद द टेक टॉक न्यूज एज वेल। मैं लेके आऊंगा थोड़ी देर में और चटपटी खबरें।
1: बचाओ क्या,

0: वेल, अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। ऑकलैंड के कई रेसिडेंट्स का कहना है कि काइंग ओरा के कुछ वेकेंट या गोस्ट होम्स अब इलीगल डंपिंग और एंटी सोशल एक्टिविटीज का सेंटर बन चुके हैं। लोकल लोगों का कहना है कि इन खाली घरों के बाहर और अंदर कचरा, पुराने फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन वेस्ट तक फेंक दिए जाते हैं और इसी वजह से स्मेल बहुत ही गंदी आती रहती है। चूहे और इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम भी बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही एरिया की सेफ्टी को लेकर भी काफी लोग परेशान हैं। रेसिडेंट्स का कहना है कि उन्होंने कई बार अथॉरिटीज को कंप्लेन की है लेकिन एक्शन बहुत ही स्लो आ रहा है। उनका मानना है कि अगर ये हाउसेस इतने टाइम तक खाली रहेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही रहेगी। वही काइंग ओरा का कहना है कि वो कंप्लेंट्स को सीरियसली ले रही हैं और वेकेंट प्रॉपर्टीज को सिक्योर करना, क्लीन अप करने और उन्हें उनमें उनसे जुड़ी हुई जो भी काम होती है जल्दी नए टेनेंट्स को अलॉट किया जाएगा। लेकिन लोकल रेसिडेंट का कहना है कि अब उन्हें प्रीमाइसेस नहीं ग्राउंड पर फास्ट एक्शन चाहिए। बट जस्ट इमेजिन यार, इतना जिसकी हालत बहुत गंदी हो रखी है वहां पे कैसे लोगों को रखेंगे यार। इट्स गोइंग टू बी वेरी अनहेल्दी एज वेल। दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक?
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Breakfast show with VJ and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
9: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाटा नैनो ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट। ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू, 7 साल की वारंटी के साथ। एसयूवी हाइब्रिड्स, फोर व्हील ड्राइव्स, परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है। विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाटा नैनो। ट्रेड-इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल। फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाटा नैनो।
10: DVS, huge winter sale on now. Huge savings across all DVS ventilation systems. Say no to crying windows. Say yes to the huge winter sale on now. DVS. T's and C's apply.
11: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
12: Mike here from Novus Glass. When this happens,
13: Novus,
12: just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
14: Show us your crack.
15: Ah, Novus!
16: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.

0: लंचबॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: वेलकम बैक। चलिए अपडेट दे देता हूँ रिगार्डिंग द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आप रोआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कम्प्लीटली फ्री है। उसके जरिए आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट हो गया। हम टाइम टू टाइम नए नए पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं ताकि आप तक एक अच्छी नॉलेजफुल बातें पहुंच सके फॉर कम्प्लीटली फ्री। वेल यस, ऑफकोर्स डेटा तो लगेगा, बट डेटा की भी अगर बाद में बताऊं तो यू कैन एक्चुअली लिसन टू अस लाइव रेडियो के जरिए, ऐप के जरिए, बेसिकली रोआ ऐप के जरिए। जितना आप एक घंटे में सुनोगे उतना आप 20 सेकंड का स्टोरी डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं सोशल मीडिया पे अपने स्टोरी डाली, उस स्टोरी में जितना आपका डेटा यूज होगा ना 20 सेकंड के स्टोरी का, उतना डेटा इज इक्वल टू लिसनिंग टू अस थ्रू रोआ ऐप। जी हाँ, कंप्लीटली फ्री है, डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी खुद की वेबसाइट भी hum.roa.nz, उसके जरिए भी काफी आर्टिकल्स हम रिलीज करते हैं। एक लेटेस्ट आर्टिकल मैंने रिलीज किया है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो 100K प्लस हो चुका है, यानी कि व्यूज है 106,000 हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल, तो आई थिंक 106 और 107,000 हो चुके हैं। बट यस, याद साथ में आप कुछ प्लेलिस्ट होती है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ, जो प्लेलिस्ट होती है उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे पंजाबी गाने हो या फिर कुछ राहत फतेह अली खान जी के गाने जो अभी आए थे। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी, यू नो, यू मस्ट हैव फेल इन लव विथ हिज वॉइस, हिज परफॉर्मेंस, हिज जुगलबंदी विथ हिज बेटा, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है। उनके भी गाने भी सुन सकते हो। कुछ फीजी कीर्तन और फीजी भजन के भी कॉन्टेंट वहाँ पर मिल जाएंगे जो 24/7 चलने वाले दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म है। पर यस, पॉडकास्ट की अगर बात करें तो शनील लाल यहां पे आए थे, उन्होंने रुजबे और सैंडी के साथ मिलकर LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यस, उस पे आप बने रहिए, उस पे आप सुनते रहिए, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेके आते हैं वहां पे। बट ये साथ में आप अगर ब्रेकफास्ट विद विजय एंड पूजा के कंटेंट, जो उनका बिट्स एंड पीसेस में जो बातें होती है काफ़ी फनी होती है, उसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमें सिर्फ BF लिखिए 5599 में भेज दीजिए। और सॉरी, मैं एक चीज़ तो बताने भूल ही गया, ड्राइव लिखेंगे आप, ड्राइव लिख के 5599 पे भेज दीजिए ताकि शनील लाल का जो कॉन्टेंट है वो आप तक पहुँच जाए। एंड ये साथ में जैसा कि मैंने कहा था कि सफायर 2.0 इज एक्चुअली डूइंग सो ग्रेट, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। YouTube पे सर्च करिए सफायर केतन या फिर सफायर 2.0, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो। अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला है, अमेजिंग फीडबैक भी मिल रहा है, तो यस आप बस बने रहिए। वैसे यस बने रहिए, बिकॉज करण ओजला का एक सवाल लेके आने वाला हूँ जिसका जवाब देंगे आप मैसेज करके, उसके थ्रू आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए अभी की अभी का जो सवाल है वो मैं लेके आ चुका हूँ करण औजला के कंपटीशन का। करण औजला आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टाइम पे, 25 अगस्त को ही आ रहे हैं। स्पार्क एरिना में इनका शो होने वाला है, वन नाइट वन सुपरस्टार वन एपिक शो। एंड यस, आपको ये शो नहीं मिस करना चाहिए। hum.roa.nz या फिर livenation.co.nz पे जाइए।

और यस, ये जो सवाल है मेरा ये है कि करण औजला का जो लेटेस्ट गाना है वो कौन सा है। आप 5599 पे भेज दीजिए, जो अभी 4 दिन पहले रिलीज हुआ है लिटरली। और जस्ट टू गिव एन अपडेट, वो AI वीडियो से बना हुआ है वीडियो पूरा। अमेजिंग यार, मतलब मैंने देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, एज एन लाइक जिस तरह से AI से बनाया उस वे में। बट यस, वो गाने का नाम क्या है, आप KA लिखिए, करण औजला का इनिशियल KA एंड उस गाने का नाम, और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीत सकें एक डबल पास।

0: चलिए बात करते हैं गरबा नाइट विद सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव इन ऑकलैंड. वेल यस, लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशिक ग्रुप आप सभी के लिए बहुत ही प्राउडली प्रेजेंट करते हैं ये शो का इस साल का सबसे मोस्ट अवेटेड गरबा सेलिब्रेशन जो कि होने वाला है ऑन 1st of August. यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो दिन ही है, दो नहीं एक्चुअली, हाँ मतलब तीन दिन है एक्चुअली, आज कल और परसों. फर्स्ट को तो शो ही है, महात्मा गांधी सेंटर में होने वाला है. बहुत ही कम टाइम बचा आपके पास, जल्दी से जाइए टिकट खरीद लीजिए eventstickets.co.nz. Events ending with S, tickets ending with S as well, .co.nz. स्वप्निल शाह को आप कॉल करिए अगर जस्ट इनकेस अगर कुछ सवाल जवाब है आपके या कोई दिक्कत होती है तो. नंबर नोट कर लीजिए 0224394736 पे. वन नाइट वन सेलिब्रेशन बट यस मेमोरीज एक से बढ़कर एक. 1st of August महात्मा गांधी सेंटर में होने जा रहा है द सेंसेशनल गरबा नाइट विद राज गढ़वी लाइव इन ऑकलैंड.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम
3: लेडीज एंड जेंटलमैन
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
4: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
5: It's double points week with Everyday Rewards. Boost, spend and scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
6: And if you're just joining us after the break, we're talking about...
7: Holy... $10 deals on Uber Eats.
6: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
8: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
1: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
9: हम.
1: TikTok.
0: न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है जो समुंदर के अंदर बीच इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स को डैमेज होने से बचाएगा. ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने जून में की थी और इस टेक्नोलॉजी को कॉर्डिया और वेलिंगटन के स्टेनबोर्ड मरीन इंटेलिजेंस कंपनी ने मिलकर डेवलप किया है. सबसे पहले ये समझिए कि ये अंडरसी केबल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है. न्यूजीलैंड के लगभग 99% इंटरनेट और इंटरनेशनल डेटा ट्राफिक इन्हीं केबल्स के थ्रू चलते हैं. अगर किसी केबल को नुकसान पहुंचता है तो इंटरनेट बैंकिंग, बिजनेस और कम्युनिकेशन सर्विस सब काफी इफेक्ट हो सकते हैं. अब तक सबसे बड़ा खतरा फिशिंग बोट्स के नेट्स और शिप्स के एंकर से होते हैं. कई बार गलती से एंकर केबल्स पर गिर जाती है और ये फिशिंग गियर केबल्स को डैमेज कर देती है. नए सिस्टम में शिप्स की रियल टाइम मूवमेंट मॉनिटर की जाएगी, जैसे कि कोई वेसल प्रोटेक्टर या फिर केबल एरियाज के बहुत करीब आती है और रिस्क जो है वो काफी क्रिएट हो जाता है. मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर्स वेलिंगटन के तुरंत अलर्ट मिल जाता है. वहां से ऑफिशियल सीधा उस शिप से कॉन्टैक्ट करके वार्निंग देते हैं और उसे रूट के एंकर चेंज करने को कहते हैं. इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल पिछले साल होराकी गल्फ और मुरीवाई केबल्स एरियाज में हुआ था और वो काफी सक्सेसफुल हो रहा है और इसी सक्सेस के बाद इसे नेशन वाइड रोल आउट किया जा रहा है. गवर्नमेंट का कहना है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट सिस्टम है और इसी सक्सेस देखकर यूरोप के कुछ देशों ने भी इसी टेक्नोलॉजी को अपनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है.
11: You buy NZPMI. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रहा आज का, आज की बातें, आज का शो और आप सभी का कॉल। जी हाँ, वैसे बस यस बने रहिए, अभी कॉफी ब्रेक में आपकी मुलाकात होगी सैंडी से थोड़ी देर में, और साथ में रुजबे भी उनका साथ देंगे फॉर द ड्राइव शो एज वेल। तो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए आज के इस अमेजिंग दिन के अमेजिंग हम शो पे। जी हाँ, हमारा 4.2 एफएम के जरिए आप हमें सुन सकते हैं, अगर आप सिटी में घूम रहे हैं तो 87.7 एफएम के जरिए आप हमें सुन सकते हैं। बट यस, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जल्दी से रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अभी तो फ्री है। यू नेवर नो इन फ्यूचर क्या होगा इस ऐप का, लाइक विल इट बी पेड और नॉट। अभी से आप खरीद लीजिए, अभी से आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन ऐप पे, फ़ोन यानी कि प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, और उसके बाद यू जस्ट कैन एंजॉय एंड एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर, पॉडकास्ट कॉन्टेंट, आर्टिकल्स, कुछ फनी रील्स और भी बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे आते रहते, और हमें लाइव तो सुन ही सकते हो। और सबसे खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि यू डोंट नीड टू बी इन न्यूजीलैंड टू लिसन टू अस, और यू डोंट नीड टू बी इन ऑकलैंड इटसेल्फ टू लिसन टू अस। यू कैन ट्रैवल वेयरएवर यू आर, एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरनेट इन द वर्ल्ड, आप सुन सकते हैं। क्या पता आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाए, कल को आप मार्स जाना पड़े आपको, या फिर कुछ काम के लिए एक घंटे के लिए आपको चाय पीने मून पर जाना पड़े, तो वहां पे भी आप सुन सकते हैं एज लॉन्ग एज इंटरनेट हो, अर्थ वाला इंटरनेट। बट यस, आप डाउनलोड कर लीजिए और एंजॉय करिए वहां पे। बट आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany IA for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
2: MediaWorks complaints. How can I help?
3: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
2: Thank you.
3: It's all I can think about.
2: What does it sound like?
3: Yeah, I'd rather not.
2: Go on, why don't you have a crack?
3: Okay, got a plumbing problem.
2: Oh, I need a bit more than that.
3: They've got your back.
2: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
3: Oh, okay.
4: There's no better plumber to give it a crack.
2: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
3: No, I want a plumber.
5: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
6: South America is on sale now at Flight Center. Fly return to Peru from $2,315 with LATAM Airlines departing Auckland. Book in store or online. Fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
7: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
8: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. New Plymouth Mayor is eager to see what follows the first gas exploration permit since offshore bans were lifted. Australian company NZ Energy has been given 12 years. Max Brough says it will bring critical work to the district.
10: We've had a big exodus, I think around 1,800 direct jobs in the last few years, high paying jobs.
9: The government's accepted the central lesson of the COVID Commission of Inquiry that we need to prepare now for future pandemics. However, Health Minister Simeon Brown says pandemic-specific legislation won't be created. The Health Act will be fully reviewed instead.
11: The Health Act already has extensive powers that governments can use when responding to a pandemic.
9: Drivers are being asked to plan ahead for a four-day closure of State Highway 3 through Awakino Gorge next month. It will be closed from August the 22nd. Another well-known New Zealand fashion label is closing its doors this year. Sylvester, the edgier spin-off of the Kate Sylvester brand, will shut down after this summer's collection. And an Australian-founded restaurant in Seoul is facing court over its use of ants as a dessert garnish. Prosecutors claim it breaches the country's food safety rules. However, founder and chef Joseph Lidgerwood says they stopped using the ingredient as soon as investigations began. To sport, New Zealand sits eighth on the Commonwealth Games medal table. Among those in early action this evening, double gold medal winner Lewis Clairbert looking to qualify for the 200 metres freestyle final, and in the track and field, Tom Walsh in the shot put qualifying. And to rugby with shift four, MPC Rugby kicks off tomorrow night. Canterbury plays Auckland on Saturday evening with Richie Mwanga's focus on his return to provincial rugby.
8: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: गुड आफ्टरनून। वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, ब्यूटीफुल डे इन आर सुपर सिटी। काफ़ी कोल्ड मॉर्निंग रही आज की और डे भी इट्स गोइंग टू बी क्वाइट चिली। फील्स लाइक 15 राइट नाउ। ओवरनाइट टेंपरेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 7 डिग्रीज। 5:34 को होगा सनसेट।
8: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
13: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: कॉफी ब्रेक विद सैंडी, Drive Show with Sandy and Rizbe.
14: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
12: What a beautiful day today. Drive Show has started 1 hour early. Hi,
15: Sandy. A very, very good afternoon, Rizbe. Kaise ho tum?
12: How fortunate are you?
15: Yeah, I know. एंड आवर लिसनर्स राइट.
12: ओ नहीं, अभी लिसनर्स के बारे
15: ऐसा
12: में
15: क्यों बोल सकते ना तुम.
12: आप तक मैं ऐसे कर सकता हूँ, you know,
15: yeah. सही है.
12: एनीवे स्वागत है आपका ड्राइव शो में. आज जल्दी शुरू हो गया ड्राइव शो.
15: या आज 29 जुलाई है. अगर आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू.
12: वेल, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आज हम बात करने वाले आपके साथ, क्योंकि बहुत प्राउड मोमेंट्स हो रहे हैं. एंड काफी सारे मैं यहाँ पे बढ़िया से, मतलब ब्यूटीफुल रील्स देख रहा हूँ. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सोशल मीडिया फील्स पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड नाइस. मैंने एक ना रिले वाला देखा, मिक्स्ड रिले था वो, जहाँ पे लड़का लड़की दोनों कम्पीट करते साथ में. एंड उसमें क्या लीड ली यार वो एक इंडियन जो एथलीट है, उसने. It was just amazing यार. इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम लोग अभी. But it was just fabulous. And if your algo still not picked it up, कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं. न्यूजीलैंड के भी काफी लोगों ने जीता है.
15: काफी गोल्ड भी हमने जीत लिया है यहाँ पे, जिसके बारे में भी बात करेंगे. कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आज बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. एंड यहाँ और भी बातें करेंगे, जैसे ये एक स्ट्रेंज जैपनीज हैबिट है जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम करती है. टॉक टू योर बॉडी. हम टॉक टू योर हैंड कहते, टॉक टू माई हैंड कहते हैं. दिस इज टॉक टू योर बॉडी. स्पीक टू योर स्टमक, chest, throat, as if they can hear you. The whole tension your mind hasn't fully processed yet. Yeah, so you need to talk to your body.
12: You need to talk to your throat.
15: Yeah,
12: क्योंकि
15: I'm feeling unwell. Yeah,
12: तो
15: yeah.
12: बात करो, हमको सुनना है. क्या बात करते हो आप? How do you talk to your throat?
15: Please don't get unwell.
12: आप इंग्लिश में बात करते हो आपके throat के साथ?
15: अभी जैसे भी, अभी जैसे
12: just
15: भी नई लैंग्वेज निकलती है.
12: उसको थ्रोट बोला तो आप इंग्लिश में बोल रहे हो. आपके कंठ से बात करो.
15: गले से.
12: कंठ बोलते ना,
15: गला बोलते हैं ना.
12: थ्रोट यार.
15: हाँ, गला तो थ्रोट को गला. हाँ तो ओके.
12: व्हाट इज थ्रोट इन हिंदी?
15: व्हाट इज थ्रोट इन हिंदी बताओ कुछ यहाँ पे 5599 पर, या फिर कॉल करके 800.
12: काफी बच्चे भी हमें सुनते हैं ना. बच्चों को ये एक, इट कुड बी अ गुड क्वेश्चन फॉर देम, क्योंकि बच्चों को हिंदी बहुत तेज है.
15: कि थ्रोट को हिंदी में क्या कहते हैं?
12: मुझे तो लगता है कंठ होता है. मुझे लगता है थ्रोट या गला होता है, पता नहीं.
15: गले ऐसे बोलते हैं ना, गला पकड़ गया मेरा या समथिंग कुछ ऐसा, गला खराब है ये बोलते हैं ना हम.
12: तेरा गला दबाऊ क्या?
15: वो भी बोलते हैं. वो भी बोलते हैं, पर कंठ खराब है ऐसा थोड़ा बोलते हैं.
12: गुड आफ्टरनून.
16: हेलो.
12: हाय.
15: हाय.
12: What's your name?
16: How are you?
12: Very good. What's your name?
16: Shanaya.
12: Tell us, what is how did
15: how
12: you call
15: you
12: us?
15: How can you say throat in Hindi?
16: Gala.
12: बोलते हैं. अच्छा.
15: मैं सही थी ना मैं? Have you ever heard about कंठ की गला को ऐसा, throat को कंठ बोलते हैं?
16: No.
15: See? Yeah.
12: Shanaya, which class are you in?
16: In Kotare.
12: क्या क्या कोर्स? क्लास वन.
16: इन ईयर टू.
12: ईयर टू यू आर? ओह वाओ, दैट्स सो कूल. या एंड व्हाट डिड यू स्टडी टुडे?
16: वी स्टडीड अबाउट हेल्थी शुगर एंड अनहेल्थी शुगर.
12: ओह वाओ,
15: कैन यू टेल अस अबाउट इट? व्हाट इज हेल्थी शुगर, व्हाट इज अनहेल्थी शुगर? रुजबे नीड्स टू नो.
16: हेल्थी शुगर इज हेल्थी फ्रूट्स एंड अनहेल्थी sugar is donuts, cake,
12: lollies,
15: candies.
12: So Shanaya,
16: candy cane
12: also. So Shanaya, you're not going to have anything of that, right? You're only going to have healthy sugar now.
15: So you're just going to have healthy sugar now.
16: Yeah.
15: Oh wow.
12: Pakka.
15: It's a big thing.
16: Yeah.
12: आपको हिंदी आती है Shanaya?
16: हाँ जी.
12: तो हिंदी में बात करो ना हमारे साथ.
16: ठीक है.
12: ठीक है.
15: तो पक्का प्रॉमिस है कि नहीं खाना है कुछ भी अनहेल्दी?
12: पक्का अनहेल्दी कुछ नहीं खाओगे अभी?
16: हाँ जी.
12: क्या बात है. तो आपके दांत भी बहुत सेफ रहेंगे, नहीं तो फिर दांत ना ऐसे गिर जाते हैं अगर अनहेल्दी शुगर खाया तो.
15: तुम्हारे है ना
12: मेरे कितने
16: मेरे
12: अच्छे.
16: तो चार टूट गए
12: आपके.
15: वो कोई बात नहीं, और आ जाएंगे. आ जाएंगे
12: अभी टाइम में आ जाएंगे. बट एक बार अभी आ गए, फिर उसके बाद अगर गए तो गए फिर जिंदगी भर के लिए.
16: आज ही गया
12: है ना, अभी आज ही सीखा ना हेल्दी अनहेल्दी शुगर के बारे में, ये पहले सीखा रहता तो सही होता।
15: या तुम्हें टीचर नहीं बनना चाहिए रुजबे।
12: अच्छा ठीक है शनाया, थैंक यू
15: शनाया फॉर कॉलिंग,
12: बाय
15: बाय।
12: कुछ कहो ना, मम्मी बोल रही कुछ कहने को। हाय, आपका क्या नाम है?
16: अनाया।
12: आप भी शनाया हो?
15: नहीं, अनाया शायद।
12: अनाया, नाइस टू मीट यू अनाया।
15: और अनाया आप कितने साल की हो?
16: चार।
12: वेरी गुड,
15: वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू,
12: थैंक यू फॉर कॉलिंग गाइस, थैंक यू। हाय, आपका भी स्वागत है।
17: Hi, good afternoon guys, how are you?
15: Good afternoon.
12: Must.
15: अब हमारे बच्चों की आवाज बदल चुकी है, adult voice में आ गए हैं, बताइए।
17: नहीं, वो बच्चों ने बताया तो बिल्कुल ठीक था कि throat जो होता है वो गला होता है, और कंठ जो है is more likely a Sanskrit word.
12: अच्छा, कंठ इज मोर, ओके ओके, संस्कृत।
15: और मेरे को लगता है शायद से वोकल कोर्ड को कहते हैं, नहीं?
17: नहीं, वोकल कोर्ड तो फिर वो पूरा एक अलग ही हो जाता है,
12: वही ना।
15: ओके,
17: कंठ संस्कृत में कहा जाता है, मतलब।
12: अरे मुझे क्यों मालूम है कंठ, मालूम है क्या? क्योंकि एक ना छोटी सी गोली आती है कंठिल नाम की, जो जो भी मतलब यू नो एक अच्छे आवाज के लिए या फिर गले में सूदिंग करने के लिए,
15: जो बेनाफले की आई थी
12: वो, हाँ वो छोटी सी ऐसी गोली होती है ना, वो ऐसे एकदम जीरा भी नहीं, क्या बोलते उसको, राय जैसी होती है वो, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसके कारण मुझे ऐसा था, लेकिन यू मे बी राइट। क्या नाम है आपका?
17: बहुत क्लोजली लिंक्ड है, जैसे गला, गर्दन और ये, मतलब तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है।
12: जी, आपका आवाज बहुत बढ़िया लेके ना।
17: थैंक यू रुजबे, मेरा चांस है फिर?
12: आपको, मेरे को तो लगता है चांस।
15: ठहराव है आपकी आवाज में,
12: बहुत ही बढ़िया है, वॉइस ओवर के लिए मजा आएगा। क्या नाम है आपका?
17: थैंक यू सो मच, हेमंत।
12: हेमंत, थैंक यू हेमंत,
15: थैंक्स हेमंत फॉर कॉलिंग,
17: हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू,
12: बाय बाय। और भी कोई कॉल कर रहा था लेकिन रह गया, अभी बात नहीं हो रही है।
15: सो नाउ यू नो इट्स नॉट कंठ, इट्स गला।
12: अच्छा, इट्स गला, गला इज नेक। ओके, गला इज नेक बोल रहे हैं, कंठ इज वॉइस, तो थ्रोट क्या है सैंडी? इट्स स्टिल अनसॉल्वड, अनरिजॉल्वड पहेली। आज का आपका होमवर्क।

0: Mere,
1: oof. You're listening to Sonu Nigam on Humping Bollywood's biggest hits. Coffee break aapke liye ja rahi hai, lekin drive show hi keh sakte hain hum isko kyunki Sandy bhi hai na yahan pe.
0: What do you mean?
1: Matlab main bhi hu na.
0: Tum bhi ho yahan pe isliye.
1: Dekho, humne ek debate yahan pe shuru kiya. और मुझे लग रहा है कि AI में अगर हमने कोई भी सवाल पूछा तो AI तो सही जवाब देता है ना हमेशा.
0: Not always, but yeah, close कई बार देता है वो.
1: मुझे मानना है कि वो सही जवाब देता है. Excuse me, are we living in democracy? I have the
0: right opinion.
1: तो anyway, मैंने पूछा AI को, मैंने बोला कि भाई throat को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो AI ने हम दोनों को खुश रखा क्योंकि वो हमको सुन रहा है. उसने कहा देवनागरी स्क्रिप्ट में गला कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी उसका बता दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यू माइट ऑल्सो हियर कंठ. कंठ स्पेसिफिकली रिफर्स टू वोकल थ्रोट और थ्रोट ऑर्गन, बट गला इज द एवरीडे वर्ड यूज्ड इन कॉमन कॉन्वर्सेशन.
0: या गला खराब कहते हैं, कंठ खराब है नहीं कहते हैं.
1: दैट्स राइट.
0: या वैसे ये है कि तुम बात कर रहे थे, मैंने एक पोस्ट देखी है. इट सेज कि AI strikes again, as in कि AI को ऐसे सवाल पूछे and then कुछ अलग सा ही आंसर आया. सवाल पूछा, ऐसे फ्रूट्स का नाम बताओ that ends with um, U-M.
1: U-M.
0: Yeah. आंसर आया एप्पलम, बनानम, स्ट्रॉबेरी रम. So not always right. In fact, AI को बोला, this is really funny, कि Oreo जो होता है, spelled backwards. तो सेम होता है. उसने बोला या ये इसे पैलिंड्रोम कहते हैं हम. तो उसने एग्री कर दिया, बट ओरियो को बैकवर्ड करो तो ओरियो नहीं होता
1: नहीं,
0: है वो,
1: ओरियो होता है.
0: या तो एआई ने उसको वहां पे भी नहीं समझा. एक और था, हाउ लॉन्ग अगो वाज 1919,
1: हाउ लॉन्ग अगो.
0: या एआई का जवाब था 20 इयर्स अगो.
1: वैसे कैसे?
0: एग्जैक्टली.
1: ओ, एआई पुराना है मतलब.
0: एआई ने सही पिक नहीं किया.
1: ओ.
0: Yeah. So AI is not always right. ये आप ध्यान रखिएगा.
1: AI is sounding more like Ruzbe right now.
0: ऐसा लग रहा है कि
1: always going wrong.
0: Yeah. ये कहीं कहीं भी Ruzbe बैठ के ऑपरेट कर रहा है उसको.
1: Yeah. Anyway, थोड़ी देर में after a few messages आपके लिए हम लेकर आएंगे यहाँ पे Commonwealth Games की updates. तैयार रहिए अपने झंडे लहराने के लिए. Coffee break with Sandy. उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती है और सब पस्त कर देती है सब.
2: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz. पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है. अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का. टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपर साइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ. अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज. ट्रेड इन्स वेलकम. फाइनेंस भी अवेलेबल है. फ्यूल पर पैसे बचाइए. ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स. विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाटा नैनो. फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
3: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
4: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर. यार
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
7: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimize landfill waste. To find out what's accepted, where to place it, and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, All Together Auckland.

0: वेल कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अगर आपको बताएं तो न्यूजीलैंड का काफ़ी अच्छा रन हुआ है इस बार, और नो पन इंटेंडेड, बट यस 100 मीटर स्प्रिंट में वुमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट में जोई हॉब्स ने नेशनल हिस्ट्री क्रिएट की है बाय कैप्चरिंग गोल्ड मेडल. तो जोई हॉब्स को मिला है गोल्ड मेडल.
1: न्यूजीलैंड के वैसे 13 मेडल्स है, पुटिंग देम इन 8th प्लेस ओवरऑल ऑन द मेडल टेबल.
0: दैट्स कूल यार. एंड टॉप 10 में इंडिया भी है, टॉप 10 में एक्चुअली में, विद 3 गोल्ड मेडल्स करंटली. वेटलिफ्टिंग जूडो में उनको मिले हैं मेडल्स, एंड बॉक्सिंग में भी काफी स्पॉटलाइट मिली है, एंड स्प्रिंटिंग में भी. सो या बट न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो लुइस क्लेयरबर्ट, इनको मिला है सिल्वर इन अ थ्रिलिंग मेंस 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली फाइनल. ये इनको स्विमिंग में मिला है. एंड एरिका फेयरवेदर, इनने इनको मिला है सिल्वर इन विमेंस 400 मीटर फ्री स्टाइल, और ये जस्ट बिहाइंड पैलेस्टर थे. तो इनका पहला ये कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल है.
1: वाओ.
0: सो Yeah, काफी good news for New Zealand and India as well.
1: So काफी अच्छे actually में so far जो medal tally है ये आए हैं Commonwealth Games में. अगर आपने miss out किया है, वैसे Commonwealth Games 2 अगस्त तक होने वाली है Scotland में, and काफी सारे अभी भी games होनी वहाँ पे बाकी है, अभी भी काफी results आने बाकी है.
0: Fiji also playing quite well, like Fijian athletes भी काफी अच्छा, उनका solid strides है. Through the preliminary rounds in judo and boxing weight categories, और अभी उनका भी target है second half of games में to get a few medals.
1: So far, Pakistan has at least one guaranteed bronze medal, जो कि confirm है 2026
0: boxing में ना, yeah. Boxing में शायद नहीं, क्या is it in? It's in boxing,
1: yeah.
0: Fatima Zahra.
1: Yeah.
0: उनको ये उनको यहाँ पे
1: इनफैक्ट जहरा ने डिफीट किया है न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को.
0: अरे वाह, क्या बात है. कूल. ऑलराइट, और भी बातें करेंगे आपके साथ, बट अभी के लिए बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड का ये गाना आपके लिए.
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Chartbusters में गाना आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही important realization हुआ मुझे आज. एक यहाँ पे message आया हमें 5599 पे. Thank you so much. बहुत प्यारा सा आपने message भेजा, लेकिन लंबा message था वो. तो सैंडी के ऑलमोस्ट पाओ के तले जमीन ऐसे खिसक गई. वो बोली कि अब क्या हो गया भाई, अब किसको क्या दिक्कत हो गई.
1: वो ऐसा होता है ना, इतना लंबा मैसेज आता है तो एक कंप्लेन ही आती है, मैंने कहा अब क्या हो गया. और मतलब फॉर्मेट थोड़ा सिमिलर था. ये खैर पूरे मैसेज में तारीफ थी, लेकिन फॉर्मेट सिमिलर होता है कि पहले थोड़ी एक दो लाइन में तारीफ लिखी होती है, देन उसके बाद लेकिन ये
0: दिक्कत है हमको,
1: लेकिन ये दिक्कत है ऐसा आ जाता है.
0: मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये मैं जब शो में आता हूँ तभी जब कोई मैसेज आता है तभी आपके ऐसे ऐसे इंडिकेटर ऐसे चालू हो जाते हैं.
1: नहीं होते, वैसे भी होते हैं.
0: वैसे भी होते हैं ना. हाँ. आप मेरे को लग रहा है अभी बहुत नॉन शैलेंट हो गए हो.
1: होते
0: कभी.
1: ऐसा नहीं है,
0: यंग लोगों के साथ आपका ज्यादा ये हो रहा है संगत का असर.
1: मेरे अराउंड कोई जेंजी नहीं है. ओ हाँ है ना आरजू.
0: हाँ, आरजू जेंजी है ना.
1: लेकिन आरजू से मैंने जेंजी वाले क्वेश्चन पूछे थे एक दिन कि अकॉर्डिंग टू जेंजी आजकल ये जो चीजें आजकल जेंजीज वापस लेके आ रहे हैं उसमें से 90% उसका नो था. तो मैंने बोला तुम फेक जेंजी हो, तुम रहने दो. सो बेसिकली यू नो जो वाइड वाले हेडफोन होते हैं अपेरेंटली दे आर बैक. जेंजीज आर यूजिंग देम एंड और भी काफी सारी चीजें. सीडी प्लेयर्स जो है,
0: CD player is back.
1: फोटो जो होती है जो पोर्ट्रेट, वो तो वैसे भी इट्स अ ट्रेंड ऑल्सो कि वैसे जो फोटो हार्ड कॉपी निकलती है.
0: अच्छा.
1: द ट्रेंड इज बैक एज वेल, रदर देन हैविंग ऑल द सॉफ्ट कॉपीज, कीपिंग हार्ड कॉपीज ऑफ द फोटोज आर बैक एज वेल. सो ऐसे ट्रेंड जो है ये वापस आ रहे हैं. यू नो हाउ द फैशन इज कमिंग बैक of bell bottom jeans and all that.
0: Are you sure hard copy photos? Meko sachi mein I want to know this. When was the last time you printed out photos?
1: I do that.
0: Nahi maine print kiye the kyunki wo humko hamare like you know
1: deewar pe lagane the,
0: wall pe lagana hota na, to uske liye print out kiye the.
1: मैंने फोटो एल्बम के लिए किए प्रिंट.
0: फोटो एल्बम आपने किया? फोटो एल्बम
1: मेरे नेफ्यू का. या
0: ओह वाओ.
1: तो उसके कुछ ऐसा प्रिंट करके रखे है उसमें.
0: गुड
1: इवनिंग सैनी एंड रुज़बे, आई ऑलवेज एंजॉय योर शो एंड गुड टू सी रुज़बे स्टार्टिंग अर्ली टुडे. होप यू गाइज आर एंजॉइंग योर डे एंड वीक. थैंक यू फॉर मेकिंग द शो एंजॉयबल एंड कीप लिसनर्स एंगेज्ड विद यू गाइज. शोएब वही है ना, आवारापन वाले.
0: ये आवारापन वाले फैन थे आई थिंक, मेरे को लग रहा है एक टाइम पे. बट या एनीवे हम आवारापन 2 देखने का प्लान कर रहे थे यार, तो पता नहीं अभी कोई कीन है कि नहीं अब तक.
1: या तो यू आर प्लानिंग इट, प्लान इट रुज़बे.
0: चलो ठीक है,
1: अब ऐसी चीज में रुज़बे फेंक देती हूँ. यू डू यू प्लान इट.
0: इसलिए कभी कुछ होता ही नहीं है.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे गाने तो लेकर आते हैं, लेकिन एक टॉपिक भी हाथ लगा है जिसके ऊपर आपके साथ चर्चा करना चाह रहे हैं. एंड लेट्स सी हाउ मेनी यू नो फिट द डिस्क्रिप्शन.
1: व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
0: तो अभी इसमें हुआ ये है कि न्यूजीलैंड फर्स्ट के एक कैंडिडेट है जॉर्ज नाटाई. इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि लाइक बेसिकली उन्होंने किया कि टोल्ड हिम ही हैड बेटर नो व्हाट अ वुमन इज, और उन्होंने लिखा आई सेड वेल डार्लिंग अ वुमन इज लाइक अ फीमेल दैट नोज वेयर टू शॉप फॉर क्लोथ्स एंड शूज एंड चॉकलेट्स. इसके ऊपर विलिस, जो निकोला विलिस है फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत भड़क गई और ये बोला कि ऐसे कैसे तुम वुमेन को सिर्फ ऐसे डिफाइन कर रहे हो जिनको जगह मालूम है वेयर टू शॉप फॉर क्लोथ्स शूज एंड चॉकलेट्स, लाइक यू नो वी आर मोर देन दैट. आई वॉन्ट टू नो if you are a woman, female, and you are not into shopping, कितने ऐसे हैं women या female who are not into shopping?
1: जिनको shopping करना पसंद नहीं है, वो किसी भी type की shopping हो सकती है, online shopping या browse करके shopping, any type of shopping.
0: Yeah, shopping आपको पसंद है, malls जाना नहीं पसंद आपको?
1: या कोई भी शॉपिंग बेसिकली, बिकॉज आजकल बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन हो चुकी है ना.
0: ऑनलाइन भी हो गई ना शॉपिंग.
1: या मोस्ट ऑफ अभी क्या हो चुका है कि मॉल थोड़ा वो साइड स्टेप हो चुका है, बिकॉज ऑनलाइन इट्स अवेलेबल, डिलीवर भी हो जाता है.
0: सो इफ यू आर अ वुमन, गिव अस अ कॉल 0800-004-866 एंड यू डोंट लाइक शॉपिंग एट ऑल और यू डोंट प्रेफर शॉपिंग, बट आपको करना पड़ता है मजबूरन. इट्स लाइक द मोस्ट इरिटेटिंग टास्क फॉर यू, लाइक मेरे लिए शॉपिंग इज द मोस्ट इरिटेटिंग टास्क, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद.
1: मेन के लिए या आई अंडरस्टैंड, काफी मेन के लिए होता है.
0: नहीं यार, मैं कुछ मेन को जानता हूँ जिनको बहुत पसंद है उनको.
1: हाँ, कुछ को बहुत पसंद है या
0: बीवियों से ज्यादा वो शॉपिंग करते हैं.
1: बट काफी मेन को पसंद नहीं होती है शॉपिंग.
0: और ये मैं ग्रोसरी शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ.
1: वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो कपड़े खरीदने चले गए,
0: लग्जरी वाले
1: या शूज, यू नो दोस काइंड ऑफ स्टफ. सो व्हाट अबाउट यू, आर यू
0: अ शॉपर ना?
1: Yeah, I like, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर वीकेंड पे ही शॉपिंग करने के लिए निकल
0: जाऊं. लेकिन आपको पता रहेगा कि कहाँ पे अगर मेरे को कपड़े अगर लेने के हैं या जूते लेने हैं तो कहाँ से
1: मुझे कहाँ जाना है,
0: तो वो आपको पता है?
1: वो मुझे पता
0: नहीं, अगर मेरे को भी लेने समझो तो आपको पता है कहाँ पे जाना
1: है?
0: आपको
1: मतलब पता होता है जो अगर चीज मैंने खरीदी है वो फिर मुझे पता है कि कहाँ पे किसी को गाइड करना है.
0: राइट,
1: वो डिपेंड करता है. So yeah, I am a shopper, I will say, but not as a every weekend wali.
0: अरे यार, इनका फोन कट हो गया. आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे, फिर से एक बार ट्राई कीजिए 0800-004-866. I have only 1 minute now left. एक मिनट के बाद
1: या तो मैसेज करके बताइए यहाँ पे 5599 पर कि अगर आप लेडी हैं और आपको शॉपिंग करना पसंद नहीं है.
0: हाय.
2: हेलो
0: जी.
2: I hate shopping.
0: You hate shopping. Great. Okay,
2: so from the beginning, शुरू से I hate shopping, चाहे groceries हो या कपड़े हो, I hate it.
1: Wow.
2: कुछ भी.
1: So आपके बिहाफ पे कोई करता है?
2: Especially जब बच्चे हैं. नहीं, that's why I think, क्योंकि मैं ही करती हूँ इसीलिए.
0: तो आपके पति तो बहुत खुश होंगे लेकिन.
2: ओह हाँ, वो तो एक ब्रेड लव को ब्रेड भी लाना होता है ना, तो उसको बताना पड़ता है कि कौन सा लाना है, इसीलिए अपने ही चल दो फायदा होता है.
0: नहीं उसके लिए नहीं, बट वो खुश होंगे. आपको शॉपिंग करना नहीं पसंद तो मतलब आप मॉल
1: खर्चा में नहीं है ज्यादा.
0: हाँ,
2: maybe no, actually he likes more shopping than I do.
0: He likes more shopping ना.
1: दोनों में से कोई एक तो होगा ऐसा ना.
0: या balance, there has to be a balance ना, balance हमेशा maintain होना चाहिए. Thank you so much यहाँ पे call करने के लिए.
2: Yes,
0: thank you
1: for calling.
0: Thanks. मॉल जाना पसंद है मगर बीवी के साथ नहीं भाई, ऐसा यहाँ पे एक मैसेज आया है. वेरी बैड यार,
1: सीखो रुस्बे से कुछ.
0: मैं तो बीवी के बिना कहीं नहीं जाता हूँ.
1: Yeah.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चिल टाइप का वेदर है आज, बहुत ही ब्यूटीफुल दिन। कल का भी दिन बहुत ही बढ़िया सा रहने वाला है। ओवरनाइट आज टेम्परेचर रहेगा एज लो एज 7 degrees, एंड अभी आप महसूस कर रहे हैं अराउंड 13 degrees। 5:34 को आज होगा सनसेट।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
3: चार बजकर दो मिनट गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे। हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून। 29 जुलाई आज।
4: अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रुज़बे। और आज वैसे सिचुएशनशिप है, ब्लेस यू। और सिचुएशनशिप में हम किसी को एक सिचुएशन में डालते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करें। लेकिन आज हम किसी की सिचुएशन जानना चाहेंगे जो इसमें है ऑलरेडी।
3: अच्छा,
4: या
3: 5 बजे के बाद की? अभी
4: ये 5 बजे के बाद करेंगे हम।
3: अच्छा, ये 5 बजे के बाद करेंगे।
4: या ये 5 बजे के बाद हम सिचुएशनशिप जो है
3: अभी क्या करेंगे फिर? अभी बताओ कुछ। अभी कुछ ऐसा कुछ मजा है, ऐसा कुछ करो अभी सैंडी।
4: ऐसा वाला क्यों? अच्छा, ऐसा वाला चाहिए तुम्हें?
3: हाँ, कुछ ऐसा मजा है।
4: मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट पढ़ी है एक।
3: हाँ यार, आप मत रहो सोशल मीडिया पे भाई।
4: मैं एल्गो चेंज ना रहा हूँ।
3: बहुत झगड़ रहे हो सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ ऑफ लेट। क्या हो
4: रहा है? नहीं रही हूँ। उसे झगड़ना नहीं कहते, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कहते हैं।
3: अच्छा,
4: एनीवे, सो मैंने इंटरेस्टिंग पोस्ट पढ़ी है कि यू नो, जब हम बोलते हैं कि उसका एक्सेंट ऐसा है, उसका एक्सेंट ऐसा है, एक्सेंट के बारे में हम बहुत बातें करते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट, जिसमें उन्होंने बोला है कि इट्स नॉट एन एक्सेंट, इट्स एन आइडेंटिटी। हाँ, बहुत भारी बात की इन्होंने यार। पीटर नोवक ये है, एक प्रोफेसर है। इन्होंने बोला है कि जब अपनी लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज में हमारा कल्चर होता है, हमारी स्टोरीज होती है। इट आइडेंटिफाई हु यू आर। सो इट्स नॉट एन एक्सेंट, इट्स एन आइडेंटिटी। कि हमें इन चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए। एंड द गोल वॉज नेवर टू लूज योर एक्सेंट, द गोल इज क्लैरिटी। देयर इज अ बिग डिफरेंस। कि जो बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए ना।
3: यार मेरे को ना ये जानना है कि क्या यहाँ पे काफ़ी लोग माइग्रेंट्स हैं, लाइक यू नो, काफ़ी लोग बाहर से आए हैं, राइट, अलग अलग जगहों से। क्या यहाँ पे आके आपका एक्सेंट बदला है?
4: मेरा नहीं बदला है।
3: हाँ,
4: तुम्हारा भी नहीं बदला?
3: मेरा भी नहीं बदला।
4: या
3: क्या आपका एक्सेंट बदला है? लाइक प्लीज़ यहाँ पे कॉल करके बताइए कि आपका एक्सेंट अगर बदला है तो।
4: अगर आपने स्कूलिंग वगैरह ऑलरेडी अपनी होम कंट्री कहीं और से की है
3: और
4: उसके
3: पुराना
4: बाद?
3: और पुराना एक्सेंट पे आप स्विच कर सकते हो क्या? You know, that is the question. Hi.
5: Hello.
3: जी, आपका एक्सेंट बदला है?
5: नहीं, मेरा तो नहीं बदला, but I have seen so many girls specifically, और मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मैं उनकी बात करूंगी। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड anyone, but एक हफ्ते में मैंने देखा है लड़कियां ऐसे बात करती हैं। मैं उतनी जा रही थी, इसने उतनी देखा सीगा।
4: सड़े द फ्लोर पर तुझे कारपेट लगे हुए ने।
5: नहीं मतलब पंजाबी तो बोलना, बट वो इंग्लिश वाले एक्सेंट में पंजाबी बोलना।
4: और वो एक वर्ड बना जाता है रुज़बे बीच में, लाइक मैं ऐदा कहना चाहती थी, लाइक मैं ऐदा कह रही थी, लाइक
5: नहीं। अरे सैंडी, आप फिर भी बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हो। जैसे मैंने देखा है ना, मैं उसे जा रही सी रही वाला, मतलब इंग्लिश वाला, तो मैं ऐसे हैरान हो जाती हूँ कि हमने तुम्हें लास्ट वीक देखा था, हमारा एक्सेंट ऐसा नहीं था। मतलब हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? तो मुझे अच्छा, पर्सनल चॉइस है ना, अगर आपको ऐसे बोलना है तो।
4: अच्छा, आपने स्पेसिफाई कर दिया परविंदर कि ये उनके ऊपर बात कर रहे हो जो उनका, जिनका एक्सेंट आपने हफ्ते पहले सुना है डिफरेंट है, हफ्ते बाद कुछ और है। सो
5: सेम थिंग, जो वो मैं बंदे का नाम भूल गई, रॉबर्ट बोला आपने, क्या नाम था?
4: मैं भी भूल गई, एक मिनट।
5: बोला कि योर आइडेंटिटी
3: जैक, जैक क्या कोई है?
4: जैक भी नहीं है, रॉबर्ट भी नहीं है, पीटर नोवेक।
3: पीटर है, पीटर। हाँ,
5: दिस इज एक्चुअली रियली ट्रू है ना, कि क्योंकि जब कोई बात करता है वी कैन टेल कि ये कहाँ से है ना, इज देयर आइडेंटिटी। तो व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी, मुझे समझ नहीं आता। जैसे लोग, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुझे इतने साल हो गए हैं तू फिर भी इंग्लिश में तेरा एक्सेंट नहीं आया, तो आई वाज लाइक व्हाई डू आई हैव टू चेंज?
4: क्लैरिटी होनी चाहिए कि पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो।
5: एंड ऑल्सो आई हैव सीन पीपल जो मतलब रॉन्ग प्रोनंसिएशन करते हैं कुछ चीजों की, आई नेवर करेक्ट देम, क्योंकि एवरीवन हैज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स है ना, क्योंकि हर एक कंट्री का प्रोनंसिएशन अलग होता है।
3: पॉइंट है, मतलब वो ऐसा सेकंड थॉट उसका वो जाता ना कि समझ में आ रही है ना बात, तो फिर क्यों बदल रहा
5: है। तो मैं जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तूने गलत बोला, ऐसे नहीं। जैसे मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पहले वी और डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस पता नहीं चलता था।
4: किसी को मेरे को लगता है सबको बाहर आके ही पता चला है वो।
3: हमको भी यहाँ पे करेक्ट किया था किसी ने कॉल करके, तो मुझे अभी पता है वाटर मतलब लिप्स, लिप्स से वाटर वाटर नहीं नहीं क्या है, गलत बोल रहा हूं मैं,
4: वाटर डब्ल्यू पाउट के साथ है और वी जो है,
3: सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया,
4: जो है वो नीचे लिप्स को ऐसा काट के वैसा
5: फ्लैट लिप्स के साथ
3: वाटर वाटर एंड वायलेट
4: हो गया तुम्हारा,
3: समझ गया मैं।
5: तो मैंने मेरा एफर्ट लगा के सीखा व्हाट इज द डिफरेंस है ना, पर एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया, मैंने हेलोवीन बोला था है ना, वो मुझे डिफरेंस नहीं बता रहा, मुझे करेक्ट कर रहा है, हेलोवीन दधी हेलोवीन है ना, तो मेरे तरफ से मैं हेलोवीन ही बोल रही हूँ बट डब्ल्यू लगा के वी लगा के है ना, कि मतलब वो मजाक उड़ाना है मेरा कि हाँ गदी कहेगी गदी कहेगी, बट डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं बता रहा है ना। आई वाज लाइक आइदर यू डोंट करेक्ट, यू गॉट माय पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोवीन, यू गॉट माय पॉइंट है ना, इफ यू वांट टू करेक्ट मी टीच मी इन अ बेटर वे इंस्टेड ऑफ मॉकिंग।
4: लेकिन वही कंस्ट्रक्टिव वे भी हो सकता है,
3: वही तो फर्क है ना, इसलिए तो आप टीचर हो और बाकी वो टीचर नहीं होगा। मैंने आज एक चीज तो समझ ली है यहाँ पे कि जब भी कोई बोलता है ना नो ऑफेंस या मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ, मतलब वो ऑफेंड करना ही चाह रहे हैं।
4: एंड आल्सो विद ड्यू रिस्पेक्ट,
3: विद ड्यू रिस्पेक्ट मींस इज कंप्लीटली विद डिसरिस्पेक्ट।
5: नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब कि बात ऑफेंसिव नहीं है बट देयर इज समवन इतना ज्यादा अंदर से सेंसिटिव कि वो ऑफेंड हो ही जाएगा, तो दैट्स व्हाई।
3: नाइस, इसके बारे में नहीं बात करेंगे तो सही रहेगा।
4: थैंक यू परवीन।
5: जैसे मैं टीचर हूँ, नहीं एक बात मैं कहूंगी, जैसे मैं टीचर हूँ ना, तो मैं क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे में से एक बच्चा तो ऐसा होता ही है जो एक जनरल कॉन्वर्सेशन को भी अपने ऊपर ले जाता है और ऑफेंड हो जाता है।
3: हाँ, वो उसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना।
5: हाँ,
3: हाँ, हाँ, हमारे आसपास भी बहुत ऐसे लोग हैं। थैंक यू परविंदर, थैंक्स यार। अच्छा, बाय बाय।
4: थैंक यू परविंदर, बाय
3: जी। सो आप भी यहाँ पे कॉल करके शेयर कर सकते हो कि आपका लाइक मेरे को आई वांट टू नो, वो लोग जो ना ऐसा स्विच कर सकते हैं एक्सेंट, लाइक मेरे कुछ पहचान
4: है, होते ऐसे,
3: वो देसियों के साथ फुल इंडियन एक्सेंट में बात करेंगे और जैसे ही कोई कीवी सामने आ गया वप करके स्विच हो जाता
4: है यार वो।
3: हाँ, बहुत सही क्वालिटी है,
4: बहुत अच्छी क्वालिटी है वो।
3: तो मैं उन लोगों के साथ यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे पले बड़े हैं, उनके पास है वो क्वालिटी
4: या उनके पास भी है, जो पले बड़े नहीं भी है उन्होंने भी कईयों ने सीखा है।
3: अच्छा,
4: बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ जॉब, मे बी बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट या किसी भी चीज के कारण हो सकता है।
3: कुछ एक्सेंट तो मेरे को समझ में नहीं आते, तो वो जब बात कर रहे तो मेरे को उनकी बात भी नहीं समझ में आती है क्योंकि मैं फुल टाइम वही सोचते रहता हूँ कि ये इसका एक्सेंट आया कहाँ से यार। कितने पॉडकास्ट थे इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो अलग एक्सेंट ही नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से आया कहाँ से ये।
4: या तो जिस पॉडकास्ट में उसमें चुप है आप समझ लेना।
3: नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं वो ऐसे गेस्ट के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं।
4: ओके
3: सैंडी यार, आप भी ना यार, क्या यार।

0: easy queen beds from only 799. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
2: Kundi khadga ho. Ya seedha andar aao.
3: Main laun apna A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
4: आप सुन रहे ड्राइव शो विद सैंडी एंड्रूज़ बे 4:22 हो चुके हैं अभी स्टूडियो में और आपकी घड़ी में भी शायद
5: एंड रुजबे शायद ये न्यूज़ तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नहीं है जो मैं अभी ये बोलने वाली हूँ
4: हाँ बताओ ना
5: सो पिछले साल और उससे पिछले साल दो बार इस चीज़ के ऊपर बात हुई थी अबाउट बैनिंग फायरवर्क्स न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है रिकमेंडेशन टू बैन द पब्लिक सेल ऑफ फायरवर्क्स deciding to keep the current rules in place despite growing calls for the change from animal welfare groups like fire authority ki aur se bhi
4: main khush hu isse sandy
5: kyun tum to chahte the ban ho jaye
4: nahi nahi main nahi chahta hu ban ho jaye main chahta hu logo mein responsibility badh jaye kyunki main I am against bans mujhe nahi lagta ki ban koi bhi cheez honi chahiye kyunki agar logo ko karna hai ban is working against democracy
5: yeah
4: so people need to just get more aware कि भाई फायर क्रैकर्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट तो उनका खुद का कॉन्शियंस ने अवेकन होना चाहिए और वो डिसाइड करना चाहिए
5: एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन गवर्नमेंट ने नो बोला है
4: इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये दिवाली में भी स्पॉन्सर करते हैं फायर क्रैकर्स बड़े प्राउडली ये उनको एक उनके ऊपर ये एक सवाल है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो सस्टेनेबिलिटी को लेकर अगर तुम फायरवर्क्स को स्पॉन्सर कर रहे हो
5: तो कैसे या गवर्नमेंट का ये कहना है
4: वाला कुछ करो ना कुछ ऐसा कुछ अलग आइटम करो
5: लाइट सेइंग गवर्नमेंट का कहना है कि रिस्पांसिबल पीपल शुड नॉट लूज एक्सेस बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ माइनॉरिटी जो उसको मिसयूज कर रहे हैं सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग नेशनल लॉ इट बिलीव्स कि जो फोकस है शुड बी ऑन द बेटर एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स सो उसके ऊपर काम होना चाहिए सो काफ़ी पिटिशंस आई थी रिसेंटली जो रिकमेंडेशन थी इट वॉज फॉलोड बाय मल्टीपल पब्लिक पिटिशंस जो कंसर्न्स थे अबाउट इंजरीज टू पीपल एंड फायर्स विच वॉज कॉज्ड बाय फायरवर्क्स डिस्ट्रेस एंड डेथ्स ऑफ पेट्स एंड लाइफ स्टॉक एज वेल ये भी काफ़ी हुआ था रिसेंटली
4: पेट्स को काफ़ी ट्रॉमा हो जाता है ना फायरवर्क्स के कारण पेट्स नहीं एक्चुअली बच्चों को भी काफ़ी इरिटेटिंग होता है
5: कई बच्चों के लिए भी एंड काफ़ी प्रेशर रहता है उस समय पर एमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर भी एंड गवर्नमेंट ने ना इसीलिए बोला है कि यू नो वो कुछ ऐसा इन्फोर्स नहीं करना चाहती है एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ को प्रमोट करना चाहती है एंड एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर ही बेटर वे से काम करना चाहते हैं
4: या एंड दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ फेयर ऑल्सो एंड प्लस इलेक्शन का टाइम भी है तो
5: ऐसा रिस्क तो नहीं ले सकते
4: यू डोंट वांट टू अपसेट एनी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एज सच यू नो सो या अंडरस्टैंडेबल
5: इवन फॉर द गाय फॉक्स नाइट जो होती है ना उसके लिए बहुत बड़ी सेल होती है इनफैक्ट फायरवर्क्स गाय फॉक्स
4: के टाइम पे ही होती है ना
5: तभी होती है या 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में होती है
4: या इनफैक्ट वो एक उस पे भी आई थिंक नया पिटीशन आएगा कि भाई अगर गाय फॉक्स के लिए आप फायर क्रैकर्स रख रहे हो तो फिर दिवाली के लिए भी रखो ना क्योंकि दिवाली में भी फायर क्रैकर्स होते ही है तो ये तो अभी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडियंस तो अगर इतने सारे लोग अगर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर उनको भी फेयर चांस दो सेलिब्रेट करने का
5: व्हाट इज योर टेक ऑन दिस जो अभी रुजबे ने बोला है 0800 हम पर कॉल करके आप शेयर कर सकते हैं और यू कैन मैसेज ऑन 5599 व्हाट डू यू थिंक देयर शुड बी different kind of permission for Diwali as well agar guy fox ke liye hai to kya Diwali ke liye bhi honi chahiye permission or do you think ki abhi jaise hai it's okay
4: dekho mera point simple hai I am against fireworks in general but agar aap rakh rahe ho to then fir you be fair with everyone
5: fair and square
4: अगर जो भी कम्युनिटीज में फायरवर्क्स होता है सेलिब्रेशन तो आप सबको अपॉर्चुनिटी दो ना करने की ऐसा थोड़ी है कि भाई
5: वही हो जाएगा ना बहुत सारी कम्युनिटीज में आ जाएगा कि हमारे इसमें भी सेलिब्रेट होता है इसमें भी फायरवर्क्स होता है
4: तो फिर वो तो अभी वही तो है ना डेमोक्रेसी भाई सबको सबका साथ सबका विकास
5: और द कंट्री जो है जो शुरू से करती आ रही है वो कर रही है सो लेट्स सी आपका क्या टेक है इसके ऊपर
4: क्योंकि काफी बार एक्चुअली मैं आपको पता है ना कि अभी इस साल दिवाली 8th या 9th नवंबर को है 9th नवंबर को दिवाली है इस साल एंड गाय फॉक्स डे कब है क्या टाइम
5: हमेशा 5
4: को होता है सो यू आर एक्चुअली नॉट अलाउड टू बर्स्ट क्रैकर्स ऑन द 9th ऑफ नवंबर यू आर ओनली अलाउड टू बर्स्ट क्रैकर्स ऑन गाय फॉक्स डे एज पर रूल और 1 or 2 डेज अराउंड बट इतना एनफोर्स नहीं है वो लॉ
5: अभी थोड़ा इजी है
4: एंड दैट इज बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज डिफरेंट कम्युनिटीज दैट सेलिब्रेट डिफरेंटली
5: एंड मेरे को लगता है कि कम्युनिटीज ने भी यहां पे बहुत रिस्पांसिबली इसको यूज किया है
4: जी
5: ऐसा ओवर भी नहीं किया है
4: Yeah, yeah, I think so too. But आप भी शेयर कीजिए आपका क्या थॉट है इसके ऊपर डू यू थिंक इट शुड बी लीगल देखो पब्लिक हॉलीडे की तो बात कर रही थे ना कि दिवाली के टाइम पर पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए आई थिंक बिफोर पब्लिक हॉलीडे कैन वी पास अ लॉ के दिवाली के दिन पे यू आर अलाउड टू बर्स्ट फायर क्रैकर्स फिर उसमें वहां पे वापस से दिक्कत होगी ना कि कौन से दिन एक्चुअली में दिवाली सेलिब्रेट होती है क्योंकि हम यहाँ पे दो दिन पे सेलिब्रेट करते हैं ना अगर आपको भी शेयर करने इसके अराउंड आपके थॉट्स 0800-004-866 इज द नंबर 0800-004-866
5: छ छ
4: सारू छ छ

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे गाने तो है ही, प्लस इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी हम करते हैं. देखो अभी से ही मुझे लग रहा है जो डिबेट ये शुरू हो जाने वाला है, एंड वी डिडंट वॉन्ट टू ओपन द कैन ऑफ वर्म्स. नहीं, मैं मेरी गलती है, दिवाली 9th को है शायद,
1: पता नहीं, हमें नहीं पता है.
0: 9th नवंबर को है, बट वील नो क्लोजर टू द डेट, मुझे से लग रहा है, पता नहीं यार.
1: किसी का एक्चुअली में मैसेज आया कि इस दिवाली ऑन 8th और द दिवाली जो
0: नहीं,
1: है
0: इलेक्शन जो है वो है 8th को और 9th को दिवाली है.
1: हाँ,
0: बट आई डोंट नो
1: दिवाली कब है वैसे, एज पर गूगल इट्स 8th नवंबर, बट
0: ओ गूगल में क्या है
1: 8th नवंबर.
0: क्या बात कर रहे हो, गूगल में तो 9th. ओ हिंदी का, अच्छा
1: तो न्यूजीलैंड का हिसाब थोड़ा अलग चलता है ना.
0: और मेरे को लगता है वी शुड टैकल दैट सिचुएशन व्हेन इट अराइजेस, लाइक वो टाइम पे हम लोग को देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं. अभी के लिए इलेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो 8th को ही है.
1: इलेक्शन 8th को है, और एक और ट्रेलर आ चुका है रुस्बे बटवारा 1947.
0: अच्छा,
1: इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे.
0: मैसेजेस के बाद आपके लिए बंटवारा का यहाँ पे ट्रेलर लेकर आएंगे जो आपको सुनाएंगे हम. The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic. Matatin Nega Botany Trade. Clear overnight for Auckland light northerlies. A low of 8 degrees on the northern. It's heavy heading out of the city from St Mary's Bay to Northcote Road. The northwestern is slow from Newton Road to Rosebank. On the southern, it's heavy southbound Grafton to Sylvia Park and heading north from just before Sylvia Park to Green Lane. Southwestern is pretty slammed in both directions through Mangere Bridge.
2: Matatin Nega Botany Trade event Saturday. Stock up on great deals and meet the suppliers.
3: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
4: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
5: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items,

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए एंड अभी मौका आ गया है कि हम आपको सुनाएं एक नया ट्रेलर जो रिलीज हुआ है एंड दिस इज फ्रॉम आमिर खान टॉकीज बटवारा 1947. इसमें है शबाना आजमी, सनी देओल एंड प्रीति जिंटा. काफी समय बाद
2: या प्रीति जिंटा को
1: कैसे लग रही है वो यार अभी भी?
2: या आईपीएल में देखा नहीं उसको कितनी बार?
1: मैं आईपीएल नहीं देखता हूँ ज्यादा.
2: मैंने भी आईपीएल नहीं था देखा लेकिन प्रीति की वीडियोस बहुत देखी है.
1: अच्छा
2: आईपीएल में.
1: ओके तो चलो ये बंटवारा का टीजर ट्रेलर हो जाए आपके लिए, सुनिएगा.
3: देश की आजादी मुबारक हो.
4: आपको भी बहुत मुबारक हो.
5: कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का.
6: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए.

0: वाला जो सीन है ना, मुझे वो गदर वाला सीन याद दिलाता है. गदर का जो सीन है ना,
1: एक्चुअली मैं कॉम्बिनेशन लग रहा है वीरजर एंड गदर, बिकॉज़ इट्स प्रीटी एट द एंड. राइट,
0: अली फजल भी है इसमें.
2: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है.
3: अम्मा यहाँ कोई है?
4: कौन है आप?
3: तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कार्य घुस आए?
2: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती.
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा कार्य.
1: शबाना आजमी है ना?
5: ओ यार, तैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है.
2: आप मुझे धमका रहे हैं?
5: पंगा लेना है?
2: इरादा तो नहीं है, पर इतराज भी नहीं है.
5: मिट जाएगा
4: ये हिंदू बुढ़िया, सबनों हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है.
3: लोग कहते मैं नापाक हूँ.
4: मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो.
2: मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है.
6: अम्मा यह खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है.
7: पहचान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता.
8: कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है.
9: तू उस्ताद को नहीं जानता
6: और तू मेरे बाप को नहीं जानता. वो ना घर देखेंगे ना सरहद,
0: सिर्फ हैंडपंप,
6: सीधा घुस के मारेंगे.
1: ये करण देओल है.
0: ओ ये करण देओल है, अलग दिख रहा है ना बहुत.

0: दूंगा पूरे शहर को।
1: हिंदू औरत के लिए आप?
0: हिंदू औरत वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है।
2: एक्शन पैक्ड है,
3: फुल एक्शन एंड शरीर भी वो लवली फॉर्म में है। फुल डायलॉग्स जो उनके ऊपर सूट करते हैं।
2: एआर रहमान का म्यूजिक एंड जावेद अख्तर के लिरिक्स
3: एंड या आमिर खान प्रोडक्शंस है ये
2: जी। सो या दैट इज व्हाट वी आर गोना गेट ऑन द 14th of August। 14th ऑफ अगस्त को ये रिलीज होने वाली है, बटवारा 1947।
3: अगर आपको ट्रेलर चेक करना है अभी जाके हमारे सोशल मीडिया पे बाद में, या फिर यू नो जस्ट गो टू यूट्यूब एंड चेक द ट्रेलर, और बताइएगा कि आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं।

0: सैंडी जेन जी टर्म में इसको क्या कहते हैं मालूम है? देखूंगा, सोचूंगा, कल परसों कुछ कहूंगा.
1: I know.
0: क्या?
1: Benching.
0: Ghosting.
1: It's benching.
0: It's benching, is
1: yeah.
0: it? अच्छा. Oh, तो you are not saying no, but you are not saying yes also.
1: Yeah. Ghosting is कि you are ignoring.
0: हाँ, ignore नहीं कर रहे यहाँ पे. यहाँ पे बोल रहे कि देखूंगा, सोचूंगा, कल परसों कुछ कहूँगा.
1: 100%.
0: Nice. देखा क्या? हम लोग के ज़माने में भी होता था ये सब.
1: अब बस words आ गए हैं, terms आ गए हैं उसकी.
0: Terms नहीं होते थे बस. Anyway, अभी आपको हम बता दें कि यहाँ पे और कौन आ रहा है. यहाँ पे आ रहे हैं इसी सैटरडे को 1st August को गरबा नाइट लेकर राज गढ़वी. तो आप भी एंजॉय कीजिएगा गरबा सेलिब्रेशंस विद सेंसेशनल राज गढ़वी. मैंने ऐसा सुना था सैंडी ओवर द वीकेंड की जो गढ़वी होते हैं ना, इनको एक ब्लेसिंग है कि इनके गले में सुर है ऑलरेडी.
1: ओह वाओ.
0: और बहुत ही मतलब काफ़ी लोग बहुत पसंद भी करते हैं इनको. तो राज गढ़वी के का भी बहुत नाम है और ये यहाँ पे आ रहे हैं महात्मा गांधी सेंटर में ऑन द 1st August परफॉर्म करने के लिए लाइव.
1: और हम कोशिश कर रहे हैं उससे पहले फ्राइडे को यहाँ पे स्टूडियो में आए
0: और उनसे हम यहाँ पे भी बात करें. तो आप लेकिन उससे पहले उनके टिकट्स ले लीजिएगा. eventstickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. फटाफट जाके आप किसी टिकट्स बाय कर लीजिए. अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आपको कोई पूछना है, तो 0224394736 पे आप स्वप्निल शाह से सीधे सीधे बात कर सकते हैं. नंबर है 0224394736. और गानों की भी बात करें तो अभी हम जो आपको गाना सुनाने वाले हैं, आर्को, पता है एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे ये
1: आर्को मुखर्जी.
0: काफी काफी गाने गाए इन्होंने.
1: इज अ वेरी गुड कंपोजर एज वेल.
0: अच्छा. हाँ, इन्होंने कौन सा कोई तो भी एक मूवी का किया था. मेरे को अभी
1: नज्म वो गाना जो है
0: नज्म गाना किया था. तो उनका ये एक एल्बम का गाना है. मैंने काफी समय बाद मेरे को ऐसे मन कर रहा है कि यार ये गाने को सुने. तो आपके लिए ये अभी लेकर आ रहे हैं. आज 5 बजे के बाद आपके लिए सिचुएशनशिप यहाँ पे लेकर आएंगे हम.
1: एक सवाल आपसे पूछेंगे, अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आपका क्या टेक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो आपको
0: क्या है वो सिचुएशन अभी नहीं, बाद में बताओगे 5 बजे के बाद
1: में बताएंगे या 5 बजे के बाद.
0: चलो 5 बजे के बाद वो सिचुएशन हम बताएंगे आपको. तो बस सुने रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए हम

0: brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Love that chicken from Popeyes.
3: Clear overnight for Auckland, a low of 8 on the northern. Reports of delays over the Harbour Bridge heading north. It's slow from there to Northcote Road. The northwestern is heavy from Newton Road to Rosebank. On the southern, reports of a southbound crash between Spaghetti Junction and Newmarket. It's heavy from there to Sylvia Park. And northbound from Princes Street to St Mark's Road. Southwestern is heavy from Massey Road to Mangere Bridge.
2: Three crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeye's Chicken this week.
4: Wo indelible Holmes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: Award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sales event this Thursday to Sunday.
9: There's thousands off display models, scratch and dent, and end-of-line spa pools, swim spas, saunas and pergolas on a first-come basis.
8: This Thursday to Sunday from 9am at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
10: Good news, tradies. It's Saturday, Mitre 10 Mega Botany IA for a free sausage. Supplier demos on-site or giveaways. Range, convenience or aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupair 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega.
11: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
12: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
13: We've got double glazing.
12: Have you still got that cold, damp feeling?
14: Yeah, we do.
12: So Tori and Ben got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
15: Branchi Group 3 Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Ghadvi live in Auckland.
16: Hey, hello, bhai, hello, hello. Bhai, hello, hello.
15: Taiyar thai jao ek yaadgar saanj mate jyaan hashe music, masti and non-stop garba. Saturday night, 1st August, the Mahatma Gandhi Center. Raj Ghadvi sathe manao ek shandar garba night. Garba with Raj Ghadvi. Saturday night, 1st August, tickets mate jao eventstickets.co.nz.
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. A scene guard is in place at two addresses on Auckland's North Shore after a double homicide last night. A 41-year-old is due in court charged with murder and attempted murder. The government has responded to the COVID inquiry and taken a few swipes at Labor in the process. Health Minister Simeon Brown says the previous Labor government was guilty of, quote, spraying tens of billions of dollars around.
18: That money that was pumped into the economy fueled inflation, fueled the cost of living crisis that New Zealanders are still feeling today.
17: Growers hoping to take over the McCain factory in Hastings have been forced to withdraw after learning the processing equipment was no longer part of the deal. A new initiative has been launched to teach school children about landslides. Funded by the Natural Hazard Commission, the free program is run by educational centre Learns. Spokesperson Shelley Hersey.
19: Steep slopes are something to be wary of. Cracks in the ground, a lot of groundwater, any movement in house foundations or even the doors in your house not closing properly.
17: A Hawke's Bay couple convicted of supplying meth has been ordered to hand over more than $800,000 in assets. The order against Wairoa mongrel mob member Samson Edwards and partner Aria Hubbard was made by the High Court in Gisborne today. The assets include five homes, six vehicles, a jet ski and jewellery. To sport, an 8:30 start this evening for the Kiwi team at the Commonwealth Games. Georgia Theron is in the 77kg weightlifting class. Also this evening, double gold medal winner Lewis Clearbert is in the 200-metre free heats and Tom Walsh in shot put qualifying. And to rugby with Shift 4, the big game of the NBC opening round is Canterbury hosting Auckland on Saturday night. Richie Mwanga returns. He's been named in the reserves.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
20: Weather kaal kafi kamal raj, feels like 12 degrees, 12.9 actual temperature. 3 layers of clothing is recommended right now, and overnight temperature is going to be as low as 7 degrees tonight. 5:34 ko होने वाला है सनसेट. नॉर्थ ईस्टर्लीज का साथ रहेगा. कल की सुबह काफी फाइन रहेगी, आफ्टरनून में थोड़ा क्लाउड कवर.
21: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
22: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
20: पांच बजकर तीन मिनट हुए हैं. पावर ड्राइव एट फाइव आपके लिए शुरू हो गया है ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम पे, और सिटी के इर्द गिर्द अगर आप है तो 87.7 एफएम पे भी आप हमें सुन सकते हैं. एंड रोवा ऐप तो है फॉर लिसनिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड.
23: या सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू गाइस. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. करण औजला आपके सुपर सिटी में पहुंचने वाले हैं पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके. करण औजला का शो 25 अगस्त को स्पार्क अरीना में होने वाला है. यहाँ पे टिकट जीतने का मौका है. आपको करना क्या है, के ए कीवर्ड के साथ एक सिंपल सा सवाल का जवाब आपको लिख के भेजना है 5599 पर.
20: क्या है वो सवाल?
23: सवाल आज का ये है, क्या करण औजला की शादी हो चुकी है?
20: ओ वाओ, क्या करण औजला की शादी हो चुकी है?
23: या
20: क्या ये तो
23: तुम्हें पता है? ये
20: मुझे कैसे पता होगा?
23: अरे वही तो, इसीलिए ऐसे रैंडम पूछा.
20: मुझे तो नहीं बुलाया उसने.
23: ओके सैड. सो करण औजला की क्या शादी हो चुकी है, हाँ या ना? यस और नो में अपने नाम के साथ आपको लिख के भेजना है 5599 पर. एंड द करेक्ट एंट्रीज विल गो इन द ड्रॉ टू विन डबल पास फॉर द शो करण औजला के शो के लिए.
20: तो बताइए आप भी यहाँ पे 5599 पे मैसेज करके. मुझे लग रहा है ये इसका जवाब सैंडी को भी नहीं पता. सैंडी को जानना है.
23: नहीं मुझे पता है, ये बहुत सालों से पता है ना.
20: अच्छा आपको पता है?
23: हाँ.
20: बहुत सालों से पता है आपको? मतलब हाँ. मतलब आपने आंसर ही बता दिया सैंडी. बहुत सालों से अगर पता है आपको तो यू मेड अ बू बू.
23: यार किसी का दिन आता है उसमें.
20: सो या एनीवे आप यहाँ पे मैसेज कीजिए फटाफट.
23: इफ यू नो यू नो.
20: के ए कीवर्ड जरूर डालिएगा यार.
23: दिव्या आपका मैसेज आया
20: बट बिना के ए लिखा है आपने तो फिर वो ड्रॉ में नहीं शामिल होगा. सो आप फटाफट भेज दीजिए के ए कीवर्ड के साथ.
23: अब तो लिख के भेजेंगे ही आप.
20: अभी दूसरी बात ये है कि आज हम आपके साथ खेलने वाले हैं ये, और ये अभी खेल लेते हैं यार. सुनाई नहीं दिया ना आपको, मैं फिर से फिर सिचुएशनशिप. डोंट गेट एक्साइटेड. सिचुएशनशिप इज अबाउट हम आपके लिए एक सिचुएशन यहाँ पे लेकर आएंगे, एंड फिर उसके आगे आप हमें बताएंगे कि ये सिचुएशन में आप भी अगर रहे हैं तो आपके वो सिचुएशन के बारे में हमें थोड़ी और डिटेल दीजिए. मैं बताता हूँ आपको वो सिचुएशन जो आपने बोला ना सैंडी.
23: yeah.
20: मैंने ऑब्जर्वेशन किया उस बात पे.
23: okay.
20: बट आप बोलिए, अभी सबको बोलिए ना, तो सब साथ में सोचेंगे इसके बारे में.
23: सो सिचुएशनशिप आपके लिए ये है कि आप किसी के घर गए हैं, ठीक है, आपको इनवाइट किया गया है. तुम कुछ और सोच रहे थे?
20: मैं कुछ और ही सोच रहा था. ठीक है. नहीं नहीं कोई नहीं.
23: एनीवे आप किसी के घर गए, आपको इनवाइट किया है. रुस्बे के सामने मैंने दो सवाल रखे थे, वो पहले पे अटका हुआ था. एंड खाने पे उन्होंने इनवाइट किया है. जब आप खाना लगते हैं यू आर वेरी एक्साइटेड, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लाइक ठीक है यार आज तो खाने पे इनविटेशन मिला है तो घर से क्यों खाना है ना, वही में जाके खाएंगे, ऐसे ही होता है.
20: ऐसे ही होता है ना.
23: तो वहाँ पे जब गए खाना खाया तो आपको थोड़ा ऑफ फीलिंग आ रही है. ऑफ फीलिंग इसलिए आ रही है बिकॉज खाना जैसे बनना चाहिए था, जो डिश बनाई है वो वैसी नहीं बनी है. सो इट इज नॉट एज पर योर टेस्ट बट बेसिकली अगर आपके बस में हो तो आप उस डिश को कभी कंप्लीट ना करो खाने में.
20: आपको नहीं पसंद आया वो चीज,
23: आपको नहीं पसंद आया वो खाना, तो क्या करोगे आप उस सिचुएशन में? मतलब अपने टेस्ट बट को ऐसा साइड पे करके उसको खाते रहेंगे, पेट भर लेंगे, या फिर यू विल बी अपफ्रंट कि मुझे पसंद नहीं है, या क्या करोगे आप?
20: या 0800-004-866 इज द नंबर, गिव अस अ कॉल.
23: दिस इज द हाउस, ये एक ऐसी जगह पे आप गए हो जहाँ पे इट वॉज पेंडिंग सिंस लॉन्ग मिलने के लिए.
20: ये इतना पर्सनल सिनेरियो इतना डिटेल में क्यों?
23: मेरे को ये बताना था ना, क्योंकि अगर तुम किसी को बार बार रोज ऐसा मिल रहे हो तो उसको तो तुम अपफ्रंट बोल ही दोगे.
20: ये ओके, आप ये सेट कर रहे हो.
23: सिचुएशन इज कि या ट्रिकी सिचुएशन है
20: कि बहुत ही मतलब नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड, बट अ फ्रेंड जिसको आप मिल रहे हो बहुत टाइम के बाद,
23: बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो, एंड या तो वहां पे ऐसा होता है.
20: सो वुड यू डायरेक्टली से अपफ्रंट कि अरे यार ये क्या खाना बनाया यार, ये क्या है, इसमें मजा ही नहीं आया? कि आप उसको चुपचाप ऐसा मुंह बंद करके मतलब ऐसे खा लोगे, नाक बंद करके? हाय, आपका स्वागत है.
1: हेलो
20: जी,
23: जी
1: हाय, हाय, कैसे हो आप लोग?
23: बढ़िया, आप कैसे हो?
1: मैं भी ठीक हूँ.
20: क्या नाम है
1: आपका? मैं यूजुअली ऐसे शाइन.
20: शाइन,
23: बताइए.
20: शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड.
1: मेरी बेटी यही गाना गाती है मेरे.
20: देखो मैं जेन अल्फा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको यार. बोलो.
1: तो मैं ऐसे जब मेरे को अगर खाना नहीं पसंद आया, मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड से चेंज कर लेती हूँ.
20: नहीं बट अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हस्बैंड का भी सेम ही है
23: तो सबको सेम खाना मिला
20: ये,
23: है ना?
20: ये जो आप करते हो ना, ये मुझे लगता है ये जब शादी होती है तो ये वन ऑफ द क्लॉजेस मेंशन हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि मैं भी जब भी जाता हूँ बाहर अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तो हम दो अलग डिश ऑर्डर करते हैं हमेशा काफी बार. तो जो अच्छा, अगर मेरा डिश अच्छा निकला तो वो गया. अगर मेरा खराब निकला तो मेरा हुआ.
23: ओके,
20: तो सो आई हैव,
23: यू हैव नो चॉइस.
20: आई हैव फाउंड अनदर टेक्निक नाउ. मैं अभी सेम ही ऑर्डर करता हूँ.
23: ओके,
20: ऑप्शन चाहिए ही नहीं. भुगते हुए तो दोनों भुगतेंगे. आप किसी के घर पे गए हैं, लेट्स से इमेजिन करो आप सैंडी के घर पे गए और आपको सैंडी ने खिलाया वहां पे पालक पनीर, जो आपने खाया और बोला यार ये पालक पनीर करेला जैसा क्यों लग रहा है, यू नो व्हाट आई मीन?
23: या
20: तो आप क्या करोगे फिर ऐसे सिचुएशन में?
1: नहीं खाऊंगी.
20: नहीं खाओगी?
23: अब सैंडी को बुरा लग जाएगा ना, कि तुम मुझे पसंद नहीं आया, तुमने इतनी मेहनत से चाहे बनाया होगा लेकिन मुझे नहीं पसंद आया.
1: तो मैं यूजुअली ऐसे, मेरे साथ हुआ है एक आध बार कि मैं किसी के घर पे गई हूँ, लोगों ने ऐसे कुछ बनाया जो पसंद नहीं आया, तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, और कुछ मिला लेती हूँ, लाइक कुछ और करी ले लेती हूँ. अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो मैं ऐसे चुपके से सिर्फ राइस या रोटी जो कुछ है वो खाकर फिनिश कर देती हूँ, क्या ताकि उसको लगे कि हाँ उसने खा लिया. और करी को ऐसे प्लेट के ऊपर पूरा ऐसे स्प्रेड कर देती
20: हूँ. ये बचपन का टेक्निक है, ये हम लोग बचपन में ऐसा करते थे. या नाइस. लेकिन आप कभी कन्फ्रंट नहीं करोगे, आप सीधा सीधा बोलोगे नहीं कि भाई बहुत ही फालतू खाना बनाया, ऐसा ऐसा नहीं बोलोगे आप?
1: नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलोगे.
20: ओके ओके, नाइस नाइस. यही मैं सैंडी को सुनाना चाहता था कि सैंडी ऐसा नहीं बोलते सीधा सीधा मुंह पे कि नहीं अच्छा बनाया. थैंक्स शाइन, थैंक्स फॉर योर कॉल यार.
23: थैंक यू शाइन,
20: थैंक यू. हाय, आपका भी स्वागत है.
2: हाय जी,
20: एक नंबर.
2: Yeah, so my name is Prav. I'm calling first time.
20: अरे क्या बात है प्रभ यार,
23: क्या बात है.
2: And yes, so अगर मैं सिचुएशन में होंगी तो मैं खा लूंगी, क्योंकि किसी ने मेरे को घर पे बुलाया है, कितना एफर्ट डाला है. ठीक है, सब लोग सेम नहीं बना पाते, बट जितना मैंने प्लेट में डाला है वो मैं फिनिश कर दूंगी. हाँ, मैं पूरा पेट भर के नहीं खाऊंगी, बट आई थिंक जो मैंने प्लेट में डाला है वो मैं फिनिश करूंगी.
23: और कभी हुआ है आपके साथ ऐसे?
2: यस, बहुत बार हुआ है. बट या मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को बुला रही हूँ, मैं कितना एफर्ट डाल रही हूँ, राइट? और कोई नहीं खाएगा मेरे को बुरा लगेगा, और सेम दूसरे के साथ भी सेम ही होता है.
20: हाँ यार, बहुत बुरा लगता है. देखो मैं 5-5 घंटे किचन में रहता हूँ कभी कभार डिश बनाने के लिए, और फिर वो नहीं सही बनता यार. लेकिन फिर मैं अपनी बीवी को बुला देता हूँ और बोलता हूँ प्लीज फिक्स इट.
23: फाइव आवर्स के बाद, ओह माय गॉड.
2: इवन माय हस्बैंड कुक समटाइम, वो बहुत गंदा बनता है, बट हाँ अगर उसने देखो चार घंटे तीन घंटे लगाए हैं और मैं एक बार मैं बोल दूँ ये ऐसा बनाए मेरे को नहीं खाना, तो वो भी डिमोटिवेट होगा. और देखो हम खाने का भी निरादर कर रहे हैं ना, तो जो बना है खा लो, टेस्ट इतना भी बुरा नहीं होगा कि आपको वॉमिट ही आ जाए, बट यस
23: बस इतना बुरा नहीं होना चाहिए,
20: बस इतना नहीं होना चाहिए. थैंक यू सो मच प्रभ, थैंक्स फॉर योर कॉल. थैंक यू. हाय, आपका भी स्वागत है.
3: हाय
20: जी,
3: हाउ आर यू?
23: गुड, आप कैसी हैं?
20: क्या नाम है आपका?
3: बहुत बढ़िया, मेरा नाम दिव्या है.
20: हाँ दिव्या
23: जी, बताइए दिव्या.
3: अरे ऐसा बहुत बार होता है, और मैं तो क्या कहती हूँ ना, मेरे अंदर एक आदत है कि पहले थोड़ा ही लो. अगर
20: ये
3: अच्छा
20: सेफ
3: नहीं भी है,
23: सीख लिया इन्होंने.
20: ये बहुत सेफ स्ट्रेटेजी है कि पहले थोड़ा ही लेना है कि अरे आज मेरे को ज्यादा भूख नहीं है, तो मैं बस टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा,
23: और जब अच्छा लगे तो बोलो अरे क्या भूख तो नहीं थी लेकिन और ले लेती हूँ.
20: हाँ, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही.
3: नहीं, हाँ, नहीं मेरा बिल्कुल बिल्कुल. और पता है मेरा ये भी होता है कि मैंने थोड़ा लिया, अरे मेरा लंच बहुत हैवी किया था ना इसलिए.
23: ऐसा
3: भूख नहीं है.
20: लेकिन
3: इफ इट इज लंच देन मेरा ब्रेकफास्ट लेट हुआ था.
20: लेकिन वो पहले से नहीं बोलते हो आप ना, वो खाना टेस्ट करने के बाद बोलते हो आप.
3: हाँ नहीं पहले से नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट हैं, वो बिल्कुल बोल देते हैं.
20: वो क्या बोलते हैं ऐसा?
3: वो बिल्कुल बोल देते हैं यार क्या बनाया है ये, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता.
23: मेरे को लगता है उनका वो कम्फर्ट भी रहता होगा ना किसी से जो वो ऐसे बोलते हैं तो.
3: नहीं बिल्कुल वो तो है, मतलब वो अपने अच्छे फ्रेंड्स को ही बोलते हैं.
23: हाँ.
3: But he is like very upfront. उनका मतलब वो फिल्टर नहीं है बिल्कुल.
20: ऐसा सही रहता है मेरे को लग रहा है.
23: मेन का ही ऐसा होता है मेरे को लगता है ज्यादातर.
20: नहीं नहीं वुमेन भी होती है ऐसी.
3: अच्छा हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता कि वुमेन होती है ऐसी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है.
20: एक मिनट रुको, मैं रूथ को कॉल लगाता हूँ.
23: कितनी फीमेल्स का भी कॉल आया.
3: नहीं, इट्स लवली टू टॉक टू यू बोथ. मैं तो नहीं कॉल करने वाली थी, मैं 5 साल से सुनती हूँ आप दोनों को. तो मेरी डॉटर ने बोला नहीं मम्मा कॉल करो कॉल करो कॉल करो.
23: अरे वेरी गुड यार, क्या बात है. क्या करो दिव्या,
20: क्या डॉटर का नाम क्या आपके? हाय
3: नव्या.
4: हेलो.
20: हाय नव्या.
23: हाय नव्या, कैसी हो आप?
4: आई एम गुड, हाउ आर यू?
20: एक नंबर.
23: We are good.
3: वो तो जब भी हम ड्राइव करते हैं, she is like अगर सैंडी रुश्दे का शो है तो हमारा वही चलता है गाड़ी में.
20: अरे क्या बात है.
23: Thank you so much नव्या.
20: ऐसे ही सुनते रहिए नव्या. लेकिन हमारा शो एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, ज्यादा प्रोसेस मत करना.
23: उससे ये भी निकाल दिया.
20: थैंक यू बाय. Okay,
23: thank you.
20: I think it's time now we listen to a song.
23: कुछ messages भी आए थे. बेनेफर का कहना है कि खाए के फिर जाके पॉटी करने का. Okay.
20: अच्छा okay. एक मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं. Hi, आपका भी स्वागत है.
23: लिया ना.
20: Across the ditch से हमें कॉल आ रहा है.
23: कैसे हो? बढ़िया. आप कैसे?
5: मैं मेलबर्न से बोल रहा हूँ और आप लोगों को डेली सुनता रहता हूँ.
20: अरे क्या बात है.
23: क्या नाम है आपका?
5: हरपाल.
20: हरपाल
23: यार सही है. कैसा है मेलबर्न का वेदर आज?
20: मैं हरपाल एक
5: तो सनी है काफी यहाँ पे.
20: मैं एक ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेना चाहता हूँ आपके यहाँ पे. आप रहिए एक बार, जुड़े रहिए हमारे साथ. मैं बस ये कहना चाहूंगा हमारे न्यूजीलैंड के बिजनेसेस को कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में भी बेचना है, देन गेट इन टच विद अस, बिकॉज देखो हमारे पास मेलबर्न के भी लिसनर्स है.
23: बताइए हरपाल.
20: बताइए अभी.
5: ओके, आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या हो जाता है कि सबसे पहले तो फूड है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए. जिसने भी बनाया डजंट मैटर, खा लो. और जो क्लोज फ्रेंड है उसको चुपके से बोल दो कि भाई ऐसा सा है, थोड़ा सा मुझे लगता है अगर ऐसे मॉडिफाई करते तो ठीक हो जाता और ज़्यादा अच्छा.
20: आपने ये बात बहुत सही बोली यार. मैं कम्प्लीटली ये बात पे बिलीव करता हूँ. और मैं
23: डू नॉट वेस्ट द फूड.
5: हाँ, इसलिए लोग काफी मेहनत करते हैं.
23: एंड
5: देखो फार्मिंग में लोग इतना मेहनत करते हैं यार.
20: और हम अन्नदाता वो बोलते हैं ना कि अन्न को पूछते, मतलब वो इट्स लाइक अ इट्स समथिंग दैट फीज लाइक यू हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट फूड चाहे कैसा भी बना हो.
23: इट्स अ रिकॉर्ड यार. आज भी बहुत सारे घरों में ना
5: कुछ नहीं होगा,
23: बहुत खाना बिन में चला जाता है. सो या दैट्स काइंड ऑफ सैड.
5: क्योंकि मैं खुद शेफ हूँ तो मुझे पता है कि खाने की इम्पोर्टेंस क्या होती है।
6: या, या, क्या आपका नाम क्या है? सॉरी,
23: हरपाल
6: कितने साल हो गए आपको? कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जाके?
5: 20 साल न्यूजीलैंड में रहा मैं, लास्ट ईयर मूव हुआ हूँ।
6: अच्छा, तो बहुत होमसिक फील हो रहा होगा ना अभी?
5: मैं होमसिक तो नहीं, पर आप लोगों का खासकर मिस करता हूँ क्योंकि यहाँ के जो रेडियो स्टेशन मुझे पसंद है।
6: अच्छा,
23: नाइस नाइस, ये अच्छा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग गए लेकिन हमको साथ में लेके गए।
6: हरपाल, मैं अभी एक और चीज कहना चाहता हूँ अभी व्हाइल यू आर ऑन कॉल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हमें सुन रहे हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ रेडियो स्टेशन ओवर देयर, नथिंग, बस
23: कंसीडर अस, ऐसा बोलना चाहते थे तुम?
6: नो कमेंट्स।
23: थैंक यू हरपाल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
6: थैंक्स फॉर कॉलिंग मैन।
5: थैंक यू,
6: थैंक यू। या बाय बाय, अभी गाना सुन लेते हैं और उसके बाद और भी बातें करेंगे आपके साथ।

0: में सुन रहे थे आप ये बढ़िया सा गाना। इस गाने का नाम है बंधु 2.0 और ये सैंडी आजकल ना प्रिपेयर नहीं होती है यार। मतलब सैंडी का ध्यान अभी क्या मालूम किस में है, कहाँ है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बट एनीवे मैं ये कह रहा था आपसे कि एक और एक थोड़ी सैड न्यूज़ है न्यूजीलैंड के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए, और उसके लिए वो इसलिए है क्योंकि मैकेन ANZ ने कंफर्म किया है कि उनकी जो हेस्टिंग्स की वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट है वो क्लोज कर देंगे, विच विल बी अराउंड 31st of January 2027। तो ग्रुप ऑफ वेजिटेबल ग्रोअर्स और जो लोकल मेयर्स है इन्होंने पूछा मैकेन को कि मैकेन एक कंपनी है कि ये पॉज कर सके क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि ये इम्पैक्ट करने वाला है मोर देन 100 ग्रोअर्स को। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये एक्चुअली मैकेन जो है ये फ्रोजन फ्रूट, आप जो फ्रोजन वेजीज जो खरीदते हो आप तो मैकेन के पैकेट्स में होते हैं ना, तो ये लॉट ऑफ ग्रोअर्स है जो उनको सप्लाई करते ही है और फिर वो उसको फ्रीज करके पैक करते हैं। अब ये फैक्ट्री अगर बंद हो जाएगी हेस्टिंग्स में तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी
1: 100%
0: रियली बैड। सो बट या ये सील हो गया अभी क्योंकि जो ग्रोअर्स है इन्होंने भी अबैंडन कर लिया है सारे बिड्स टू टेक ओवर, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि ग्रोअर्स ही टेक ओवर करेंगे मैकेन की फैक्ट्री, बट वो भी अभी नहीं होने वाला है।
1: पहले एक और न्यूज़ मैं देख रही हूँ रुजबे, लेटेस्ट डेवलपमेंट बताई गई है ऑन द इन्वेस्टिगेशन इनटू MBIE फेल्ड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। सो MBIE ने रिवील किया है कि एडिशनल $6 million जो है ये लिंक्ड है टू द फेल्ड प्रोजेक्ट दैट करंटली कैनॉट बी फुली अकाउंटेड फॉर। दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ ऑलरेडी एक $33 million स्पेंड जो थे ऑन द 7-year बायोमेट्रिक कैपेबिलिटी अपडेट प्रोजेक्ट। सिग्निफिकेंट है ये काफ़ी ज़्यादा बिकॉज इट्स ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये इट वॉज डिज़ाइन टू मॉडर्नाइज क्या बोलते हैं,
0: अरे ये बायोमेट्रिक अपग्रेड प्रोजेक्ट था ना इमिग्रेशन का,
1: वही जिसमें इमिग्रेशन न्यूजीलैंड जो है उनका जो फिंगरप्रिंट्स का जो प्रोसेस था उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए,
0: आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स
1: आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली। सो इट रन फॉर 7 years, कॉस्ट टैक्स पेयर्स अबाउट $33 million न्यूजीलैंड डॉलर्स।
0: एक्चुअली में इसका कॉस्ट अगर देखा जाए तो वॉज नियरली 40 million, नॉट 33 बट नियरली 40 million, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक फील्ड प्रोजेक्ट रहा। इसमें और जो हमारी ये मिनिस्टर है एरिका, उसने बोला है कि भाई मेरा तो भरोसा उठ रहा है अभी ये चीज़ों पे से, तो देखते हैं एरिका स्टैनफोर्ड का ये टेक रहा है। अभी उन्होंने ये बोला है कि जो MBIE प्रीवियसली एडवाइस मिनिस्टर्स उन्होंने प्रीवियसली एडवाइस किया मिनिस्टर्स को द एजुकेशन एंड वर्कफोर्स कमेटी एंड न्यूजीलैंडर्स इन जून दैट द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ दैट वर अराउंड 33 million। सो या देखो अभी हम जब देख रहे हैं यहाँ पे हमें लाइक एज अ कॉमन मैन 33 million हमें लगता है काफ़ी है, ये है, मेरे को लग रहा है मोर प्रॉब्लम है 7 साल लॉस हो गया हमारा,
1: सेवन
0: ईयर्स लॉस्ट,
1: सेवन ईयर्स
0: गोइंग 7 years बैक। सो या इट्स क्वाइट सैड, होपफुली देर आर मोर रोबस्ट प्लान्स इन प्लेस इन फ्यूचर सो दैट यू नो ऐसी जो गलती है ऐसे ब्लंडर्स जो है ये फ्यूचर में ना हो।
1: या होपफुली
0: बट या लॉट ऑफ न्यूज कमिंग आउट इन पॉलिटिक्स नाउ, और ये जो है ये अब बढ़ते ही जाने वाला है इन द कमिंग टाइम। सो
1: मेरे को लगता है इस साल के इलेक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है।
0: या
1: इट कैन गो आइदर वे।
0: या इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन। अभी धीरे धीरे अभी कैंपेन्स देखना हम शुरू करेंगे और काफ़ी कैंपेन्स होने वाले हैं, अलग अलग पार्टीज है, अलग अलग कैंडिडेट्स है ये बार, तो लेट्स सी। आई वुड स्ट्रांगली अर्ज आवर लिसनर्स जो भी हमें सुन रहे हैं कि यार गेट इनटू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपके जो अराउंड है क्या चल रहा है, लाइक कौन सी पार्टीज क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है, क्या
1: और आपको कौन सी पॉलिसी सूट करती है, मतलब आप किससे इत्तेफाक रखते हैं किस पॉलिसी के साथ। तो इस वजह से जस्ट डू योर स्टडी एंड देन गो एंड वोट एंड डेफिनेटली वोट
0: बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल डिसाइडर कि इकोनॉमी हमारी इसके बाद कहाँ जाने वाली है। अनफॉर्चुनेटली इट्स सैड कि नेशनल को ये पहला टर्म ही था ना उनका, पहला टर्म था,
1: पहला टर्म था
0: और वो 3 ही साल मिले उनको. सो इट्स क्वाइट सैड कि क्योंकि 3 साल में कोई भी

0: चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है.
1: रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट इन 3 इयर्स, बट स्टिल या काफी जगह पे किया भी है उन्होंने, आई विल से लाइक काफी जगह पे इम्प्रूवमेंट्स हुई भी है. बट यार देखते हैं अभी जो है समय कैंपेन्स का शुरू ही होने वाला है.
0: या तो इसके डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे.

0: राघव चैतन्य की आवाज और एनिमल मूवी का ये गाना आप सुन रहे थे, हुआ मैं। वैसे आप भी होने वाले हो दंग
1: क्या
0: और खोने वाले हो मस्त मलंग, नहीं होने वाले हो मस्त मलंग, क्योंकि हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक और मार्च 2027 ईस्टर हॉलीडेज में हम जाने वाले हैं, और आपको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ। देखो अराउंड $8,000 का खर्चा है, लेकिन उसमें आपको मिलने वाला है 4 to 5 star जो होटल स्टे है, प्लस 3 times का खाना, प्लस ढेर सारे एक्टिविटीज।
1: ये मतलब फुली प्लान्ड ट्रिप है। सो और हमारा साथ जाना, और हमारा साथ मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एवरीथिंग इज टोटली इंक्लूसिव। एंड प्लस जितने लोग जा रहे हैं अगस्त के महीने के लिए, वैसे हमारे पास यहाँ पे प्रमोशन भी है, जो भी अगस्त के महीने में रजिस्टर करेगा एंड द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज़ ओनली $500, तो उन सबको न्यूजीलैंड में कहीं पे भी अकोमोडेशन मिल रही है, तो जितने भी लोग अगस्त में अपनी एप्लीकेशन मतलब टोटल रजिस्टर कर लेंगे, उनके पास कुछ रजिस्ट्रेशन आई थिंक हो चुकी है, आपको इतना बोलना चाहेंगे कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, सो मेक श्योर कि आप जल्दी से अपना रजिस्टर कर रहे हैं।
0: काफ़ी कॉन्वर्जेशंस हो रही है अनिल भाटिया की सबके साथ, तो दैट्स गुड। बट एनीवे, अगर आपको आपका नाम उसमें शामिल करना है, इफ़ यू वांट ऑल सो वांट मोर डिटेल्स, द आइटनरी एंड द अदर यू नो अदर डेलिकेट इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो हम ऑनर ज़्यादा नहीं बता सकते हर एक चीज़, तो आप 5599 पे ड्राइव लिख कर भेजिए, एक लिंक आएगा आपको फॉर्म का, उसको अगर आप क्लिक करोगे उसके ऊपर डिटेल्स आपके भर दोगे, वन लाइक अनिल भाटिया और समवन विल गेट इन टच विद यू एंड विल गिव यू ऑल द डिटेल्स।
1: या तो आपको कॉल किया जाएगा और आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है आपके ईमेल पे भी आ जाएंगी। सो अगर आपको जाना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई पे फॉर्म है, जस्ट फिल द फॉर्म।
0: जी तो साथ ज़रूर दीजिएगा हमारा, क्योंकि हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, और आपको अगर सुनना है कि एक्चुअली मैं क्या मस्ती करने वाले हैं, तो ये सुनिएगा।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Rusby, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
8: Kitchen mania. 17th birthday.
9: Clear overnight for Auckland light northerlies. Low of 8 on the northern. It's heavy southbound from Wairau Road to the Harbour Bridge after an earlier crash, and northbound from Spaghetti Junction to Northcote Road. Slow on the northwest wind, Spaghetti Junction to Te Atatū. On the southern, it's heavy northbound from just past Highbrook Drive to Newmarket and south from St Mark's Road to East Tamaki Road. Heavy on the southwestern from Puhinui Road to Onehunga.
8: You could win 10K when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
11: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
2: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
12: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings, like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from $2,799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Pokekohe, celebrating 36 years of great sleep.
13: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
14: Choice aapki hai at Winger Motors. Selected nahi Omuda or

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पाड़ देंगे.
4: 6 बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है. गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़बे. हाय सैंडी, हाउ इज इट गोइंग?
5: इट्स गोइंग गुड रिज़बे. ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं संजू बाबा को.
4: संजू बाबा भाई का बर्थडे
5: आज. काफी लोगों के लिए तो बाबा ही है, काफी लोग उनको बाबा कहते हैं ना. मैंने पेपराजी से बहुत ज्यादा ऐसा देखा है, सुना है.
4: देखो हम यूजुअली जब सेलिब्रिटीज का बर्थडे होता है, एक्टर्स का बर्थडे होता है, बड़े स्टार्स का बर्थडे होता है, तो हम उनके कुछ इंटरव्यूज के डायलॉग प्ले करते हैं, उनके कुछ मूवी के डायलॉग्स प्ले करते हैं. आज मेरा मन है कि हम संजू बाबा के जो पैप्स के साथ इंटरेक्शंस होते हैं ना,
5: वो नहीं प्ले कर सकते. रिज़बे क्या बात कर रहे हो, हम कुछ डायलॉग्स प्ले करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं,
6: पर क्या तुम लोगों ने?
5: नो नो नो नो. और मेरे को तो लगता है वास्तव का डायलॉग तो डेफिनेटली बनता है.
4: वास्तव का डायलॉग,
5: वास्तव मूवी
4: $50
5: और भी बहुत बहुत सारी मूवीज है. आपकी, आपको कौन सी संजय दत्त की मूवी बहुत अच्छी लगती है? सो आप भी यहाँ पे बता सकते हैं.
4: मेरी फेवरेट मूवी संजू बाबा की वो है मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई. आई थिंक उन दोनों को कोई टॉप कर ही नहीं सकता है, मतलब मेरे लिए,
5: तुम्हारे लिए.
4: आई लव बोथ ऑफ दोज मूवीज.
5: मेरे को भी मुन्ना भाई MBBS दो ओरिजिनल वन,
4: ओरिजिनल, फिर लगे रहो और फिर थर्ड पे आएगा वास्तव.
5: मेरे को वो मुन्ना भाई MBBS एंड साजन मूवी में जो रोल किया था संजय दत्त ने ना, मतलब मजा आ गया था. मेरे को मूवी देखने का बहुत मजा आता है, वेरी नाइस मूवी. एनीवे, सो संजू बाबा का आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड उनको वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना गया है. वैसे ही गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है.
4: मैं गेस करूं क्या, किसमें? एयर गिटार करने में.
5: गिटारिस्ट,
4: यस.
5: सो ही प्लेज तबला एंड गिटार.
4: ही
5: इज डीपली पैशनेट अबाउट म्यूजिक एंड प्लेज तबला एंड गिटार.
4: यार ये चीज कभी बताई नहीं चली हमको इनके बारे में.
5: वही ना, ही एक्चुअली वन रिज़बे गोल्ड मेडल इन एयर गिटार कॉम्पिटिशन इन USA ड्यूरिंग हिज यूथ.
4: अच्छा.
5: So while he was growing up, जब वो टीनेजर थे, long before his debut in the movies, उस समय पर उन्होंने ये किया था. Wow, this is so cool, यार. Gold medalist रह चुके हैं वो air guitarist.
4: वो मुझे, मैंने सुना था air guitarist वाला, मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तबला वबला भी play करते हैं.
5: तबला and guitar.
4: Honestly, संजू movie में भी उसके बारे में कुछ नहीं जिक्र किया था.
5: नहीं.
4: कुछ बताया नहीं था वो चीज़.
5: संजू was more about the controversies around.
4: हाँ, more about whitewashing his image. के भाई वो नहीं,
5: वाइट वॉशिंग तो इतना किया नहीं, मतलब लेकिन दिखाया जरूर, उसकी जर्नी जरूर दिखाई.
4: वाइट वॉश तो किया था सैंडी, उसमें क्लियर किया था 100% कि वो उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं था, मतलब पूरा.
5: हाँ.
4: जो भी था, मतलब वो
5: एक सिचुएशन बता दी थी.
4: आई एम नॉट सेइंग इट्स फॉल्स और इट इज जो भी, बट द पॉइंट इज की द मूवी was made in a way कि संजू की स्टोरी उसमें बताई थी. एंड आई थिंक इट्स बिकॉज कौन, राजकुमार हिरानी ना.
5: राजकुमार हिरानी,
4: he was very close to संजू बाबा anyway ना.
5: वो भी, and it was more about his that journey as well ना, जो drugs वाली journey उसके ऊपर ज़्यादा focus थी.
4: हाँ, drugs को कैसे overcome किया, fitness में कैसे ध्यान बटाया, and then all कैसे बार बार he used to get trapped into controversies, बार बार he used to get into like you know bad stuff.
5: And also because his father was in politics.
4: हाँ, उसके कारण काफी,
5: उसके कारण थोड़ा ज़्यादा हो गया.
4: He defined बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद.
5: Yeah, and his father actually protected him a lot. Sunil Dutt itself, वो बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं.
4: उन्होंने उनका करियर ये त्याग कर दिया ना, ये वो पॉलिटिक्स में बहुत आगे जा सकते थे.
5: पॉलिटिक्स में बहुत आगे जा सकते थे, बट उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की, कंसिडरिंग बिकॉज संजय दत्त वॉज वेरी यंग वेन नरगिस पास्ड अवे. सो वो सब कंसिडर करते हुए ही वॉज वेरी इमोशनल अबाउट संजय दत्त. तो ऑफकोर्स कोई भी बाप चाहेगा अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए.
4: सो या, सो बट टुडे वी आर गोना सेलिब्रेट संजू बाबा, तो इनके हर एक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको मस्त से गाने भी सुनाएंगे. तो स्टे ट्यून्ड, बट स्टार्टिंग ऑफ दिस आवर इट हैज टू बी विद द सॉन्ग दैट डिफाइंड हिम.
5: या
4: खलनायक में खलनायक बने थे,
5: मतलब आवाज ही, मतलब उनका एकदम सूट किया था यार ये रोल, तो ना मजा आ गया था देख के.
4: एंजॉय कीजिए ये गाना.

0: Trend Makers.
1: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
2: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice.
3: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू 7 साल की वारंटी के साथ एसयूवी हाइब्रिड्स फोर व्हील ड्राइव्स परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाकानिनी ट्रेड इन और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाकानिनी
4: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज संजू बाबा के लिए हम मतलब एक tribute नहीं क्या shout out दे रहे हैं.
1: आज संजय दत्त का birthday है, अपना birthday celebrate कर रहे हैं. उनके कुछ facts यहाँ पे हम आपके साथ share कर रहे हैं.
0: एक बहुत ही crazy चीज मेरे को और एक मैंने पढ़ी इसके बारे में, जो आपने बोला ना music के काफी interest रखा था. Actually मैं खूबसूरत करके एक movie आई थी जिसमें उन्होंने गाना गाया था ए शिवानी तू लगती है नानी तू है आइटम पुरानी ए ए ए शिवा. मेरा फेवरेट गाना था.
1: उर्मिला थी उसमें.
0: और एक्चुअली मैं इन्होंने वो गाना तो गाया ही था 1999 में, बट फिर उन्होंने एक प्राइवेट एल्बम रिकॉर्ड किया था, डुएट एल्बम अलोंग साइड लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले.
1: Wow.
0: तो आशा भोसले के साथ उन्होंने एक प्राइवेट एल्बम रिकॉर्ड भी किया है.
1: दिस इज सो कूल. वैसे इसी के साथ वो रेडियो जॉकी भी रहे बिहाइंड द बार्स जब उनको जेल टाइम था उस समय.
0: ये दिखाया था संजू मूवी में.
1: या ये दिखाया था. तो उस समय पर उन्होंने वॉलंटियर किया था जेल्स के इंटरनल रेडियो स्टेशन में, रेडियो YCP. वहाँ पे वो एवरी डे रेडियो शो होस्ट किया करते थे टू एंटरटेन फेलो इनमेट्स. और क्या मस्त रहता होगा कि संजय दत्त एज RJ कि अपन को ये जो नेक्स्ट गाना आप सुनने वाले हैं तो कैसे बोलते होंगे वो. मजा आता होगा यार मुझे लगता है.
0: जाना आपको जेल में सुनने के लिए.
1: अभी नहीं है ना वो. एंड ही यूज्ड टू शेयर अपलिफ्टिंग स्टोरीज ओवर देयर एज वेल.
0: बट वहाँ के जो जो प्रिजन में जो लोग रहेंगे उन लोग के लिए कितना इंटरेस्टिंग रहेगा ना कि उनको संजू बाबा मिल रहा है एंटरटेनमेंट में.
1: जिनको मूवीज में देखते हैं वो यहाँ पे रेडियो है.
0: रेडियो कर रहा है वो वहाँ पे. बढ़िया यार. बढ़िया. एनीवे इनको एक्चुअली मैं जब इनका मुन्ना भाई आया था बहुत पॉपुलर हुआ था तो एक बार वो US में थे और वहाँ पे बराक ओबामा को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था.
1: oh, wow.
0: क्योंकि लोग सब चिल्लाने शुरू हो गए वहाँ पे मुन्ना भाई ये वो. तो बराक ओबामा ने भी उनको वहाँ से पहचाना कि अरे इसकी मूवी मुन्ना भाई में इसने काम किया है. और वहाँ से उसको संजय बाबा को संजू बाबा को वहाँ से पहचाना उन्होंने. सो या आई थिंक काफ़ी जो पेरेंट्स है मतलब पेरेंट्स एज इन उस टाइम के 80s में जो पेरेंट्स बने 90s में उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी संजय इसलिए रखे बिकॉज़ वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे.
1: काफी है. या आप ही बताइए अगर आपका नाम संजय है क्या आपके पेरेंट्स फैन थे संजय दत्त के. यू कैन शेयर दिस.
0: या हमारे साथ शेयर कीजिएगा जरूर.

0: 104.2 FM और 87.7 FM in the city only. आप सुन सकते हैं हम और रोवा ऐप के जरिए from anywhere in the world. Mainly Australia से हमें काफी लोग भी सुन रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है. आज संजू बाबा को हम दे रहे हैं shout out because आज उनका birthday है.
1: या एंड वास्तव मूवी ने उन्होंने जो काम किया था ये एक रियल वर्ल्ड से इंस्पिरेशन थी बेसिकली ये जो मूवी थी. सो इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे वे से कह सकते हैं कि संजय दत्त ने काम किया था. आफ्टर इयर्स ऑफ नॉमिनेशन संजय दत्त को इस मूवी के लिए फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था. उनकी जो परफॉर्मेंस है ना रघु की, इसमें क्या मस्त रोल किया था यार.
0: अच्छा रोल किया था उन्होंने, तो उसमें उनको मिला था अवार्ड
1: बेस्ट एक्टर का. इससे पहले वो सिर्फ नॉमिनेट ही हुए थे.
0: ओह वाओ. एक्चुअली आपको पता है कि हमें पता है कि रॉकी में वो पहली बार आए थे स्क्रीन डेब्यू एज अ मेन लीड, बट उससे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट भी वो बने थे.

0: Bless you.
1: Excuse me. But child artist बने थे वो in the movie रेशमा और शेरा जो डायरेक्ट की थी सुनील दत्त ने.
0: अब मेरे को लगता है मैंने ये सीन देखा भी हुआ है.
1: क्या बात कर रहा
0: है? जहाँ पे as a kid संजय दत्त है. या या ये सीन देखा हुआ है. सो इट्स क्वाइट अ पॉपुलर सीन. अगर आप यू नो जाके सर्च करेंगे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे यू विल फाइंड दिस पिक्चर ऑफ मिनी संजय दत्त.
1: मिनी छोटा संजय दत्त. एक्चुअली मैं इनकी जो रॉकी भी मूवी थी अपेरेंटली इट वाज नॉट अ बिग हिट राइट अवे. इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में. बट अभी के लिए कुछ मैसेजेस आपके लिए एंड कुछ और गाने संजू बाबा के.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
3: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
4: Clear overnight for Auckland Light Northerlies. A low of 8 on the northern. It's slow southbound from Tristram Ave to the Harbour Bridge. Northwestern, still a bit slow. Waterview to Te Atatū. On the southern, we've got a breakdown. It's affecting northbound traffic just after the Green Lane off-ramp. The left middle lane is blocked, so it's heavy from Luke Street to there. Southwestern, reports of delays heading south just before Puhunui Road.
3: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
5: We've all been there. 6 p.m, traffic sucks, and that chicken for dinner, still frozen.
6: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef, and local produce, ready in the fridge when you are.
5: Take back dinner time with HelloFresh.
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
9: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
10: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. So as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
11: Show us your crack.
12: Ah, Novus!
13: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
14: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
13: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
14: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
13: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
15: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
16: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है. अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का. टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपर साइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ. अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज. ट्रेड इन वेलकम. फाइनेंस भी अवेलेबल है. फ्यूल पर पैसे बचाइए. ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स. विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साउथ रोड, टाटा नैनो. फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.

0: Trend Makers.
1: ये जो हॉस्पिटल ला रहे लो मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी यार।

0: मुन्ना भाई MBBS का ये गाना आप सुन रहे थे, जो इसमें संजय दत्त की भी आवाज थी। और ये मूवी यार मैं आज भी देख सकता हूँ, मैं कभी भी देख सकता हूँ।
1: क्लासिक मूवी है ये, कह सकते हैं संजय दत्त की। इस मूवी में ना इमोशंस, कॉमेडी, एवरीथिंग बहुत ही परफेक्ट वे से थे। और मेरे को लगता है कि जब उनके डैड ने, सुनील दत्त ने इसमें काम किया, वो कॉम्बिनेशन हर किसी ने पसंद किया,
0: बहुत पसंद किया था वो।
1: सो इट वॉज लाइक रियल। एक इंटरव्यू में बोला था ना संजय दत्त ने कि वो जब बैठ के रोते हैं सरकट के साथ कि यू नो, बाप के साथ ये किया ऐसे, तो उस समय पर वो एक्चुअली में रो रहे थे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी ऐसा इमोशनल उस समय पर, कि एक्चुअल लाइफ को कनेक्ट कर रहे थे वो।
0: और मेरे को लग रहा है सिर्फ वो ही नहीं, लेकिन जो एक बाप और बेटे का रिश्ता होता है, काफी बार ऐसा ही होता है वो रिश्ता, जहाँ पे बेटे अक्सर अपने बाप के साथ, एटलीस्ट पहले ऐसा होता था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे काफी बार, एंड देयर इज मोस्ट टाइम्स देयर इज जस्ट साइलेंस ओनली दोनों के बीच में। सो या दैट इज व्हाई आई थिंक नॉट जस्ट संजय दत्त बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो रिलेटेड विद दैट सीन अ लॉट,
1: विद दैट पर्टिकुलर सीन। इट वाज वेरी इमोशनल मूवी, मुझे लगता है बहुत अच्छी थी। बमन ईरानी थे इस मूवी में एंड उनका भी रोल मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अर्शद वारसी तो लाइक या सेकंड हैंड ना,
0: आई रियली विश अर्शद वारसी को हम और ऐसे रोल्स में देखते।
1: आई रियली विश, उस समय पे अनाउंस भी हुआ था कि मुन्ना भाई 3 भी बनने वाली है,
0: शूट भी किया था एक थोड़ा सा,
1: शूट भी किया था, प्रोमो भी आया था, बट देन आई डोंट नो क्या हुआ,
0: नहीं हुआ, फिर वो जेल में चले गए ना वापस से।
1: या सो ये मूवी नहीं बन पाई, बट होपफुली शायद आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अगर तो स्क्रिप्ट रेडी है तो मुझे लगता है ये मूवी बननी चाहिए।
0: हाँ, व्हाट डू यू थिंक गाइस,
1: व्हाई?
0: क्योंकि काफी चीजें चेंज हो गई है ना अभी दोनों के लुक्स, अभी अर्शद वारसी कितना अलग दिखता है।
1: स्टोरी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, टोटली स्टोरी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो कैरी करते हैं।
0: ऐसा होता है ना सैंडी के, वी डोंट नो इफ द स्टोरी विल बी स्टिल रेलेवेंट। अभी इतने टाइम चेंज हो गया है सब कुछ, लाइक यू नो कंजम्पशन जो हमारा है वो कितना चेंज हो गया है, सो नॉट श्योर इफ इट विल स्टिल बी रेलेवेंट।
1: लेट्स सी। सो गाइस, इसी नोट पे आपको यहाँ पे हम टाटा बाय बाय कहते हैं। संजय दत्त का बर्थडे आज हमने सेलिब्रेट किया। ट्रेंड मेकर्स के कुछ एपिसोड्स वैसे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डालते हैं। ड्राइव कैचअप का वैसे एक एपिसोड हमने जो रिसेंट किया था वो हमने ज़रूर रोवा पे, आप उसको जाके सुन सकते हैं, जब हमने हीरो वर्शिप्स के बारे में बात की थी। सो यू कैन गो एंड लिसन रोवा के जरिए, रोवा पे जाइए, जस्ट सर्च ड्राइव कैचअप,
0: यू कैन। ड्राइव कैचअप पे आ गया है वो?
1: हाँ, ड्राइव कैचअप पे वो डाल दिया हुआ है, तो वो जाके आप सुन सकते हैं।
0: तो अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देना टॉपिक को।
1: हाँ,
0: तो हमने बात की है कि शुड यू हीरो वर्शिप योर पॉलिटिशियंस, इसके ऊपर हमने बात की थी। और अगर आपको वहाँ पे जाके, कुछ हमारे लिसनर्स ने थॉट्स भी शेयर किए थे अपने, अगर आपको जाके सुनने हैं, मुझे नहीं लगता काफ़ी लोगों को पसंद आएंगे वो सुनना, बट अगर आपको सुनना है तो आप ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे, एंड यू विल बी एबल टू गेट द लिंक फॉर दैट एपिसोड एज वेल। एंड जरूर हमें बताना मैसेज करके कि आपको क्या लगता है उसके ऊपर,
1: आपको क्या लगता है। जस्ट गो टू रोवा एंड सर्च ड्राइव कैचअप, तो ड्राइव शो विद सैनियर रुजबे भी आप सर्च कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द एपिसोड।
0: एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हम मिलते हैं आपको कल। एंजॉय, हैव अ वंडरफुल इवनिंग,
1: बाय।

प्लेबैक सिंगर से लेकर और एक टॉप लीडिंग फीमेल की प्लेबैक सिंगर तक इनकी जो जर्नी है कैसी थी, कैसी रही। तो इसके दौरान इन्होंने बताया, पूर्णिमा ने बताया कि इनको एक गाना और गाना था, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए। ये गाना काफ़ी हिट हुआ था, फिल्म भी काफ़ी अच्छी चली थी। तो इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने बताया, इनिशियली इनको ये गाना गाना था, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद में, जबकि उस समय म्यूज़िकल राइट्स टाइम के पास में थी और फिर टाइम ने उस फिल्म की म्यूज़िक राइट्स को पास ऑन कर दिया टी सीरीज़ को, और बड़े ही साफ खुले तौर से उन्होंने कहा कि जब ये फिल्म टी सीरीज़ के पास में गई तो वहाँ पर करता धरता, यही शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया, करता धरता थी अनुराधा पोडवाल, और अनुराधा पोडवाल ने इनका गाया हुआ गाना जो था टाइटल ट्रैक मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का अपने आवाज़ में डब कर लिया।

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: Please use your imagination for the following ad.
4: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
3: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
5: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
6: Extra, adore your floor.
7: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari good branch nahi
8: hai. Night Cafe on Hum.
10: नाइट कैफे में मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं और इस वीक के लिए मेट सर्विसेज ने बताया है कि कुछ रिकॉर्ड टेम्परेचर्स थे जबकि इतनी ठंडी थी खासकर सुबह सुबह कि एज लोएस्ट टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं सदर्न वेराव में एट -7.7 डिग्रीज साथ में डेजर्ट रोड में इट वाज एट अबाउट -6.8 डिग्री सेल्सियस तक तो नॉर्थ आइलैंड के लिए खासकर ये काफ़ी लो टेम्परेचर्स थे और एक बिटर कोल्ड स्नैप जो कंटिन्यू कर रही थी फॉर द अर्ली पार्ट ऑफ द वीक तो ऐसे में कई शहरों में जो टेम्परेचर्स थे अर्ली मॉर्निंग काफ़ी लो थे तो ऐसे में अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखिएगा एंड इट्स क्वाइट नेचुरल कि ऐसे समय पर सर्दी जुकाम हो जाती है तो खुद का ध्यान रखिएगा जब आप सुबह निकलते हैं इवन अगर जो आप घर से निकलकर अपने गाड़ी तक जाते हैं अपने सिर को ढके रखें क्योंकि नहीं तो हमारी तरह आपको भी थोड़ा सा जुकाम का सामना करना पड़ेगा

0: तूफान बनी है।
1: जबरदस्त हिट्स
2: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर हमारे स्टूडियोज में खासकर नाइट कैफे में 9 बज रहे हैं. ऐसे में आपका साथ देते रहेंगे 12 तक और आप भी हमारा साथ जरूर दीजिएगा. जबकि लेकर आए हैं इस आवा पर भी ढेर सारे ऐसे तराने जो आपके दिल के तारों को छेड़ जाए. इसके साथ में कुछ कम्युनिटी न्यूज भी रहेगी जो बारी बारी से आपके साथ में शेयर करते रहेंगे. कीप हमिंग 104.2 FM साथ में रोवा पर.

हम पर रवि का साथ है और आज है 29th of July। तो आपको बता दें कि दो दिनों के बाद में ही, याद रहे, सिर्फ 2 days to go, जबकि गरबा नाइट विद राज गढ़वी रहेगा लाइव इन ओकलैंड इसी सरडे 1 August को, फेस्ट ऑफ ऑगस्ट महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड में, जहां पर टिकट्स बहुत ज़ोरों से जा रहे हैं। अभी जो हमको अपडेट मिली है लेटेस्ट की, टिकट्स आर सेलिंग क्वाइट फास्ट। अगर जो आपने अभी तक अपना टिकट्स नहीं लिए हैं, तो एक ऐसा मौका जहां पर आप जाकर एक ऐसे वाइब्रेंट एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जबकि गरबा आपने शायद पहले नहीं खेला होगा, तो एक ऐसा मौका जिसे जाकर आप पूरा पूरा मज़ा ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड में 1 August को ये रहेगी। टिकट्स के लिए eventstickets.co.nz, याद रहे eventstickets.co.nz पर जाकर आप अपने जो टिकट्स हैं अभी से ही ले सकते हैं।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
2: Oh, I was just overtaking someone, officer. Could have only been a couple of k's over, but just for a second to get round them, you know. You're not going to ping me for that, are you? Surely just a warning. I've never even had a
3: crash involving three injured parties. Reported speeding vehicle collided with an SUV at an intersection. Two victims, stat one. We've lost the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
4: Smart Pay is now.
5: Shift 4, Dakota NZ. Global commerce, local service.
4: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
5: Shift 4, Dakota NZ. Global commerce, local service.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
9: Bollywood ka asli blockbuster.
10: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Hum.
9: Night Cafe on Hum.
11: हम पर यह है नाइट कैफे का सिलसिला और जबकि आज वेंसडे है तो मिड वीक का जो बॉलीवुड ग्रेवी है स्पाइस है तड़का लगाने के लिए आपके साथ में हम हो गए हैं और आपको अब रिवॉर्ड करने जा रहे हैं एक ऐसा सुनहरा मौका दे रहे हैं कि आप अपने नाम को इंक्लूड कर सकते हैं टू विन अ डबल पास फॉर नन अदर देन करण औजला। जी हाँ, ये अपना जो पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर है ये लेकर आ रहे हैं ऑकलैंड में, जो रहेगा स्पा करीना ऑकलैंड में ऑन द 25th of August। तो आपको अब मौका दे रहे हैं कि आप अपने आप को एक चेंज दिला सके टू विन द डबल पास। आपको सिर्फ क्या करना होगा, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि करण औजला की जो पैदाइश है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ तो मैं आपको बता देता हूँ, इट वॉज जनवरी। इनका जो पैदाशी महीना है ये जनवरी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि जनवरी में किस तारीख को ये जन्मे थे, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये क्या है, बस इतना ही लिखकर आपको हमारे पास में सेंड करना है। के ए ज़रूर लिखिएगा, यही कीवर्ड्स है, की लेटर्स है। के ए लिखकर जो तारीख है, जो डेट आप सोचते हैं वो लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर भेजिए। और हाँ, गूगल का सहारा तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप hum.rova.nz भी जा सकते हैं या फिर livenation.co.nz पर जाकर और इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही लिखिए डेट जो आपको लगता है, जिस डेट को जनवरी के महीने में की पैदाइश हुई थी वो लिखकर लेटेस्ट के साथ में अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करिए।

एंड पार्टी जो रहेगी सैटरडे 1st ऑफ अगस्त और साथ में संडे 2nd ऑफ अगस्त को। शनिवार को सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में ये पाठ आरंभ होगी। इसके साथ साथ ये चलती रहेगी अंटिल संडे 10 AM और यहाँ पर आप जाकर भाग ले सकते हैं। महाप्रसाद सेव किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। आप और जानकारी के लिए 09836464747 पर कॉल कर सकते हैं।

हैपनिंग न्यूज के साथ में। अगले महीने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फिल्म है जिसे आप सिनेमाज में देख सकेंगे, बटवारा 1947, जिसमें काम किया है नन अदर देन सनी देओल ने, और काफी एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म के साथ में। और अभी हाल ही में एक प्रेस रिलीज में

इनको फाड़ना था, इनको ड्रेक करना था, और वहाँ पर तब सनी डिओल आकर इनको बचाते हैं। और इन्होंने बताया कि एज एन एक्टर इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो परफॉर्मेंस देना, और ये अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान थी। और ये जानकर उनको लेकिन खुशी हुई कि जहाँ पर सनी की एंट्री होती है। तो ये सभी कुछ एक देखने का मौका है, एक एपिक स्टोरी जो रिलीज़ होने को है ऑन द 14th ऑफ अगस्त, और आप इसे सिनेमास में ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं।

हम पर रवि का साथ है और आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे कम्युनिटी न्यूज़ को शेयर करते रहते हैं जिसे सुनकर आपको बेहद खुशी होती है और इसके अलावा आपको एक मौका मिलता है कि आप जाकर ऐसे मोमेंट्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेघ उत्सव, जी हाँ, मेघ उत्सव ये आपके करीबी शहर ओकलैंड में मनाने जा रहे हैं, लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और एक ऐसा मौका जहाँ पर आप इंडिया के मानसून फेस्टिवल को ओकलैंड में सेलिब्रेट कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो भारत से आकर ओकलैंड न्यूजीलैंड में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस है, जो कम्युनिटी स्पिरिट है, इसे आप मिस करने लगते हैं ना। इसी को ध्यान में रखकर मेघ उत्सव को यही ओकलैंड में सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन द 8th of August माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल में शाम को 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक। यहाँ पर आप जाकर कल्चरल परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, साथ में फूड स्टॉल्स का पूरा मज़ा ले सकते हैं। किड्स के लिए एक अलग कोना है इनके लिए डेजिग्नेटेड, जहां पर ये अपना फ़न कर सकते हैं। गेम्स एंड एक्टिविटीज़ ये सभी के लिए रहेंगी और इसके अलावा शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। तो याद रहे, द डेट इज़ 8th of August, वेन्यू है माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल, टाइम 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक। सबसे बढ़िया बात ये कि एंट्री बिल्कुल फ्री है।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event tomorrow till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
2: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
1: There you have it, up to 70% off selected stock, and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event. Tomorrow till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive

0: massive Auckland Clearance Centre event.
1: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
2: Feed the faith with the 1NZ Warriors range exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
3: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं
4: है. Night Cafe.
6: नाइट कैफे में मैं हूं आपका साथी अभी और आपको बताते आ रहा हूं कि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो कि रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल. यहां पर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जितने भी खिलाड़ी हैं आपकी स्किल लेवल किसी भी लेवल पर हो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप आकर इसमें पार्टिसिपेट करें. रजिस्ट्रेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर या फिर इसके अलावा आप NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 021-090-850-67 पर कॉल कर सकते हैं.

हम पर नाइट कैफे का सिलसिला है अभी के साथ में और चलता रहेगा ठीक 12 तक। आपको बताते 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा। लेकिन एक और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर हमें अपना ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, हम के फेसबुक पेज पर, हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर जाकर इन्हें आप फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बारी बारी से हमारे जितने रेडियो होस्ट होते हैं, आरजेज होते हैं, अपने अपने शो में कुछ ना कुछ अनोखा या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर पोस्ट डालते रहते हैं, जिसके लिए हमें आपका प्यार चाहिए।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
8: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
1: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Ryan. International volatility will be factored into any temporary fuel relief decisions. Finance Minister Nicola Willis says they won't act until the impact of recent global price hikes are fully understood. Police are urgently seeking information on the whereabouts of 69-year-old Marie Jennings, missing from Birkenhead on Auckland's North Shore. The last confirmed sighting of her is believed to be last Friday afternoon. The SPCA is expecting outrage will follow the refusal to ban the public sale of fireworks. The government says it would address welfare risks, but it would also remove access to a widely used, long-standing and lawful activity. In sport, the opening round of the NPC Rugby kicks off tomorrow night, Waikato hosting Bay of Plenty. On Saturday night, first five Richie Mwanga returns for Canterbury on the bench as the title defence gets underway against Auckland in Christchurch. Rugby was shift four. At the Commonwealth Games, early track and field, Tom Walsh will be in shot put qualifying in the early hours of the morning. Both men's and women's 3x3 basketballers have a guaranteed shot at a medal.
0: Sports News.
1: Brought to you by

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: आज के इस नाइट कैफे के सफर में फाइनल हवा में हम पहुंच गए हैं और हमने वादा किया था कि 12 तक आपका साथ देंगे, तो इसी तरह से 12 तक कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे और आपको याद करते हैं. अगर जो आप अपने नाइट शिफ्ट में हैं, काम कर रहे हैं हमारी तरह, तो कीप हमिंग, मुस्कराते रहे, हंसते रहे और इसी तरह से आपका जो सफ़र है आसान हो जाएगा.

हम पर नाइट कैफे में अभी का साथ है, और अगर जो आपको तलाश है एक ऐसे राह की, एक ऐसे मार्ग की जो आपको बिल्कुल शांति में लेकर एक ऐसे लक्ष्य तक पहुंचा दे जिसकी आपको तलाश है, तो खास आपके लिए चिन्मय मिशन आपको इनवाइट कर रहा है भागवत गीता डिकोडेड अ मास्टर क्लास, जहां पर ट्रेंड वेदांत श्री ईशान चैतन्य जी बातें करेंगे आपके साथ में, और आपके स्पिरिचुअल जर्नी को बिल्कुल ये आपके साथ में शुरुआत करेंगे। तो फ्राइडे 7 अगस्त को ये रहेगा 7:30 PM से लेकर 9 PM तक। आपको सिर्फ जाना होगा न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल एट 45 टोटारा एवेन्यू न्यू लिन में। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, और जानकारी के लिए आप विजिट करें www.chinmaya.org.nz रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, तो www.chinmaya.org.nz पर जाकर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट कर सकते हैं।

0: हम पर नाइट कैफे का सिलसिला जारी है और अब बातें करते हैं अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट की, जहां पर सिंडी और रुजबे अक्सर ऐसे ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं हमारे ही सोसाइटी से, हमारे ही कम्युनिटी से, जिनको सुनकर हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो अब की बार इन्होंने बातें की है शनील लाल के साथ में ऑन ब्रेकिंग बैरियर्स, जहां पर इन्होंने LGBTQ के राइट्स को लेकर बातें की हैं और कैसे किन मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ता है और कैसे इन ट्रबल्स या ऑब्स्टकल से ये उभर कर सामने आते हैं और ऊपर ऊंचाई को छूते हैं। तो ये सभी कुछ अपने पॉडकास्ट में इन्होंने बातें की हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जो हमारी आम जनता की सोच होती है कि आखिर कॉमन मैन क्या कर सकता है। तो इस सोच को बदलने के लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट का लिंक है ये मिल सके और आप जाकर इसे सुन सके। तो ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, क्योंकि हमें साथ मिलकर अपने अपने माइंडसेट को जरूर अच्छाई के लिए बदलना चाहिए।
1: नाइट कैफे ऑन हम,
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। west side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा, Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: कैफे ऑन हम
1: नाइट कैफे में हमारा और आपका साथ बस थोड़ी ही देर तक और रहेगा, जबकि 8 बजे से आपका साथ देते आ रहे हैं। तो अगर जो आप किसी कारण से ब्रेकफास्ट केचअप को मिस कर देते हैं, और विजय और पूजा जहां अक्सर ये बातें करते हैं कुछ हार्ड हिटिंग टॉपिक्स को लेकर, तो इनको सुनने के लिए आप सिर्फ BF लिखें और 5599 पर टेक्स्ट करें, ताकि आपको जो केचअप है पॉडकास्ट, ये जो लिंक है आपको मिल सके।

आज के लिए हमारा और आपका जो प्यारा सा साथ था ये यहीं तक था, और ये वादा किए जा रहे हैं कल एक बार फिर आपके साथ में हो जाएंगे रात 8 पर, और लेकर आएंगे एक नया नाइट कैफे, इसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इन द मीन टाइम आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ख्याल रखिएगा, औरों का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी। इन द मीन टाइम डू टेक केयर, बाय।

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured up front, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.

0: हीरोज पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: एवरीडे बर्न हैज़र्ड्स आर हॉटर देन दे लुक। एक्ट फास्ट, cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
0: The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Night flight on.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: રાંચી ગ્રુપ, ટ્રી ઇવેન્ટ ન્યુઝીલેન્ડ અને અરવાહા ઓટોસ સાથે મળીને પ્રસ્તુત કરે છે રાજગઢવી લાઈવ ઇન ઓકલેન્ડ। તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે, જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા। સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ। ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ। ટિકિટ્સ માટે જાઓ events.tickets.co.nz।
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, hamari koi branch nahi hai।

0: हम फीजी भजन्स।
1: ब्रांची ग्रुप थ्री इवेंट न्यूजीलैंड अने अरवाहा ऑटोस साथे मिलीने प्रस्तुत करे छे राजघड़ी लाइव इन ऑकलैंड। तैयार थई जाओ एक यादगार सांज माटे जहां हशे म्यूजिक मस्ती अने नॉन स्टॉप गरबा। सैटरडे नाइट 1 ऑगस्ट द महात्मा गांधी सेंटर राजघड़ी साथे मनाओ एक शानदार गरबा नाइट। गरबा विथ राजघड़ी सैटरडे नाइट 1 ऑगस्ट। टिकट्स माटे जाओ eventstickets.co.nz।
2: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
6: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
7: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
6: There you have it, up to 70% off selected stock, and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
8: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
9: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सिलेक्टेड नए ओमुडा

0: आज की सनी साइड अप स्टोरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी एट द सेम टाइम, लेकिन थोड़ा इमोशन से भरा भी है. और ये जो सनी साइड अप की कहानी है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति के बारे में है. संडे को इन्होंने, लास्ट वीक संडे को कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हो रहा है वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया मैन 60 kg वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में. और अपने कंट्री जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इस कॉम्पिटिशन में, उन्होंने इस कंट्री को सिल्वर मेडल जो है ये जिताया. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन ऋषिकांता सिंह चिदंबरम. और इनके बारे में बताया गया है कि संडे को ही वॉन द सिल्वर मेडल, जिसके बाद चलकर सोशल मीडिया पर इनके स्ट्रगल के बारे में भी काफ़ी बातें जो है ये आ रही है. ऋषिकांता ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भले ही वो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उनके बिगेस्ट सपोर्टर, उनके बिगेस्ट चीयर जो है ये उनसे करीबन 700,000 किलोमीटर दूर राजस्थान भारत में बैठे बैठे इनको चीयर कर रहे थे अपने मोबाइल फोन पर इनका कॉम्पिटिशन देखते हुए. इन्होंने ये कहा कि वैसे तो ये मणिपुर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन कुछ महीनों से इनके माता पिता, इनके बड़े भाई अमरजीत सिंह के घर राजस्थान में रह रहे हैं, जहां पर उनके पिता जो कि फिलहाल ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं जोधपुर में. और उन्होंने करीबन 3 rounds ऑफ कीमोथेरेपी जो ये कम्प्लीट भी करा लिया एंड इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू द यू नो कीमोथेरेपी. बट एक यू नो कन्वर्सेशन में ऋषिकांता ने ये कहा कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी डिफिकल्ट थी और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यू नो एज अ डेली वेज लेबर जो है ये काम करते हुए गुजारा. कभी कभी ऐसा भी होता कि इनके पास काम भी नहीं होता था एंड करीबन 150 rupees अ डे ये कमाते थे, बिकॉज वो एक स्किल्ड वर्कर नहीं थे. वो बस लेबर का काम करते हुए जो भी इनके हाथ लग जाता था उससे अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर जो ये कर रहे थे. लेकिन उनके बड़े भाई अमरजीत सिंह उनके लाइफ के एक ऐसे एंजल हैं जो कि ना केवल उनके मुश्किल समय में उनकी हिम्मत बढ़ाते, लेकिन उनको हमेशा खुश रखने की, हंसाने की कोशिश भी करते. और जब एक ऐसा समय आया कि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, तो दैट इज़ द टाइम जब उनके बड़े भाई ने उनकी मदद की, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके कॉम्पिटिशन्स के लिए पैसे जो है ये भरे, जिसके बाद जाकर वो सिलेक्ट हुए टू रिप्रेजेंट इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर 2026. और उसके बाद जब उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए, तो उसका पूरा क्रेडिट वो अपने भाई अमरजीत सिंह को दे रहे हैं. ऐसे बहुत से इंस्पिरेशनल लोग इस दुनिया भर में यू नो कहीं ना कहीं आपको सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेंगे. और उनकी कहानियां जब हम तक पहुँचती है तो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. एंड लाइकवाइज इस कहानी से भी ये सीखने को मिलता है कि इट्स सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बॉन्ड जो ये दो भाई शेयर करते हैं. और ये भूलना नहीं चाहिए कि आपकी मुश्किल के समय में कौन है जो आपको हमेशा हेल्प करता है. एंड व्हेन यू आर राइजिंग अप राइट हाई इन लाइफ, तो उस शख्स को हमेशा याद करें, उस शख्स को हमेशा क्रेडिट दें. उम्मीद है आज की ये सनी साइड अप स्टोरी आपको भी एक इंस्पिरेशन दे और आपको भी थोड़ा यू नो पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने का मौका जो है ये मिले. कमिंग अप नेक्स्ट ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, आज के ग्लोबल हेडलाइंस.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए.
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम.
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
7: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their 3 Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
8: अपने घर को रेडी कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
9: हाय देयर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट वी नो समवन हु इज परफेक्ट फॉर यू। दे काइंड एंड वार्म, इंटरेस्टिंग एंड फन, दे लव किड्स एंड एनिमल्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, फूड एंड फैशन। They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
10: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
11: MediaWorks complaints. How can I help?
12: My kids won't shut up.
11: I'm not sure that's our problem.
12: They keep reciting lines from one of your radio ads.
11: Aw, cute.
12: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
13: What do you want, son?
14: I want me some of that real southern chicken.
12: 28 times.
11: So where are you now?
12: Eating chicken.
7: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
2: The beat of Bollywood.
15: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Global headlines.
0: आज सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में सबसे पहले जापान में आए एक अर्थक्वेक की वजह से जापान का क्योशू आइलैंड, यहाँ पर मोर देन 150,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। बहुत सी सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी हद तक इनको क्षति पहुँची है, और इसकी वजह से करीबन 40,000 से भी ज़्यादा घरों पर फिलहाल पावर सप्लाई ठप है। अभी भी बहुत से लोगों की तलाश की जा रही, क्योंकि क्योशू आइलैंड की एक फैक्ट्री में एक चिमनी कोलैप्स के बाद बहुत से लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। अन्य खबरों में कहा गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अर्लियर दिस वीक अलग अलग मीटिंग्स की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और साथ में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में ये मीटिंग हुई, जिसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये दोनों मीटिंग्स पॉजिटिव और प्रोडक्टिव साबित हुई है। भारत की खबरों में कहा गया है कि भारत में पार्लियामेंट में चल रहे डिबेट्स के बारे में काफ़ी बातें सामने आ रही है, जहाँ पर कुछ हीटेड डिबेट्स जो है अर्लियर दिस वीक हुए एक नए बिल को लेकर, जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है टू स्टॉप द क्वेश्चन पेपर लीक्स एंड एग्जाम फ्रॉड। सरकार का कहना है कि वो नया बिल जो है ये पास करने के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर काम चल रहा है, ताकि वहां पर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ऐसे एग्जाम फ्रॉड्स को फ्यूचर में होने से रोका जाए। तो वहीं पर ऑपोजिशन का कहना है कि स्ट्रॉन्गर एक्शन की जरूरत है, क्योंकि बार बार ऐसे एग्जाम स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं। अन्य खबरों में कहा गया है फिजी के फोमा एमपी निको नवाइकुला जो है, इन्होंने अनाउंस किया अपना सपोर्ट फॉर द प्रपोज्ड पीपल्स स्टार नेटवर्क पार्टी। उन्होंने कहा है कि 2022 में एक कन्विक्शन की वजह से वो अगले इलेक्शन में पार्ट तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो अपना योगदान पीपल्स स्टार नेटवर्क पार्टी को ज़रूर देंगे और उनके सलाहकार के रूप में उनकी हेल्प जो है ये करने वाले हैं। खेलकूद के खबरों में कहा गया है कि खबरें आ रही हैं रूमर्ड और रिपोर्टेडली कि पीएसजी के विंगर ब्रेडली बारकोला जो है ही हैज़ रिपोर्टेडली अग्रीड टू ज्वाइन लिवरपूल, लेकिन अभी भी दोनों क्लब्स जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं ऑन द ट्रांसफर फी। ये थे आज सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
17: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
18: मैं लाऊं अपना ए गेम।
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: बॉलीवुड की दुनिया से आज आपके लिए जो अपडेट लेकर आए, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन बॉलीवुड एंड डेफिनेटली इसके बारे में आपसे बातें करना बनता है. अपेरेंटली कहा गया है कि लव एंड वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा है. पीपल आर ईगली अवेटिंग एनी डिटेल्स इन रिगार्ड्स विद दिस. और इस साल का वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म जो है हम जरूर कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन बॉलीवुड हंगामा, डायरेक्टर संजय लीला बंसाली और उनकी टीम जो है ये प्लान कर रही है टू अनवेल द फिल्म फर्स्ट ऑफिशियल लुक बिफोर दिवाली 2026 एक प्रमोशनल कैंपेन के जरिए जो कि इन कमिंग वीक्स शुरू हो जाएगा. ये जो पीरियड ड्रामा है इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल जो है लीड रोल्स में दिखने वाले हैं. और साथ ही साथ फिल्म मेकर्स जो है दे हैव केप्ट द स्टोरी लाइन, द कैरेक्टर डिटेल्स सब कुछ एकदम सीक्रेटिव. लेकिन बहुत से सेवरल अलेज्ड बिहाइंड द सीन फोटोज एंड कैरेक्टर इमेजेस जो है इंटरनेट पर कहीं ना कहीं आए दिन जो है ये सामने आते रहते हैं. हाउएवर अभी तक लव एंड वो की टीम ने कोई भी कंफर्मेशन इसके रिगार्ड में नहीं दी है. इंडस्ट्री की सोर्सेज की माने तो कहा गया है जो फर्स्ट लुक रिवील है इसे करंटली फाइनलाइज किया जा रहा है एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिल्ड एक्साइटमेंट अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन. और लव एंड वो जो है इज स्केड्यूल्ड टू रिलीज इन सिनेमाज वर्ल्ड वाइड ऑन 21st of January 2027 रिपब्लिक डे वीकेंड के दौरान, जो तीन अलग अलग भाषाओं में रहेगी, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु. तो लेट्स सी इस फिल्म से जुड़े और भी क्या कुछ अपडेट्स हमारे हाथ लगते हैं. बाय द वे, हमने बातें की इस फिल्म में अबाउट रणबीर कपूर एंड विकी कौशल, तो आज का हमारा सवाल इसी से रिलेटेड आपके लिए. क्या आपको याद है वो पहली फिल्म जिसमें रणबीर कपूर और विकी कौशल ने एक साथ काम किया था? इफ यू नो द नेम ऑफ दैट मूवी, जल्दी से हमारे पास टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ ऑन 5599. द फर्स्ट मूवी इन विच रणबीर कपूर एंड विकी कौशल हैड वर्क्ड टुगेदर.
1: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
2: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
3: Accurate traffic.
4: New limited edition sweet sriracha chicken parma.
5: Mainly fine today. We do have rain tonight, a high of 17 degrees. Into the city at the moment, northwestern motorway could be a possible incident on the causeway. We're a bit patchy at Massey Piatatu. Heavy on the causeway, but then clear past there. 24 minutes Massey to town. Southern, 26 in from Manukau. We're slow Papakura to Manurewa, then patchy to Mount Wellington. Northern, drive time's okay. Slow Constellation to Glenfield.
4: Lips will tingle. Enjoy the sweet sriracha chicken parma at Pita Pit, egged and bowled.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: चॉइस आपकी है एट विंगा मोटर्स. सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए

0: credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognised qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
2: SIT Online. Learn without limits.
3: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
4: Kyun? Kya hua?
3: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
5: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
6: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने आसरा ले ले तू मज़ा
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
7: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग
8: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और इधर चलिए आपको याद दिला दे कि हमने आपसे क्वेश्चन किया था वो पहली फिल्म क्या आपको याद है जिसमें रणबीर कपूर और साथ में विकी कौशल इन दोनों ने एक साथ काम किया था अगर आपको याद है तो अपने आंसर्स आप हमारे पास ज़रूर भेज सकते हैं 5599 पर और थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस हम ज़रूर चेकआउट करेंगे थैंक यू सो मच वैसे आप सभी के मैसेजेस के लिए अभी तक आपने हमारे पास जो भेजे हैं कुणाल अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू आपके मैसेज के लिए इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास राजू सुबह सुबह आपका भी मैसेज आया है संगीता जी अ वेरी गुड मॉर्निंग लाइक ऑलवेज अभिमान जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू आपके मैसेज के लिए मिस्टर माटा माटा अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड थैंक यू आपके मैसेज के लिए वैसे मैंडी है और साथ में विमलेश एंड प्रिया है विनीता जी है हर सुबह आप भी हमें ज्वाइन करते हैं थैंक यू आप सभी के साथ के लिए बाय द वे लेट मी रिमाइंड यू कि अराउंड थ्रोबैक तो इस सवाल का सही जवाब हम आपको देंगे ही देंगे लेकिन उससे पहले हमारे अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूसबे इसके बारे में आपको बता दें जहां पर लेटेस्ट एपिसोड में आप चेकआउट कर सकते हैं अदर देन शनील लाल को जिन्होंने एक बहुत ही जरूरी कन्वर्सेशन एक बहुत ही इन डेप्थ कन्वर्सेशन ये किया है अबाउट द LGBTQ प्लस कम्युनिटी उनके राइट्स द रेसिज्म दे फेस एंड ऑफ कोर्स द रिप्रेजेंटेशन दे हैव इन द कम्युनिटी इसके बारे में और शनील लाल एक्चुअली ये है कौन ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है इन्होंने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें की हैं फॉर द LGBTQ प्लस कम्युनिटी और उनके राइट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन जो ये करते हैं इन्होंने यंग न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था 2023 में तो इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन इनका हुआ है विद सैंडी एंड रूसबे इफ यू वांट टू चेक आउट दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूसबे ड्राइव लिखकर 5599 पर अपने नाम के साथ आप जरूर सेंड कर सकते हैं

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: Wardrobes Direct. Great value wardrobes.
3: A high of 17. Mainly fine today. Got rain tonight. Into the city. Northern Motorway. 20 minutes in from Constellation Drive to the city. 38 from Silverdale. Slow at Silverdale and Constellation to Glenfield. Northwestern 32 in from Massey. Slow patches on and off from there, but heavy at Te Aratu and Grey Lynn. Southern 32 Manukau Town. Slow Papakura to Papatoetoe and patchy to Mount Wellington. Little airport traffic too.
2: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct. Mount Wellington and Silverdale showrooms.
4: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
5: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
4: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
6: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty, other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
7: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
8: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manuco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Breakfast Catch-Up. Throwback.
11: आज का थ्रोबैक आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं। बट बिफोर द थ्रोबैक लेट मी रिमाइंड यू कि मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, वो कौन सी फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर और साथ में विकी कौशल ने एक साथ काम किया था। कुछ लोगों के गलत तो कुछ लोगों के सही जवाब जरूर आए। थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। एंड द करेक्ट मूवी और द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द फिल्म संजू। 2018 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में संजय दत्त की लाइफ से जुड़ी कहानी जो है ये दिखाई थी राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने इस फिल्म को मेरे ख्याल से डायरेक्ट किया था। और अभिजात जोशी एंड राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ संजय दत्त, और ऑफ कोर्स विद विनोद चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया था। नाउ दिस वाज द फर्स्ट मूवी जिसमें रणबीर कपूर और विकी कौशल ने एक दूसरे के साथ काम किया था। एंड द कैरेक्टर विकी कौशल हैड प्लेड वाज संजय दत्त की जो रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड है कमलेश का। तो ये कैरेक्टर भी काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोगों ने इनके इस केमिस्ट्री को, इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी पसंद भी किया था। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने आंसर्स भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज है थर्सडे the 30th of July, बस दो और दिन और जुलाई महीना भी ख़त्म, यानी कि सैटरडे 1st of August से हम तैयार कर रहे हैं खुद को वेलकम करने के लिए for the month of August, the final month of winter in New Zealand. Officially, we can say the final month. But let's see how does August treat all of us. But right now, enjoy kijiye aaj ka hamara pehla throwback.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Super City, Auckland में आज का मौसम मेनली फाइन रहेगा. चांसेस ऑफ लिटिल बिट ऑफ शावर्स अंटिल द आफ्टरनून. सनराइज इसी घंटे 7:21 AM पर होगा, सनसेट 5:35 PM पर. हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर. ओवरनाइट टेम्परेचर 11 डिग्रीज तक आज रहने वाला है.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेडजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर for everyday luxury living.
0: Morning Madness, the breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं पूजा आपका साथ दे रही हूँ आज के हमारे द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा के सफर में. मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत आप सभी के साथ हम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सभी की कंपनी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए. इस घंटे बाय द वे आज के आपके राशि वाइब्स हम लेकर आएंगे थोड़ी देर बाद. मतलब दिन कैसा बीतेगा आपके लिए ये आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स. और उसके अलावा हम आपके लिए घंटे आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म है ये भी लेकर आएंगे. कल काफी इंटरेस्टिंग रहा, हमने रिवील भी कर दिया था कि बहुत से लोगों ने पहचान भी लिया था कल के जो सेलिब्रिटी थे हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में, विच वाज जिम कैरी. सो टुडे ऑफ कोर्स आई हैव टू गेट अ न्यू वॉइस. लेकिन किन की आवाज होगी आज की, सेलिब्रिटी कौन रहेंगे सेलिब्रिटी अलार्म में, जानने के लिए सुनते रहिएगा 7:30 न्यूज हेडलाइंस. विल टॉक अबाउट सम थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन न्यूजीलैंड एज फार एज द न्यूज वर्ल्ड इज कंसर्न्ड. तो ये तो रहेगा ही, प्लस आपके लिए इसी घंटे हम पेश करने वाले हैं बर्थडे ग्रीटिंग्स. हैप्पी बर्थडे भी आपको हम बेशक विश करेंगे. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो हमारे आसपास हो रहा है. कोशिश तुम्हारी रहती है कि आपको इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रखे, पर पॉसिबली इधर उधर एक दो चीज़ें जो है कभी कभी मिस हो जाती है. सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. बट इफ देर इज एनी सच थिंग दैट यूड लाइक टू शेयर विद मी, तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं. बाय द वे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनकाउंटर हुआ है एक ऊबर ड्राइवर का इन ऑस्ट्रेलिया वाइल ही वॉज राइडिंग हिज ऊबर और ड्राइविंग हिज ऊबर. तो क्या है ये एनकाउंटर, कौन के साथ, किसके साथ ये हुआ है, इससे जुड़ी एक कहानी आपके लिए इसी घंटे हम जरूर लेकर आएंगे.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो चलिए आज के दिन आपके लिए कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। आपकी राशि वाइब में सबसे पहले आज मेष ने एरीज, कुछ नए प्लान्स बनेंगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे, फायदे के मौके बेशक मिलेंगे बट कुछ चेंजेस आप आज जरूर एक्सपीरियंस करने वाले अपने आसपास विच माइट कीप यू अ बिट कंफ्यूज्ड। तो अपना कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करें। इफ यू नीड हेल्प, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द ट्रस्टेड वंस और उससे जरूर फायदा उठाएं। वृष शनि टॉरस, आपके लिए कहा गया है बेरोजगारी दूर होगी, अच्छे नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं तो फाइनली ये तलाश आपकी खत्म होगी। पैसों के मामले में काफी फायदा होगा, रिस्क उठाने की हिम्मत आप में जरूर आएगी और आपने एक लक्ष्य बांध लिया है अपने जीवन में, उसे पूरा करने की मेहनत आप जरूर करेंगे। तो डेफिनेटली कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज टुडे इज द डे जहां पर कुछ जरूरी फैसले इस मामले में आपको लेने हैं। मिथुन यानी जेमिनी, पॉजिटिविटी ही आज आपको सफलता दिलाएगी। आज कई तरह के हैप्पी ओकेजंस में आप भाग लेंगे एंड यू'ड बी द स्टार ऑफ द इवेंट। घर और बाहर दोनों ही ओर इतना हैप्पी आप हैप्पीनेस आप महसूस करेंगे कि आज दिन भर आपके चेहरे पर वी कैन से एक कोलगेट स्माइल तो बनी रहेगी। करके ने कैंसर, गुस्से पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, कोई बुरी खबर मिल सकती है तो इसीलिए थोड़ी चिंताएं आज अब आपकी लगी रहेंगी। कोशिश करें खुद को और स्ट्रांग बनाने की। इफ़ यू नीड to someone to talk to, then confide in someone, look for someone जो आपके emotions को अच्छी तरह से handle कर सके, ना कि हर किसी के सामने अपनी दिल की बातें जो है ये आप रख दें, ऐसा आपके लिए आज बताया जा रहा है। सिंह यानी लियो, कुछ नए experiences आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे, पैसों के मामले में फायदा होगा और आज risks ना लें, ये सलाह आपको straight forward दी जा रही है। कन्या यानी वर्गो, आपके लिए बताया गया है कि मेहमान घर पर आएंगे जिनके साथ अच्छा समय बीतेगा, बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको ही बहुत ही हैप्पी न्यूज़ भी आपको मिलेगी और इसकी वजह से दिन बहुत अच्छा बीतेगा। बस जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, ना फिर ना कि किसी और काम के लिए कमिटमेंट भी जल्दबाजी में आप ना लें, ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है। तुला यानी कि लिब्रा, आपके लिए कहा गया है नौकरी से रिलेटेड किसी ट्रिप पर जाएंगे, बेनिफिशियल साबित होगा, गिफ्ट वगैरह आज मिल सकता है, सो यू विल बी वेरी हैप्पी टुडे। शायद कुछ ऐसा जिसकी इच्छा आपको थी, फाइनली यू विल गेट इट एज अ गिफ्ट और बिजनेस के मामले में यू विल सी योर बिजनेस प्रोग्रेस एंड यू विल फील वेरी प्राउड। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बातों पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, किस तरह के शब्दों का टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ किस तरह की बातें आप कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्यों खुद के लिए आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। फाइनेंशियली अगर खुद को नहीं संभाला, खर्चे पर रोक नहीं लगाया तो आपको कर्ज तक लेना पड़ सकता है, इसलिए मैनेज योर फाइनेंसेस प्रॉपरली। धनु यानी सेगिटेरियस, लीगल मैटर्स में आज आपके काम बनेंगे, यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट यू हैव बीन प्रेइंग फॉर। और इसके अलावा आज बच्चों के काम को लेकर थोड़ा यू नो सोसाइटी में लोगों से हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है। आपके लिए कहा जा रहा है कुछ लोग हैं आपका नुकसान चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, एक्टिव है वो, केयरफुल रहे अपने आसपास ऐसे लोगों से। मकर यानी कैप्रिकॉन, मेहनत का फल मिलेगा, खूब मेहनत आप कर रहे हैं तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आज आपको कई तरह के फायदे भी होंगे, बिजनेस में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बढ़ती जाएगी लेकिन फायदा भी बढ़ेगा। कुंभ यानी अक्यूरियस, आपके लिए कहा गया है रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके ही अनुसार काम कर रहे हैं, मतलब आपकी दिली इच्छाओं के अनुसार। पैसों के मामले में फायदा हाथ लगेगा, हेल्थ थोड़ा कमजोर है इसलिए लुक आफ्टर योरसेल्फ, भाइयों की मदद मिलेगी जिससे मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकेंगे। मीन यानी पाइसेस, गाड़ी चलाते समय मशीनरी का इस्तेमाल करते समय केयरफुल हो जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है आपके लिए। और दूसरों के कामों में हस्तक्षेप यानी कि इन्वॉल्व ना हो, इफ़ यू आर नॉट नीडेड डोंट गिव योर टू सेंस, अगर आपके एडवाइस की आपकी मदद की जरूरत है देन डेफिनेटली, पर कोशिश करें कि आज दूसरों के कामों में खुद को इन्वॉल्व ना करें, वरना किसी और की मदद करने के चक्कर में खुद का नुकसान आप कर बैठेंगे। ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते दिन सभी का बहुत ही अच्छा, बढ़िया और कमाल का गुजरे। थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म,
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
4: ड्राइविंग यू होम,
5: Drive Show with Sandy and Rusby.
6: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
7: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
8: वो भी आई लव यू वाला,
7: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
8: अच्छा आप दिलजीत हो,
7: आए आए बताओगे यार।
5: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
9: A lot of injuries happen on the weekend, So if you're out and about, or just out in the backyard, have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
10: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
11: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
10: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
12: Takanini Auto Group may electric or hybrid cars or SUVs. Brand new. Sirf 29,990 se. Leap Motor, Dongfeng or bike ke latest hybrid or EV models. Trade-ins welcome. Finance bhi available hai. Visit Takanini Supersite. Petrol or diesel ke crazy prices ko boliye goodbye. Aur nai ya quality used EV ya hybrid ghar le jaiye. Aur haan, ye almost sab kuch trade kar lenge. Bas, aapki mother-in-law ke ilawa. Takanini Auto Group. 170 Great South Road, Takanini. Fees, C's, D's and credit criteria apply.
13: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany aaiye for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
14: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
15: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
16: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
2: तो चलिए बारी है ऑन मैनिंग मॉर्निंग मैडनेस द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा पर. आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म हम लेकर आए. कौन है आज के हमारे सेलिब्रिटी, अनुमान आपको लगाना है. आई विल मेक यू हियर अ वॉइस जहां पर ये गा रहे हैं और यही सुनकर आपको अनुमान लगाना होगा. देट बी बिट ऑफ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस, नॉट टू मच, बट लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट कि ये आवाज़ किन की है.

सो कुड यू फिगर आउट कि ये आवाज़ किनकी है? अगर आपको पता चल चुका है कि ये आवाज़ किनकी है तो वेरी गुड, गुड ऑन यू. यू जस्ट नीड टू टेक्स्ट इट ऑन 5599. और अगर नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से सुना सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है? सेलिब्रिटी अलार्म में हम आपको सुनाते हैं कई तरह के सेलिब्रिटीज के वॉइसेस, एंड दी सेलिब्रिटीज कुड बी फ्रॉम एनी फील्ड, जिनकी आवाज़ सुनकर आपको पहचाननी होती है कि ये कौन है. नाउ इस पूरे वीक मेरा टाटा फिश हो रहा है, बिकॉज दे हैज़ बीन एनी वॉइस आई एम गेटिंग और वो आप झटपट गेस कर लेते हो. तो आज वाले जो सेलिब्रिटी है इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ आपको सुनाऊँगी. एंड हियर वी गो.

0: There you go. जल्दी जल्दी BF space answer your name लिखकर 5599% करें. Let's see क्या आप पहचान पाए हैं ये कौन है या नहीं. अगर आज पहचान गए तो कल एक नई आवाज. Otherwise we'll continue with the same voice for tomorrow as well.
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहले आपको याद दिला दें कि नेशनल एंड लेबर पार्टी जो है ये फिलहाल एक दूसरे को लेकर काफ़ी बातचीत बोल रहे हैं एज फार एज पेड पेरेंटल लीव इज कंसर्न्ड। ये क्लैश इनके बीच में तब हुआ जब नेशनल पार्टी ने प्रॉमिस किया टू इंक्रीज पेड लीव फ्रॉम 26 वीक्स टू 30 वीक्स अगर वो इस बार वापस से सरकार में आते हैं तो इलेक्शंस के बाद, जबकि लेबर पार्टी का कहना है कि इट विल ऑल्सो सपोर्ट द एक्सटेंशन, लेकिन वो अक्यूज कर रहे हैं नेशनल पार्टी ऑफ being inconsistent, pointing out ki party jo hai voted against extending paid parental leave in the past. National ka kehna hai ki parents should have more flexibility to decide how they share their leave, and they accused Labour of holding on to outdated gender roles. Dusri aur kaha ja raha hai ki ek 41-year-old vyakti ko charge kiya gaya hai with 2 counts of murder and 1 count of attempted murder after 2 alag-alag incidents jo hai Auckland ke North Shore ilake se samne aaye hain. पुलिस ने कहा कि एट फर्स्ट दे वर कॉल्ड टू अ स्टैबिंग इंसिडेंट इन बर्गडेल जहां पर एक व्यक्ति को जख्मी हालत में पाया गया। वेलफेयर चेक किया गया एट अ सेकंड प्रॉपर्टी इन अ नियर बाय ग्लेनफील्ड लेटर जहां पर पता चला कि एक व्यक्ति और एक महिला जो है ये मृत पाए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि द विक्टिम्स एंड द अक्यूज्ड वर नोन टू ईच अदर और फिलहाल इस मामले की जांच जो है ये चल रही है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि देयर इज नो ऑनगोइंग रिस्क टू द पब्लिक। खेलकूद की खबरों में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड स्विमर लिविस क्लेबर्ट जो है इन्होंने क्लेम किया है अपना सेकंड गोल्ड मेडल एट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स कल, जिसके चलते क्लेबर्ट ने बताया है कि he successfully defended his 400 meter individual medley title just a day after retraining his 200 meter butterfly crown. ये बैक टू बैक विक्ट्रीज उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं एंड ही हैज़ वन ऑफ न्यूजीलैंड स्टैंड आउट परफॉर्मर्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हैपनिंग एट ग्लासगो। ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजोरस मनको। इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे luxury living. Hum. Accurate traffic.
3: Mariton Mega Botany Trade.
4: Rain tonight, but should stay fine until then. 17-hour high. Coming into the city, Southern Motorway, 40 minutes, Manukau to town now, over an hour from Drury. We're slow from Papakura all the way in. Heavy patches are building. Northwestern, 36 minutes, Massey to town, slow all the way from Upper Harbour with heavy patches on and off. Northern, 26 in from Constellation, 50 from Silverdale. Heavy Constellation to Sunnynook, slow to the bridge.
3: Mariton Mega Botany Trade event Saturday. Stock up on great deals and meet the suppliers.
5: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off cabbage.
6: Ooh, yuck.
5: Joining a company with a pyramid-shaped structure. Ordering Happy Meals as an adult. Celebrating your anniversary in the food court. Selling your clean urine to competitive cyclists. DIYing, side hustling, catfishing, cold showering, couch surfing, foraging, freeloading, or joining a thruple.
7: How's it? I'm Dennis.
5: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
10: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
9: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
11: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings, like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Marikau and Pokekohe, celebrating 36 years of great sleep.
12: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
13: IKEA.
14: The beat of Bollywood.
15: World's best. Hamari good brands bhi hai. Wow.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
1: चलिए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करने का समय हो रहा है और आज है 30th of July. अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको अगर आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. देयर सो मेनी पीपल सेलिब्रेटिंग देयर स्पेशल डे टुडे. सबसे पहले तो आज अंजनी प्रसाद आपको हम अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं. आज आपके जन्मदिन के मौके पर क्राइस्ट चर्च में आप हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आपके पति हैं, साथ में आपकी प्यारी सी बेटी हैं और आपके जितने भी परिवार वाले हैं, सभी की ओर से स्पेशल प्यार एंड बेस्ट विशेज आज आपके जन्मदिन के मौके पर. साथ ही साथ आज निकिता आपका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, बट स्पेशल लव एंड बेस्ट विशेस आपकी बहन प्रिया की ओर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं. इन्होंने कहा, वांट टू विश माय डार्लिंग सिस्टर निकिता अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे, सेलिब्रेटिंग हर स्पेशल बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम योर लविंग फैमिली. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. एंड इफ यू आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे ऑन द 30th of July, हमारी हम टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू.

राहत फतेह अली खान की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत ये गाना आप सुन रहे थे। आज आपके लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में हमने इसे शामिल किया। फिलहाल चलिए हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। हमने कहा था आपको बताएंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग एनकाउंटर के बारे में जो कि हुआ बिटवीन उबर ड्राइवर और साथ में हिज पैसेंजर। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया की ये कहानी है और ये दरअसल वहाँ के लोकल न्यूज चैनल ने भी रिपोर्ट किया। बट बिफोर डूइंग दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो जो उबर ड्राइवर जो इन्होंने शेयर किया इट वेंट वायरल। नाउ इंटरेस्टिंगली बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है उबर ड्राइव करते हैं जिनका नाम मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रदीप सिंह बताया गया है। प्रदीप जो है ही वॉज सिंपली शॉक्ड जब उन्होंने एक नाइट उबर ड्राइव करते हुए दिस वीक अपने पैसेंजर के चेहरे पर ध्यान दिया। टू हिज सरप्राइज ही वॉज नन अदर देन वन ऑफ हीज फेवरेट एक्टर यानी प्रदीप सिंह के फेवरेट एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ। यस यू हर्ड दैट राइट। अगर आपको पता है कि थो कौन है तो आपको पता होगा क्रिस हेम्सवर्थ कौन है। और जब इन्होंने क्रिस हेम्सवर्थ को अपनी गाड़ी में पैसेंजर सीट पे बैठे हुए देखा ही वॉज जस्ट सो डिलाइटेड। इन्होंने बहुत से फोटोज भी शेयर किए अपने इस यू नो वीडियो के तहत जहाँ पर नॉट जस्ट दिस एनकाउंटर लेकिन इससे पहले कई बार उन्होंने क्रिस को मिलने की कोशिश की। कैप्चर्ड सम सेल्फीज विद क्रिस स्टैंडिंग फार अवे। लेकिन इस बार प्रदीप को मौका मिला उनके बाजू में बैठकर उनसे बातें करने की। नॉट जस्ट दैट इट शोड कि क्रिस हेम्सवर्थ कितने डाउन टू अर्थ एक्टर भी है क्योंकि इन्होंने बड़े प्यार से प्रदीप के उबर राइड की तारीफ की। मतलब कि बहुत अच्छे ड्राइवर है, बहुत कमाल का स्मूद राइड था, एंजॉयड माई ड्राइव विद प्रदीप एंड इट वॉज सच एन अमेजिंग ब्यूटिफुल वीडियो टू सी। जैसे ही प्रदीप ने ये वीडियो इंटरनेट पर डाला दैट वीडियो वेंट वायरल और लोकल न्यूज चैनल ने भी उसे रिपोर्ट करने की शुरुआत जो है ये कर दी। बट आई मस्ट से ना कुछ लोग होते ऐसे लकी हैं कि ऐसे

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और फिलहाल मॉर्निंग मैडनेस जारी है। नाउ थ्रोबैक से पहले खबर और आपके लिए हम जबकि लेकर आए हैं, ये आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। अपेरेंटली इफ यू हैव बीन फीलिंग लाइक कि आप और आपके आसपास हर किसी को सर्दी खांसी हो रही है, तो आप ये चीज इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये असल में हो रहा है। आई थॉट मेरे आसपास तो हो रहा है भाई, एनीवन आई नो इज गेटिंग सिक, एवरीवन आई नो हैज फॉलन सिक, ऐसा लग रहा है एंड आई एम एक्चुअली इन दैट स्टेट राइट नाउ। खांसी तो इतनी आती है कि सीने में जलन और दर्द ये सब कुछ होता है एंड इट्स सच अ बैड बैड कॉफ। बट एनीवेज कहा जा रहा है आरएनजेड के एक रिपोर्ट के अनुसार कि विंटर बग्स आर मेकिंग द राउंड्स अक्रॉस न्यूजीलैंड, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लू सीजन अभी तक अपने पीक पर पहुंचा ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी हेल्थ के जो मॉड्यूलर है इन्होंने कहा है कि वी आर इन द मिडल ऑफ द यूजुअल विंटर वायरस सीजन, लेकिन इन्फ्लुएंजा केसेस आर स्टिल सरप्राइजिंगली लो। दैट कुड मीन कि या तो हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ स्मॉलर फ्लू सीजन दिस ईयर, या फिर मोर लाइकली अ लेटर वन, जहां पर जब बाद में ये होगा विच इज समवट अराउंड नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इट विल रीच इट्स पीक। At the moment, RSV is believed to be at its peak, जबकि COVID-19 numbers remain low, लेकिन एक waste water monitoring के हिसाब से जो hospital data में ये बातें सामने आई है, ये चीजें कही जा रही है। There are also plenty of other viruses जिसकी वजह से सर्दी खांसी sore throat जुकाम ये सारी चीजें लोग experience कर रहे हैं। कहा गया है कि doctors say it's not too late to get your flu jab, especially अगर flu season जो है arrives later than expected। ये जो वैक्सीन है इट्स फ्री फॉर पीपल ओवर 65 years, दोज जिनको सर्टन हेल्थ कंडीशंस है, वाइल अदर्स कैन यूजुअली गेट वैक्सीनेटेड फॉर अराउंड $25, बहुत से फार्मेसीज में अवेलेबल है और स्कूल्स आर ऑलरेडी फीलिंग द इम्पैक्ट क्योंकि बहुत से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है एंड सम स्कूल्स हैव रिपोर्टेड अप टू हाफ अ क्लास बीइंग एब्सेंट ऑन अ सर्टन डे, जबकि टीचर्स जो है इनकी भी तबीयत खराब

वो रही फोर्सिंग द प्रिंसिपल्स ताकि वो क्लासेस को कंबाइन करें या फिर यू नो खुद किसी क्लासरूम में जाकर क्लास ले ताकि टीचर्स की कमी को फिलअप किया जा सके. बिजनेसेस हाउएवर हैवन्ट सीन वाइड स्प्रेड डिसरप्शन अभी तक, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है ये रिमाइंड कर रहे स्टाफ को ऑफ वन इम्पोर्टेंट लेसन जो उन्होंने कोविड के दौरान सीखा था, विच इज इफ यू आर सिक स्टे होम. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स इज टू स्टे होम. जब आपकी तबीयत खराब हो, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड कीप योर वैक्सीनेशंस अप टू डेट. सो अभी अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई तबीयत खराब है, सभी बीमार पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स शायद वी आर नॉट इवन रीच्ड, आई मीन वी हैवंट रीच्ड द पीक ऑफ दिस फ्लू सीजन एज येट.

0: Career Update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: पिछले कुछ दिनों से सुबह बहुत ज्यादा ठंडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रात को भी सेम हाल, बट आज थोड़े चेंजेस क्योंकि ओवरनाइट टेम्परेचर 11 डिग्री तक बताया जा रहा है, जबकि हाई ऑफ 16 आज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर। मेनली फाइन वेदर रहेगा, लिटिल बिट ऑफ शावर्स अंटिल द आफ्टरनून, सनसेट 5:35 PM पर आज होने को है।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा,
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून, एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेड्स Rust Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे आज का गूगल ट्रेंड आपको बता दें, बहुत सी चीज़ें जो है ये ट्रेंड कर रही हैं, बट ग्लेनफील्ड ये शब्द जो है, मतलब ये एरिया जो है काफ़ी ट्रेंड किया गूगल पर एज फार एज न्यूजीलैंड इज कंसर्न। ब्रैडली वॉल्श ये नाम, रिचर्ड हैमंड ये नाम, जापान एथक्विक्स ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, बट आई थिंक समथिंग दैट हैज़ बिन ट्रेंडिंग क्वाइट अ लॉट इज़ वन पर्टिकुलर नेम विच इज़ जो हॉब्स ये नाम जो है न्यूजीलैंड में, आई एम सेइंग ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। और जो हॉब्स जिनके बारे में हम आपको बता दें, ये एक न्यूजीलैंड ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर है जो 60 मीटर्स, 100 मीटर्स और 200 मीटर्स रन के दौरान कम्पीट करती हैं, एंड शी इज़ द ओशनियन इंडोर रिकॉर्ड होल्डर फॉर द 60 मीटर एंड द ओशनियन रिकॉर्ड होल्डर फॉर द 100 मीटर रन। मेरे ख्याल से दैट्स हाउ हर नेम इज प्रोनाउंस, जो हॉब्स जो है वॉज द फर्स्ट ओशनियन वुमन टू ब्रेक द 11-second बैरियर इन द 100 मीटर रन एज वेल। और फिलहाल ये ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक यस्टरडे शी वॉन द 100 मीटर रेस दैट शी टुक पार्ट इन, गोल्ड जो है ये इन्होंने इस रेस में जीता। सो ये नाम जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है एज फार एज गूगल ट्रेंड्स आर कंसर्न इन न्यूजीलैंड, एंड फॉर द राइट रीजन्स आई वुड से। बट ऑन दी अदर हैंड और भी ऐसे बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे इस घंटे भी। फिलहाल रश आवर की शुरुआत आपके साथ हो रही है, व्हाट्स योर टेक थोड़ी देर बाद आपके लिए ऑन हम जरूर हम लेकर आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट।

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: हो गई इंतजार की
2: हम। Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
4: अपने घर को रेडी कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sale event today till Sunday.
8: There's thousands of display models, scratch and dent, and end of line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
7: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsarras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: चलिए आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं, लेकिन टॉपिक जो है ये डायरेक्टली आपसे पूछने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि कीवी क्लॉथिंग ब्रांड है जिन्होंने ये कहा कि फास्ट फैशन कंपनीज जो है ये उनके डिज़ाइंस को कॉपी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। सम न्यूजीलैंड क्लॉथिंग ब्रांड्स है दैट दे आर टायर्ड ऑफ बिग ओवरसीज फास्ट फैशन कंपनीज कॉपिंग देयर डिज़ाइंस और उनके फोटोज़ का इस्तेमाल करना टू सेल चीपर वर्जन्स ऑनलाइन। लोकल ब्रांड रूबी जो है उन्होंने कहा है कि सम ऑफ इट्स क्लॉथिंग डिजाइंस अपीयर्ड ऑन अली एक्सप्रेस बिना उनके परमिशन के। द कंपनी मैनेज टू गेट द कॉपीड लिस्टिंग्स रिमूव्ड, लेकिन वो कह रहे हैं कि इट वाज अपसेटिंग टू सी इट्स क्रिएटिव वर्क यूज्ड बाय अ मच बिगर कंपनी। अनदर कीवी ब्रांड फ्राइडे फ्लेमिंगो, इन्होंने कहा है कि दे फाउंड वन ऑफ इट्स ड्रेसेस कॉपीड एंड सोल्ड ऑन शीन। द ओनर सेड द कॉपी लुक्ड सिमिलर बट द क्वालिटी वाज मच चीपर। फैशन इंडस्ट्री लीडर्स कह रहे हैं कि कुछ स्मॉल न्यूजीलैंड बिजनेसेस हैं जिन्हें स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिकॉज दे ऑफन कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव लीगल बैटल्स अगेंस्ट लार्ज इंटरनेशनल कंपनीज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ डिजाइन प्रोटेक्टेड है बाय कॉपीराइट लॉज, बट इट कैन बी डिफिकल्ट टू प्रूव जब कोई कंपनी जो इनकी डिजाइन को कॉपी करती है। दे आर कॉलिंग फॉर अ टफर रूल एंड बेटर मॉनिटरिंग ऑफ फास्ट फैशन वेबसाइट्स ताकि लोकल डिजाइनर्स को और उनके हार्डवर्क को प्रोटेक्ट किया जा सके। वेल ये पूरी की पूरी आर्टिकल RNZ पर अवेलेबल है, एंड इफ यू विश टू रीड इट थरली तो आपको समझ में आएगा व्हाट्स हैपनिंग इन रिगार्ड्स विद दिस। बट व्हेन इट कम्स टू यू नो डिजाइनर आउटफिट्स या फिर ब्रांडेड क्लॉथिंग लाइंस एंड ऑफ कोर्स फास्ट फैशन जो हम बोलते हैं क्लॉथिंग लाइंस, इसके बारे में अगर हम बातें करें, आज का हमारा टॉपिक यही है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बस हमें ये बताना है दैट व्हाट इज योर प्रेफरेंस, आपकी चॉइस क्या है, व्हाट यू प्रिफर स्पेंडिंग मनी ऑन। डिजाइनर क्लोथिंग लाइंस, डिजाइनर आउटफिट्स, या फिर जो फास्ट फैशन क्लोथिंग लाइन होता है, आप उस पर स्पेंड करना प्रेफर करते हैं? व्हाट डू यू प्रेफर स्पेंडिंग योर मनी ऑन? एंड व्हाट एवर योर टेक इज ऑन टुडेज टॉपिक, आप हमारे पास अपने आंसर्स जो है ये 5599 पर जरूर मैसेज कीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इफ यू आर डूइंग इट ऑन डिजाइनर क्लोथ्स इट्स रॉन्ग, इफ यू डूइंग इट ऑन फास्ट फैशन क्लोथ्स इट्स रॉन्ग, इट्स बेसिकली योर चॉइस, बट व्हाई यू प्रिफर डूइंग दैट, अगर वो भी आप हमें बता सके। एंड लेट्स डू वन थिंग, आज अपने नाम मत बताइएगा, यू जस्ट सेंड इन योर व्यूज, योर टेक ऑन द टॉपिक टुडे, ठीक है? यू डोंट हैव टू रिवील योर आइडेंटिटी, जस्ट लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ द टॉपिक टुडे, और क्या है आपकी राय दैट यू'ड लाइक टू शेयर विद अस टुडे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
9: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
11: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम।
9: ब्रॉट टू यू बाय इनडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दिस इज द रश आवर। सुनिधि चौहान और अमित त्रिवेदी को आप सुन रहे थे आज के हमारे चार्ट बस्टर हिट में। उम्मीद है यू हैव एंजॉयड इट, बट लेट मी रिमाइंड यू कि आज है थर्सडे 30th of July, टुमारो इज फ्राइडे 31st of July, एंड सैटरडे से एक नए महीने की शुरुआत जो है ये जरूर होगी। अ स्पेशल मंथ फॉर प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी है, समथिंग वेरी बिग आप अचीव करने वाले इस महीने में। पर आज के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत जरूरी दिन है ये, क्योंकि आज प्रिफर्ड डे माना जाता है टू फ्यूल अप। बहुत सी सर्विस स्टेशन आपको बहुत बढ़िया डील्स ऑफर करते हैं, कम प्राइस ऑफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू फिलिंग अप योर कार्स। सो मेक श्योर यू डू दैट, टुडे इज द डे, समय निकाल कर फिल अप कर लीजिएगा। नजदीकी गैस स्टेशन जो है यहाँ पर सर्विस स्टेशन जो है चेकआउट कीजिए, क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं वो आपके प्रिफर्ड फ्यूल के ऊपर, क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं, एंड देन फिल अप, डू योर रिसर्च। एंड गैस पे के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना, GASPY और गैस पाए, आई डोंट रियली नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्योंकि एक ऐसा ऐप है जिस पर सारे जो सर्विस स्टेशन है आस पास के ये आपको मिल जाते हैं, और वो क्या कुछ दाम ऑफर कर रहे होते हैं फ्यूल पर, ये वहाँ पर अपडेटेड होता है। दैट यू कैन check and you can go to the nearest one and fill up to save some money. Bahut zaruri hai bhai, pata nahi kab jaakar fuel prices jo hai ye normal ho ya at least kam ho, but till then make the most of today.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Chup ho jao papi ho, chup ho jao.
3: Accurate traffic.
4: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
5: Fine today, rain tonight, a high of 17. Into the city, Northern Motorway, 30 minutes from Constellation Drive, 50 Silverdale to town. Very heavy at Silverdale, heavy gravel to Milford and then slow to the bridge. Northwestern, 46, Massey to the city, heavy Upper Harbour to Point Chef, then slow from there. Upper Harbour, both ways it's quite slow. Southern, 48 in from Manukau, gets heavy from Otahuhu. Southwestern, heavy northbound through Whitty.
4: Curbed your wheel, restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
6: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
7: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
8: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
8: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: तो आज के हमारे व्हाट्सएप टेक टॉपिक के लिए कई मैसेजेस आए। इन्होंने कहा, डेफिनेटली फास्ट फैशन फॉर मी, ट्रेंड्स चेंज सो क्विकली, आई डोंट वांट टू स्पेंड हंड्रेड्स ऑन समथिंग, आई विल ओनली वेयर अ फ्यू टाइम्स, आईड रादर हैव 10 आउटफिट्स देन वन एक्सपेंसिव जैकेट, ये किसी ने कहा है। डिजाइनर ऑल द वे, अ गुड क्वालिटी हैंडबैग और जैकेट कैन लास्ट इयर्स, आईड रादर बाय लेस बट बाय बेटर, ये किसी ने लिखा है। We've got one more message, उन्होंने कहा है, डिजाइनर क्लोथिंग लुक्स अमेजिंग बट माई मॉर्गेज डजंट अग्री। गिव मी अ गुड सेल एनी डे एंड आई गो फॉर इट. ये किसी ने मैसेज किया है. सो यू हैव गॉट डिफरेंट यू नो व्यूज योर टेक्स ऑन द टॉपिक टुडे जो आज आपके लिए हम लेकर आए थे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद मी ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अगर आप 104.2 FM पर हमें सुन रहे हैं या रोवा ऐप के जरिए हमारे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए. थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बेहतरीन मौका हम आपको देंगे हमारे साथ जुड़कर करण औजला के होने वाले पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के लिए एक डबल पास जीतने का, जो कि यहाँ न्यूजीलैंड में होने जा रहा है ऑन द 25th ऑफ अगस्त एट स्पार्क अरेना. क्या करना है इसके लिए जानना है जो अगर आपको, तो बस सुनते रहिएगा द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.

तो मैंने कहा था ना कि अगर आपको भी हिस्सा बनना है करण औजला का पीपअप कल्चर वर्ल्ड टूर, जबकि ये होने वाला है, और इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज, आपको बस हमारे साथ बने रहना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आप कीजिए एक आसान सी छोटी सी सिंपल सी चीज, एंड देन यू कैन विन योर सेल्फ अ डबल पास टू गो एंड वॉच नन अदर देन करण औजला। लेकिन ये करने से पहले, मतलब इसकी डिटेल्स आपके नाम करने से पहले, मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास मौका है, आप अपने लिए पासेस जो है ये खरीद सकते हैं। इफ़ यू आर अ बिग ग्रुप गोइंग टू वॉच करण औजला, विश टू वॉच करण औजला, क्योंकि 25 अगस्त को स्पार्क अरेना में ये होने वाला है इनके पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत, और इनके साथ एक स्पेशल गेस्ट इकी ये भी आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स, अमेजिंग इनक्रेडिबल एनर्जी, इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस जो स्टेज पर आप इंजॉय कर सकेंगे अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी टिकट्स लीजिए, क्योंकि ये इकलौता शो है जो यहाँ होने जा रहा है पूरे न्यूजीलैंड में, सिर्फ ऑकलैंड में, ऑन द 25 अगस्त को एट स्पार्क अरेना। एक ही शो, और अगर आपने ये मिस कर दिया तो अगले दिन इसके रिव्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे लोगों से हाउ अमेजिंग इट वाज, एंड देन आपको भी फोमो होगा, विच आई डोंट रियली वांट। सो hum.rover.nz विजिट करें डिटेल्स के लिए, या livenation.co.nz फर्दर जानकारियाँ हासिल करने के लिए। अगर आपको पास जीतना है तो अभी हम आपको दे रहे हैं अगले गाने बजने तक का टाइम, विच इज़ अराउंड 5 मिनट्स 6 मिनट्स। तब तक का टाइम है कै आई लिखना है आपको सबसे पहले, यानी करण औजला के नाम का शॉर्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में आपको लिखना है अपना नाम और बताना है इस सवाल का सही जवाब। करण औजला तो इनका स्टेज नेम है, इस नाम से बहुत जाने जाते हैं, पर जब इनकी पैदाइश हुई थी 18th of January 1997 को, तो इनको एक नाम दिया गया था। इनका नाम क्या है ये आपको बताना है, करण औजला इनका असल नाम क्या है ये आज आप हमारे पास टेक्स्ट कीजिए, KA space your answer your name 5599 पर, टू बी पार्ट ऑफ अ ड्रॉ टू विन अ डबल पास टू करण औजला का पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो होने जा रहे 25 अगस्त को इसके लिए।

0: accurate traffic.
1: New tasty rise bars and bites.
2: A high of 17, fine today until we get rain in the evening. Coming into the city, Southern Motorway, 48 minutes, Manukau to town. We're just slow in patches to Manukau, then heavy on and off there to Remuera. Northwestern, 38 minutes, Massey to the city. Heavy patches from Massey on and off to the CBD. Upper Harbour, slow both ways but easing. Northern, 26 in from Constellation, heavy patches from Greville.
1: New tasty rise, low carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
3: Petrol aur diesel ke badhte daam se pareshan hai. To iska jawab hai, Takanini Auto Group ke EV aur hybrid supersite. Brand new EV sirf 29,990 se shuru, 7 saal ki warranty ke saath. SUV hybrids, 4-wheel drives, performance EVs aur used vehicles ki zabardast range bhi available hai. Visit Takanini Auto Group, 170 Great South Road, Takanini. Trade-ins or finance options available. Fees, Cs, Ds and credit criteria apply. Takanini Auto Group, 170 Great South Road, Takanini.
4: Good news, tradies. This Saturday, Micro 10 Mega Botany IA for a free sausage, supplier demos on site or giveaways. Range, convenience or aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Micro 10 Mega Botany.
5: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sale event today till Sunday.
6: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
5: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
7: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
8: Kyun? Kya hua?
7: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Fir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
4: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800 564 424.
9: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
10: We've got double glazing.
9: Have you still got that cold, damp feeling?
11: Yeah, we do.
9: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
12: Good morning, is Amitik Nobajre here, and it's time for News and Sports Update.
13: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The Education Review Office wants a national framework around AI use in schools. Spokesperson David Ferguson says guidance from NZQA and the ministry just isn't enough.
15: Around 80% of teachers are using it, mainly for planning and preparing and getting resources ready, and then approximately 75% of students.
14: Auckland's Watercare is throwing $15 billion at ageing infrastructure and new projects. This includes a bigger supply from Waikato River. It says the region is dealing with decades of underinvestment while continuing to grow. It says the program will deliver significant employment and economic benefits. The Greyhound Transition Agency is confident they have a robust plan in place for when racing winds up after 78 years. Chief Executive Christine Bennett says they take responsibility for the dogs from Saturday.
16: We're expecting between 1,300 and 1,400 greyhounds will begin their new lives as pets through us.
14: Winston Peters believes a ban on the public sale of fireworks will happen. The government refused a petitions committee request to implement one yesterday, but the New Zealand First Leader says he will get the government's support.
17: When we get control of them, and their hearts and minds will soon follow.
14: In sport, one medal for New Zealand as day 6 of the Commonwealth Games in Glasgow comes to a close. The women's 3x3 basketball team beating Jamaica for bronze. And Dame Lydia Ko's taken inspiration from Ryan Fox as she looks to win the Women's Open Golf Major for a second time.
18: It'd be cool to channel my inner Foxy, you know, his fearlessness out there for me these next few days.
14: Ko tees off just after 7:30 tonight.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best, hamari koi branch nahi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: आज वैसे मौसम के बारे में कहा गया मेनली फाइन वेदर रहने वाला है, बट थोड़ी बहुत बारिश इन पार्ट्स ऑफ ऑकलैंड आज शाम तक होगी जरूर। सनसेट होगा 5:35 PM पर और ओवरनाइट टेम्परेचर जबकि 11 डिग्रीज तक रहने वाला है। लेटर टुडे अराउंड 16 डिग्रीज हाईएस्ट टेम्परेचर जो है आज रिकॉर्ड किया जा सकता है।
13: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको। इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या बकते हो?
0: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। क्या बकते हो तो आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले पिछले घंटे हमने मौका भी आपको दिया था ना बताने का कि करण औजला इनका जो रियल नेम क्या है, बर्थ नेम बेसिकली। करण औजला तो इनका स्टेज नेम है और अगर आपने सही जवाब दिया तो ड्रो में आपका नाम शामिल करेंगे फॉर अ चांस फॉर यू टू विन अ डबल पास टू इनके पीप ऑफ कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत इनका शो जो ऑकलैंड में होने जा रहा है स्पार्क अरेना 25 अगस्त को। सो जितने भी लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। जस्ट करण सिंह औजला इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का हमारा क्या वक्त हो स्टोरी, नाउ दिस स्टोरी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जो है यहाँ के शहर से। और ये जो घटना है मेरे ख्याल से ये इसी साल मई महीने में हुई, जिसके बारे में काफ़ी बातें जो ये हो रही है और इंटरनेट पर तो आपको पता है ना चीज़ें रहती हैं, दैट दे रीच यू एट अ सर्टेन टाइम। सो अपेरेंटली एक ब्रास के बिजनेसमैन है मुरादाबाद के, जिनके घर से करीबन 1.2 करोड़ की चोरी जो है ये हुई, 1.2 करोड़ रुपीस कैश में और गोल्ड ज्वेलरी जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट वर्थ ये चोरी हुई। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली इनके घर से चोरी होने की और इनको पता चला तो इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी जाँच पड़ताल की और ये बात सामने आई कि ये जो चोरी है सिर्फ अननोन चोरों का नहीं लेकिन कोई इनसाइड जॉब हो सकता है, बिकॉज द अटैकर्स allegedly had information about the house और कैसे इस घर में एंटर करना है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया, एक चार्जशीट जो है ये तैयार की जिसमें 10 अक्यूज जो है ये सामने आए हैं, जिसमें फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंस जो है ये भी कलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये जो मामला है ये कोर्ट में गया और एलिगेशंस जो है दे हैव नॉट येट बीन प्रूव और फाइनल जजमेंट अभी भी बाकी है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो पूरी की पूरी चार्जशीट तैयार की गई थी या फिर जो चोर जो है इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, इनमें जैसे कि पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि ये सस्पेक्टेड इनसाइड जॉब हो सकता है, ये जो बिजनेसमैन है उनकी खुद की बेटी इनका नाम सामने आया है और उसके साथ साथ उनके बॉयफ्रेंड का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि इनकी बेटी ने ये चोरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अमीर बना सके, खुद के घर में चोरी अपने बॉयफ्रेंड को अमीर बनाने के लिए। क्या दुनिया है भाई, हुआ ना आपका भी क्या बकते हो।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: चलिए देखते हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ इवेंट्स आज हो रहे हैं। सबसे पहले ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है ये होगा इसी फ्राइडे को एट 7:15 PM एट ARST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में। और आपको हम याद दिला दें कि अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं डिटेल्स के लिए आप 02267052 71 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी ओर श्री राम मंदिर 11 Bridge Street हेंडरसन यहाँ पर अखंड रामायण पाठ होने को है सैटरडे 1st and Sunday 2nd of August को। सैटरडे 1st को यहाँ पर सुबह 7 बजे से रोड पूजा होगी, जिसके बाद संडे दिन में 10:30 बजे हवन और आरती के साथ ये पूजा समाप्त होगी। अगर इसमें भाग लेना है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, डिटेल्स के लिए 836-4647 पर आप कॉल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री रामलीला। और जितने भी लोग इसमें हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं आपको हम याद दिला दें कि ये सोल्ड आउट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर अपनी स्टॉल वगैरह जो है ये रखनी है, इससे जुड़ी इंक्वायरीज करनी है, तो आप मास्टर अशोक को कॉल कर सकते हैं 02117954 59 पर। और ये याद रहे अगले 8th of August को जो है ये होने जा रहा है। मेघ उत्सव ये रहेगा 8th of August को माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल पर 4:30 PM to 8:30 PM। एंट्रीज एब्सोल्युटली फ्री। और भारत में जो मॉनसून फेस्टिवल मनाया जाता है उसका एक बहुत ही वाइब्रेंट सेलिब्रेशन यहाँ ऑकलैंड पहुँच चुका है मेघ उत्सव के तहत। कल्चरल परफॉर्मेंसेस जिसमें ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक तो रहेगा ही, लेकिन बहुत सारे खाने पीने के ऑथेंटिक इंडियन फूड स्टॉल्स जो है ये आप चेकआउट कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक किड्स कोना है और हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर गेम्स एंड एक्टिविटीज़ होंगे इन विच यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू नो विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस टू। तो ये 8th of August को माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल में रहेगा 4:30 to 8:30 PM। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इन्वाइट कर रहे हैं अपनी 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट के लिए 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त को बेकनहेड स्काउट्स हॉल में ये होने जा रहा है। अगर किसी भी लेवल के स्किल प्लेयर हैं आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। विजिट करें न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज या फिर आप NZCA के जो प्रेसिडेंट हैं पंकज मोगा इनको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं 02109085067 पर। और साथ ही साथ चिन्मय मिशन आपको इनवाइट कर रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ भागवत गीता डीकोडेड मास्टर क्लास जो एब्सोल्युटली फ्री टू अटेंड है, लेकिन आपको रजिस्टर करना होगा टू पार्टिसिपेट। और फ्राइडे 7th अगस्त को 7:30 PM to 9 PM ये रहेगा न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल में एट 45 Totara Avenue इन न्यू लिन। तो आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं इनसे जुड़े डिटेल्स आप अन्य लोगों तक जरूर पहुंचा सकते हैं बाय सेंडिंग इट टू अस on buzz@hamfm.com, buzz@hamfm.com पर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो हम आ गए।
5: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: सुपर सिटी ऑकलैंड में आपके लिए क्या कुछ हो रहा है व्हाट्सएप ऑकलैंड में, हमने डिटेल्स तो शेयर किए लेकिन एक जरूरी चीज के बारे में तो बताना ही भूल गए कि इसी सैटरडे को आ रहे हैं अपना गरबा वाइब लेकर नन अदर देन राज गढ़वी लाइव इन ऑकलैंड, ये होने जा रहा है. सो यू कैन डांस द नाइट अवे एंड एंजॉय द गरबा वाइब और अ नाइट ऑफ डांस म्यूजिक सेलिब्रेशन सब कुछ आपके लिए रहेगा बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी के साथ. यू विल गेट टू सेलिब्रेट द रिच कल्चर. और गरबा अगर कभी नहीं खेला आपने तो एक बार तो बनता है लाइफ में, ट्राई तो करके देखो, बहुत मजा आता है. एंड इफ यू वांट टू एंजॉय दिस तो बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग राज गढ़वी लाइव इन ऑकलैंड दिस सैटरडे महात्मा गांधी सेंटर पर यानी 1st of August को ये होने वाला है. ऑल थैंक्स टू लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट्स न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशंस ऑफ दिस ईयर द सेंसेशनल राज गढ़वी के साथ. टिकट्स eventstickets.co.nz remember eventstickets.co.nz से आप ले सकते हैं. और अगर डिटेल चाहिए तो स्वप्निल शाह को 022-439-4736 पर जरूर कॉल कीजिएगा.
0: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सो बॉलीवुड से जुड़ी बहुत सी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आज थर्सडे 30th of July एक और स्पेशल डेट है क्योंकि एक यू नो अनाउंसमेंट जो है ये कल हुआ जहां पर आज के इस दिन के बारे में बताया गया था. वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ दिस ईयर रामायणा फाइनली इसका पहला ग्लिम्स आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कहा है कि फिल्म का जो ट्रेलर है ये रिलीज होगा वर्ल्ड वाइड ऑन थर्सडे 30th of July 4:15 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जब भारत में सुबह के 15 मिनट हो जाएंगे 4 बजकर तो तब जाकर ये ट्रेलर जो है दुनिया भर में लॉन्च होगा. विच इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो यहाँ न्यूजीलैंड में आज करीबन जब 15 मिनट बाकी रहेंगे 11 बजने में तब मतलब माई टाइम के दौरान तो लॉन्च हो ही जाएगा तो आपको ये देखने का मौका मिल सकता है लेटर टुडे. पर याद रहे कि ये जो ट्रेलर है द मेकर्स हैव चोजन द ब्रह्म मुहूर्त एक टाइम जिसे कंसिडर किया जाता है बहुत ही स्पिरिचुअल और सिग्निफिकेंट फॉर द हिंदूज और ब्रह्म मुहूर्त जो है इसके बारे में शायद आपको पता होगा और ये ट्रेलर लॉन्च इसी वजह से इस समय पर किया जा रहा है. अनाउंसमेंट जो है पोस्टर का द डॉन ऑफ रामायणा ये किया गया मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इस फिल्म का जो प्रमोशनल जर्नी और ये जो एपिक माइथोलॉजिकल फिल्म है इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट ऑडियंसिस के बीच में क्रिएट हुआ है एंड एवरीवन इज eager to see this legendary story you know being brought to life on the big screen. Trailer is releasing and is expected to release like a major event jabki duniya bhar ke fans iska pehla look jo hai bahut hi ambitiously kar rahe hain matlab eagerly kar rahe hain. तो आज लेटर टुडे आपको भी मौका मिलेगा इस रामायणा का जो ट्रेलर है ये देखने का जिसे नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड नितेश तिवारी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं. सो लेट्स सी क्या कुछ जो है इस ट्रेलर से आपको देखने को मिलता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको और भी ज़्यादा एक्साइट जो है ये करेंगी.
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. So as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
2: Show us your crack.
3: Ah, Novus!
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
7: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
8: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
9: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Kukar 50-inch smart TVs, $499. Vogue black glass wall ovens, $349. 60-centimetre black range hoods, $79. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
11: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: What's going on?
14: चलिए आज की डेली राउंडअप की बारी जो है ये आई है, और आज का डेली राउंडअप आपके लिए सबसे पहले फीफा, जिसके बारे में कहा जा रहा है दे फेसिंग अ बैकलैश ओवर प्लान टू सेल पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप बिजनेस। फीफा जो है ये प्लान कर रहे हैं टू सेल अ स्मॉल शेयर ऑफ इट्स बिजनेस लिंक्ड टू द वर्ल्ड कप एंड अदर फुटबॉल टूर्नामेंट्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और फुटबॉल बॉडी जो है इनका कहना है कि इट विल क्रिएट अ न्यू कंपनी कॉल्ड फीफा फोर्ड एंटरप्राइज, और वो होप कर रहे हैं टू रेज अराउंड US$4.2 billion। फीफा ने कहा है कि मनी विल हेल्प सपोर्ट फुटबॉल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ये जो प्लान है इट हैज कॉज्ड कॉन्ट्रोवर्सी। क्रिटिक्स का कहना है कि इंक्लूडिंग UEFA, फुटबॉल शुड नॉट बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स एंड दे आर वरिड कि अगर ऐसा हुआ हु कुड बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम द डील। फीफा का कहना है इट विल कीप It will still keep control over important decisions जिनमें tournament rules and football governance जो है ये शामिल है और ये जो plan है it needs approval before it can go ahead. Supporters का कहना it could bring more money into football जबकि critics का डर है कि it could give business to more too much influence over sport. So let's see finally क्या कुछ decide होता है इस मामले में और क्या कुछ बातें जो ये सामने आती है. Another update, Hawke's Bay की कंपनी है जो robots बना रही है ताकि वो help कर सके Apple Pack House को टू बिकम फास्टर एंड स्मार्टर. हॉक टेक्नोलॉजी जो हेस्टिंग्स में बेस्ड है ये रोबोटिक एप्पल पैकर्स बना रहे हैं एंड देट आर नाउ बींग सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स जहां पर इसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. कंपनी का कहना है दे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 50 रोबोट्स इन वॉशिंगटन और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एप्पल ग्रोइंग रीजन्स और साथ ही साथ वो अनदर 250 मशीन्स ऑर्डर जो है ये उनको मिल चुका है जिस पर वो काम कर रहे हैं. The robots use AI cameras ताकि वो apples की quality check कर सके, defects spot कर सके और जो fruit trays में वो डाल रहे हैं क्या वो color और condition के हिसाब से सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें examine कर ही ऐसा करते हैं. तो इमेजिन US की एक कंपनी है जहाँ पर एप्पल पैकर्स रोबोट उनको चाहिए और इस वजह से न्यूजीलैंड में बैठी Hawke's Bay में एक कंपनी है जो उनके लिए रोबोट्स तैयार कर रही है. इंटरेस्टिंग isn't it? तो ये था आज का डेली राउंड अप और थोड़ी देर बाद आज का थ्रोबैक आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन उससे पहले लेट्स एंजॉय स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट.

0: Show with VJ and Pooja.
1: Tu bojao, papi.
0: Throwback.
2: चलिए अब तो जाने का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ और समय के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अब आपसे मुलाकात हम करेंगे कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। एंजॉय योर थर्सडे। बाकी का दिन आपका अच्छा बीते। सर्दियाँ अभी थोड़ी कम हो रही है ऐसा बोला जा रहा है, मतलब आज और कल के मिलान में या अर्लियर दिस वीक के मिलान में आज और कल थोड़ा बेहतर रहेगा, बट इट डजंट मीन कि आप एकदम लीनियंट हो जाए और भूल जाए कि यार अभी अपने आप को वार्म रखना है, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि फ्लू सीजन, बग सीजन, यू नो ये सारी चीज़ें चल रही है। इट इज़ मेकिंग एवरीवन सिक अराउंड यू। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर योर लव्ड वंस, बी हेल्थी, बी हैप्पी। और कल हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर। टेक केयर।

0: के घड़ी में वक्त हो रहा है जहाँ पर आप अपने समय मेरे समय के साथ जोड़ देते हैं, और जब ये वक्त का तकाजा है कि आप और हम मिलें, तो भाई कशिश फूड्स क्यों ना आपका साथ निभाएं इस बात में। तो कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए आ जाता है माय टाइम, जहाँ पर मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ जाती हूँ 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, कुछ ना कुछ आपसे ऐसी बातें करने जो शायद आप सोचते होंगे अरे वाह अच्छा ये मुझे पता था लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड शायद मुझे याद नहीं रहा। तो बच्चा ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। हम सब प्लेन में बैठे, हम सब हवाई जहाज़ में बैठ के आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसकी विंडोज़ स्क्वायर क्यों नहीं होती, इसकी विंडोज़ एलोंगेटेड क्यों नहीं होती, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होती, गोल ही क्यों होती हैं। अच्छा मैंने पता लगा लिया, आपके साथ वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, भाई ठंड थोड़ी थोड़ी कम हुई है, जो हालत हुई है ना सचमुच, ओह माय गॉड, डोंट आस्क, इट हैज़ बीन रियली पेनफुल ठंड। ओके चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, गाना बजाते हैं, ऑफिस शाउट आउट करेंगे और साथ साथ एक्सपर्ट स्टोरी होगी। कोई ड्रीम आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, एंड रेस्क्यू मी रिसाइकल में अगर कुछ आपके पास टिप है तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ।
1: बचाओ क्या,

0: Buds Adda.
1: तो इफ यू रिमेंबर, जब मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको आपसे कहा था दैट यू नो प्लेन जब हम जाते हैं तो एक एरोप्लेन में यू नो कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई नोटिस करना पड़ता है हमें, जैसे कि एयरप्लेन की जो विंडोज़ होती हैं मोस्टली हम लीन करते हैं उसके अगेंस्ट, माउंटेंस को, सिटीज़ को, क्लाउड्स को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं एंड थिंक हाउ डू दे एक्चुअली लुक लाइक. बट नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लाई कर रहे हो ना, यू नो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपके जो जैसे डोर्स हैं आपके फ्लाइट में, ओवरहेड बिन्स हैं, ट्रे टेबल्स हैं, विंडोज़, इनके एजेस शार्प नहीं होते. इंस्टेड हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट की जो विंडोज़ होती हैं वो स्मूथ और राउंडेड होती हैं. इट्स ईजी टू अज्यूम कि शायद ये डिज़ाइनर की चॉइस रही हो, बट इन रियलिटी इसमें कुछ इंजीनियरिंग डिसीशंस लिए गए थे और अब इसे अफोर्ड कर नहीं सकते आप कि इसको आप इग्नोर करें. सो द अर्लीस्ट पैसेंजर्स जो थे इनको कभी भी राउंडेड विंडोज ऐसे नहीं हुआ करती थी जो हम आज देख रहे हैं. नियरली वो स्क्वायर टाइप की विंडोज शायद हुआ करती होंगी, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग सीम टू बी फाइन जब तक ये एयरक्राफ्ट जो थे हाई ऑल्टीट्यूड पर नहीं चलना शुरू हुए थे. तब इंजीनियर ने डिस्कवर किया कि ये जो एयरप्लेन की जो बॉडी होती है उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं. हर जर्नी, जो भी आप जर्नी ले रहे हैं, आपको एक प्रेशराइजेशन, डीप्रेशराइज प्रेशराइजेशन का सिलसिला आपका चलता रहता है. यू नो वो जब आप ऑल्टीट्यूड्स पर होते हैं, हाइट्स पर होते हैं, क्या आपके साथ वो कान बंद होने शुरू हो जाते, कुछ होना. तो जब पैसेंजर्स जो है अंदर जो कैबिन में होते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं और कॉन्स्टेंटली इन चेंजेस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. मटेरियल्स जो हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते इस तरह की स्ट्रेस के साथ जब वो एक जगह पर होते हैं. स्क्वायर विंडोज जो होती हैं उसके कॉर्नर्स जो होते हैं नेचुरल प्रेशर पॉइंट्स के साथ साथ इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग के ये फोर्स जो है हो जाएगा तो कुछ छोटे छोटे एरियाज जो होते हैं वहाँ पे एक फटीग आने लग जाती है स्क्वायर विंडोज़ में. तो हो सकता है ओवर द टाइम वहाँ क्रैक आ जाए, वहाँ पे कुछ हो जाए. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस विच राउंड विंडोज आर देयर. और अगर आप देखते हैं फ्लाइट्स में माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स जो होते हैं दे कुड बी फॉर्मिंग जब ये वीक स्पॉट्स आने लग जाते हैं स्क्वायर जैसे रेक्टेंगल विंडोज़ ऑफ वो कहीं ना कहीं क्रैक, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आपको नज़र आने लग जाती हैं. तो इसे कहते हैं इंजीनियर्स स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. और जब आप फ्लाइट्स को या प्लेन्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स इन बातों का ध्यान ज़रूर रखते हैं और ये इशू जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट्स पहले हो चुके हैं 50s के दौरान जहाँ पे ये क्रैक्स जो डेवलप होने लगते थे और ये स्क्वायर विंडोज़ की ओपनिंग्स के साथ साथ. उससे क्या होता है एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती थी और कभी कभी कैटास्ट्रोफिक यू नो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कुछ एक्सीडेंटल, कुछ फेलियर्स, कुछ इस तरह की चीज़ें होने लग जाती थी. सो मैन्युफैक्चरर्स ने इसको रीवैल्यूएट किया, हर स्ट्रक्चर को चेक किया, जैसे एयरक्राफ्ट को पूरा यू नो डाइसेक्ट करते हैं, हर विंडो पैनल को चेक किया और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद इस स्ट्रेस से बचने का एक ये तरीका है. और इट वॉज विंडोज़ वॉज वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल प्लेसेस जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते थे. तो शार्प कॉर्नर्स को हटा के स्मूथ कर्व्स लेके एक मेजर प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो गई. तो हर राउंडेड शेप जो होती है जब आप देखते हैं उसके एजेस जो होते हैं उसकी एक ही लोकेशन होती है क्योंकि वो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली और ऐसे में जो मटेरियल का एक्सपीरियंस होता है वो इतना स्ट्रेन नहीं देता. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट्स अ सिंपल चेंज बट अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट. जहाँ मैं कहती हूँ ड्यूरेबिलिटी की बात करती हूँ, पैसेंजर्स कैजुअली इसको कहते हैं विंडो, बट ये देखा जाए तो बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड इंजीनियर थिंग है जिसमें मल्टीपल ट्रांसपेरेंट पैनल्स होते हैं. एक आउटर पैनल जो होता है उसमें एक प्रेशर अलग किस्म का होता है जो एक कैबिन और आउटसाइड एटमॉस्फेयर के बीच में होता है. इसके यू नो पास एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है. एक इनरमोस्ट पैनल जो होता है वो काफ़ी शील्डेड होता है ताकि वो एक्सीडेंटल नहीं हो जब आप कैबिन के अंदर होते हैं. काफ़ी ट्रैवलर्स जो होते हैं नोटिस करते होंगे एक छोटा सा टाइनी होल एट द बॉटम ऑफ द यू नो विंडो, एक बहुत छोटा सा टाइनी सा, ये जो छोटी सी ओपनिंग है ये हेल्प करती है बैलेंस करने के लिए प्रेशर जो लेयर्स होती हैं उसके लिए, और ये जो चांस है कंडेंसेशन का ये कम कर देती हैं। मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो होते हैं आजकल के, ये एडवांस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये पावरफुल कंप्यूटर्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और काफ़ी दिनों से ये चेंजेस जो हैं लेकर चले आते हैं। अब आप राउंडेड विंडोज़ को देखें, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है और ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल कभी बदलेगा नहीं। सो रिमेंबर, जब आप विंडोज़ के पास नेक्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो वो विंडोज़ कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा चलिए, ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है। एनीवन?
0: माय टाइम विद कशिका।
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoros, Manuka. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
7: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
8: IKEA.
9: It's Woolworths Half Price Week. Get Makona coffee sachets 20 pack for just $7.39 each. And Paseo 4-Ply Ultra Soft Toilet Tissue 6-Pack for just $4.90. 1 week only, while stocks last. Tea season exclusions apply.
10: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
11: हाँ, mortgage भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, your local developer. Expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.go.nz या call 0800-4-NZPMI.
12: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
13: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
14: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
15: मुझे भी।
14: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

0: फिर शाउट आउट का वक्त आ रहा है एंड मेरा साथ निभा रही हैं टीना फ्रॉम वगार क्वीन वगार किचन. तो आप माउंट रॉसल से समय मुझे सुन रही हैं, बिग थैंक यू टू यू. आप अपना कह रही हैं आप अपने पैकेजेस वगैरह निकाल रही हैं, क्या आप डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं और साथ साथ आप सुनते चले जा रहे हैं, थैंक यू सो मच. और यहाँ पे भी आ जाओ डिलीवरी करने के लिए. वैसे गरबा नाइट जो है ये अब दो ही दिन बचे हैं जहाँ पर राज गढ़वी आ रहे हैं और एक्सपीरियंस कीजिए ये वाइब्रेंट एनर्जी राज गढ़वी लाइव परफॉर्म करते हुए. इनको देखिए महात्मा गांधी सेंटर में इसी सैटरडे के दिन. बहुत कम टिकट्स बची हैं. eventstickets.co.nz के ज़रिए आप ये टिकट्स जाकर खरीद सकते हैं. स्वप्निल शाह से बातें कर रहे हैं 02243947 36 के ज़रिए और ये आपके लिए महात्मा गांधी सेंटर में किया जा रहा है.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: वैसे द बीट ऑफ बॉलीवुड एंड द हार्ट ऑफ एवरीबडी इज लाइंग इन द ट्रेलर ऑफ रामायण. अब आज सुबह ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. आई थिंक अभी इंडिया में टाइम हो रहा है लगभग 4:03, और ये ट्रेलर इंडिया के अनुसार 4:15 यानी कि 4:15 पर लॉन्च होने वाला है वर्ल्ड वाइड. तो ये पर्टिकुलर टाइम जो है इट्स आई थिंक ISTA के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इट्स द डॉन ऑफ रामायण. और ये जो ट्रेलर है ब्रह्म मुहूर्त में इसका चयन किया गया है. इस समय का एक टाइम जो है बड़ा सिग्निफिकेंट टाइम इसका इस्तेमाल किया गया. ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो एक ट्रेडिशनल टाइम होता है, बड़ा स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट होता है, हिंदू कल्चर के हिसाब से बड़ा सेक्रेड होता है और इसीलिए बहुत ही सिम्बॉलिक है. और ये द फ्रेज के द डॉन ऑफ रामायण ये हिंट करता है द बिगनिंग ऑफ द प्रमोशनल जर्नी, जहाँ पर फिल्म की जो स्पिरिचुअल एसेंस है और इस एपिक को आप बिल्कुल देख पाएंगे. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. मे बी जैसे ही ट्रेलर लॉन्च होगा आई विल कम बैक टू यू विद द डिटेल्स.
3: सोनम गुप्ता.

0: Eat better, live better.
1: Eat better, live better. लेकिन बहुत सारे कीवीज ने साइट किया है एक लार्ज मीटियोर. ये ब्लास्ट होते हुए न्यूजीलैंड स्काइज पर नजर आया है. ये स्टनिंग इमेजेस जो है ये निकल कर आ रही हैं और ये ट्यूसडे नाइट से दिखाया जा रहा है. वेडनेसडे को भी करीब 8:30 बजे फायरबॉल्स जो थे वो रिपोर्ट किए गए हैं. एक स्टार गेजर ने बताया कि एक ह्यूज बहुत बड़े साइज का शूटिंग स्टार पुकेकोए एरिया में नजर आया. प्रॉबेबली 5 times लार्जर देन एनीथिंग एल्स सीन बिफोर. अब ये फायरबॉल्स जो हैं ये कहा जा रहा है कि नॉट लेटर देन थर्सडे इन्हें कोलेट किया जाएगा. इनका जो डिटेल्स मिल रही हैं इनकी साइटिंग देखी जाएगी कि ये सदर्न डेल्टा के एरिया में नज़र आ रहे हैं. लेकिन ये एक एनुअल शो में जब मिड जुलाई मिड अगस्त में जो होने वाला है जो हर साल होता है उसमें कुछ ये अनोन कॉमेट जो है जो धरती से अर्थ से गुजर रहा है इसके बारे में पता चल रहा है क्या है ये. मैं इसकी फ़ोटो देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई मूवी देख रही हूँ. जियोनेट यू नो यूजुअली ये कंसर्न होता है इस तरह की फोटोग्राफ्स को देख के. मगर ये टोंगारीरो और रुपेहू के पास सेंट्रल प्लेटो के पास नज़र आया है और एक बड़ा सोनिक सा बूम क्रिएट किया गया है. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज बट ये बड़े इम्प्रेसिव से फोटोग्राफ्स नज़र आ रहे हैं. और ये जो फायरबॉल है ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कोई प्लेन सी में क्रैश हुआ या क्या हुआ है. कुछ तो हुआ है समथिंग टूवर्ड साउथ आइलैंड कुछ हुआ है वी डोंट नो. बट क्या आपने इसे नोटिस किया था या नहीं.
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुज़बे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की. बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: 2 शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुज़बे ओनली ऑन हम. विंगर मोटर्स मनारा.

0: लीजिए चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम रेंज कम फ्यूल बिना फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन मानुको और पोकेकोई या winger.co.nz ऑफर 31 जुलाई तक टीज एंड सीज अप्लाई
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
2: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
3: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials. Take 20% off Jasper J. Emerge office furniture and save $80 on a Brother laser printer now $299. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
4: Maddie didn't think she needed a DVS system.
5: I've got a heat pump.
4: That should do, but it didn't do it. Did it, Maddie?
5: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
4: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
7: Join our tribe!
6: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
7: join our tribe!
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
9: तो ड्रीम डायरी में एक चीज़ जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर यू नो हम कभी कभी किसी कंट्री के बारे में बात करने लग जाते हैं, कंट्री के बारे में ड्रीम करने लग जाते हैं. तो अगर आपको लगता है कि आपने कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ड्रीम किया है तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी हो सकती है. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, एक ही दरअसल हमारा माइंडसेट होता है. सर्टन टाइम्स वी हैव बीन थिंकिंग कि हम शायद इस कंट्री में जाएं, हम ये करें, हम वो करें, मगर उस समय अगर आपके माइंड में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है और आप न्यूजीलैंड में रहते हैं तो लगता है आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, हम वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए, हम जाने नहीं देंगे आपको. अरे वैसे अगर आप चले भी गए तो रोवा ऐप के ज़रिए आप हमें तो अपने साथ लेके जाएंगे ना.

थ्रोबैक की तरफ हम तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम यहां पर पहुंचे, हम आप तक, आपके दिल तक भी पहुंचना चाहते हैं। वैसे कई बार ऐसा होता है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को ध्यान से सुनते हैं, हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं उनको ध्यान से सुनते हैं। सो अनफिल्टर्ड में इस बार शनील लाल जो हैं, ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म, रिप्रेजेंटेशन एंड द सर्च फॉर इक्वालिटी। तो ये आप ड्राइव लिख के भेजें अगर आप इनका फुल ऑडियो, इनकी पूरी बातचीत सुनना चाहते हैं, किस तरह कल्चर, कम्युनिटी और किस तरह अ कॉमन मैन कैन एक्चुअली हेल्प प्रैक्टिकली एवरी डे, क्या एक्शंस आपके हो सकते हैं क्या नहीं। यू नो, कुछ मिथ्स होते हैं अराउंड द थिंग्स, एक कंजर्वेशन हमारे माइंड में रह जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, डेफिनेटली यू मस्ट लुक एट इट। 5599 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ये गाना बहुत दिनों से बजा नहीं और मैंने सोचा दिस इज़ द टाइम व्हेन वी कैन एक्चुअली रॉक इट विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। एंड थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अगर ये ट्रेलर आ गया हो तो कोशिश करूँगी इसका एक पार्ट आपके लिए ज़रूर बजाऊँ। ऑफ़ रामायण

बजाओ क्या। गाना बजाने से पहले मुझे आपको बताना है जो मैंने आपके साथ बात की थी, अगर आपने मिस आउट किया, कि एयरक्राफ्ट की जो विंडोज़ होती हैं वो राउंड क्यों होती हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, स्क्वायर क्यों नहीं होती। भाई हर जगह स्क्वायर विंडोज़ होती है, ट्रेन में भी और कहीं पे भी जाते हैं स्क्वायर विंडोज़ होती हैं, मगर ये विंडोज़ जो हैं यहाँ पर जब एयरक्राफ्ट में होते हैं तो वो राउंड क्यों होती हैं। चलो इसी के बारे में आपको जो मैंने बताया था वो मैंने अभी अपने रोवा ऐप के ऊपर पोस्ट कर दिया, और साथ साथ थोड़ी देर में मैं इसे पोस्ट करने वाली हूँ ऑन आर फेसबुक पेज।

आवाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: Eat better, live better.
1: So as I explained to you, I did tell you that excitement जो बहुत ज़्यादा generate हो चुका है और ऐसे में ये promotion जो है of the movie Ramayan जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर उनकी जीवनी के ऊपर ये कहानी है और ये लगभग ये ट्रेलर जो है ये अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले और कहा जा रहा है ट्रेलर ऑलरेडी वायरल हो चुका है. मेरी कोशिश है मैं इस वीडियो को देख पाऊँ, मैं समझ पाऊँ. अनफॉर्चुनेटली मेरे आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू टू दैट, बट डजेंट मैटर. अगर आप अगर देख सकते हैं अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक के पेज पर आप पहुँच सकते हैं और इसका ट्रेलर डेफिनेटली आप देख सकते हैं. तो यस, अब ये मूवी जो है दिवाली पे रिलीज होने वाली, एक्साइटमेंट कितना बिल्ड हो रहा है इसके लिए, आई एम वेरी वेरी श्योर. कमिंग अप नेक्स्ट इज सिक्स वर्ड स्टोरी.
2: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहां पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance center sale event today till Sunday.
7: There's thousands off display models, scratch and dent and end of line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
6: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance center. 9 Sylvia Park Road.
8: डिब्बा खुल गया.
9: भरत भाई टिफिन खुल गयो छे. संजना का डिब्बा खुल गया.
10: जब कशिश स्पाइस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा. फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया. हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले. बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
11: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी, All Together Oakland.
12: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 23 minutes? Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
13: Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
14: क्यों? क्या हुआ?
13: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800-564-424.
15: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advisor.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
16: Hi, hi, hi, hi.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
1: मैं ट्रेलर की तरफ ढूंढ ही रही थी और इतनी देर में देखो सिक्स वर्ड स्टोरी भी आ गई. लेकिन लगता है आप में बहुत ज़्यादा रोमांस भरा हुआ है. ही सीज द मी आई डोंट, ही सीज द मी आई डोंट. इज़न्ट दैट सो ट्रू? यू नो, ऐसा वी डू टॉक अबाउट आर पार्टनर्स जो हमें उस नज़र से देख पाते हैं जिस नज़र से शायद हम खुद को भी नहीं देख पाते. सो थैंक यू सो मच. 2030 आपका ये टेक्स्ट आया. ही सीज द मी आई डोंट. जो कई बार ऐसा होता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं ऑफकोर्स, लेकिन इसके साथ में हमें एक चीज़ इग्नोर नहीं करनी. आप वो पूछ रहे होंगे आप क्या, अब वो है कि करण औजला आने वाले हैं. अगर आप करण औजला के फ़ैन हैं तो बस आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, KA लिख के भेजना है 5599 पे. अगर आपको एक डबल पास जीतना है जो 25 अगस्त के दिन स्पा करीना में परफॉर्म करने आने वाले हैं, करण औजला के साथ एक उनके स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं. आपको क्या पता है, आप काफ़ी दिनों से हमें सुन रहे हैं तो डू यू नो कि हम किसकी बात कर रहे हैं. अ स्पेशल गेस्ट जो करण औजला के साथ उनके पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर में भाग लेने वाले हैं. डू यू नो हु इट इज़? अगर आपको पता है तो KA लिख के भेजिए 5599 पे, अपना नाम लिख के भेजिए, आपके डिटेल्स हम ऐड कर देंगे फॉर द डबल पास. वैसे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, हम rova.nz के ज़रिए या livenation.co.nz के ज़रिए आप क्लिक करके पता लगा सकते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.

वाओ ट्रेलर का थोड़ा सा लुक देखा है, बट अभी वो हिंदी वाला ट्रेलर का लिंक मुझे नहीं मिल रहा जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली आई विल गो हेड एंड फाइंड अ वे आउट दैट आप इसे शेयर कर सकें, आप भी देख सकें। वैसे ऑकलैंड रामायण संस्था अपनी मासिक जो कथा है वो कल करने वाले हैं 7:15 एट द ARST कम्युनिटी हॉल एट मांगरी। इसके साथ साथ श्री राम मंदिर का अखंड रामायण पाठ जो है ये 1st and 2nd August को होने वाला है, 7 बजे सुबह से शुरू होगा और संडे को 10 बजे के करीब ये समापन इसका किया जाएगा। महाप्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए राम राम ही राम नज़र आ रहे हैं और रामलीला जो है 8 अगस्त के दिन होने वाली है। NZ न्यूजीलैंड कल्चर ट्रस्ट जो है आपके लिए रामलीला लेकर आने वाले हैं। मेघ उत्सव जो है ये 8 अगस्त के दिन माउंट एल्बर्ट वॉर मेमोरियल हॉल में 4:30 to 8:30 होने वाला है, बिल्कुल फ्री एंट्री है। और ये मानसून का फेस्टिवल जो है आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये लाइवली कम्युनिटी इवेंट जो है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत यादगार मौका होगा। खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए एक एरिया है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं, गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, शॉपिंग है, बहुत कुछ आपके लिए है। इसके साथ साथ आप डिस्कवर कर सकते हैं चिन्मय मिशन के भागवत गीता के डिकोडिंग अ मास्टर क्लास, ये ब्रदर ईशान चैतन्य जो है ये लेकर आने वाले हैं। इन कॉमेंट्री जो है वह पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का होगा। ये सेशन 7 अगस्त के दिन 7:30 to 9 तक होने वाला है द न्यूलैंड कम्युनिटी सेंटर टोटारा एव न्यूलैंड में, और chinmaya.org.nz के ज़रिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल एक फ्री इवेंट है।

0: Kashika.
1: Wah.
2: How?
1: Adbhut.
3: So, ये तो अद्भुत बात है कि employment leave bill जो है ये definitely it's in for a change और ये न्यूजीलैंड की जो एम्प्लॉयमेंट लीव सिस्टम है इट हैज़ बिन वोटेड इन और ये हॉलीडेज एक्ट जो है ये चेंज होने वाला है विद आवर्स बेस्ड लीव और ये जो है ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब. इज़न्ट दैट गोइंग टू बी डिफरेंट एंड बेटर. जो नया लेजिस्लेशन है उसके ज़रिए एनुअल लीव सिक लीव पब्लिक हॉलीडे एंटाइटलमेंट्स आर अर्न टेकन एंड पेड. सो ये जो अब चेंज इमीडिएटली आपको ये नहीं पता चलेगा बट लगभग इस सिस्टम को 2 साल लग जाएंगे 24 मंथ्स लग जाएंगे इन ऑर्डर फॉर द न्यू सिस्टम टू कम इन जहाँ पे रोल प्रोवाइडर्स एम्प्लॉयज जो हैं अपने सिस्टम्स को अपडेट कर सकते हैं. सो ये जो ओल्ड जो लीव के जो लॉज थे ये काफ़ी टाइम से क्रिटिसाइज़ किए जा रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको अप्लाई करने के लिए वर्कर्स जिनके वेरीड आवर्स होते हैं जैसे कि टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी हेल्थ सेक्टर में ख़ास तौर पे जहां नॉन ट्रेडिशनल वर्क पैटर्न्स कॉमन होते हैं वहां आवरली रेट ज़्यादा चलते हैं आवरली बहुत ज़्यादा चलता है. तो जो एम्प्लॉयज़ कई बार होता है एंटाइटलमेंट्स को मिसकैलकुलेट कर देते थे उससे क्या होता था नॉन कम्प्लायंस होता था और उससे क्या होता था कि जो पेमेंट्स जो होते थे दोनों पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स में वो मिसकैलकुलेट हो जाते थे. होपफुली ये अब चेंज जो होने वाला है इट विल ब्रिंग थिंग्स और स्ट्रीमलाइन थिंग्स टुगेदर.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

रेस्क्यू मी रिसाइकल मी में पहुंचने से पहले पहले तो मैं ये बता दूं, आप सबकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, इक्की आ रहे हैं करण औजला के साथ परफॉर्म करने के लिए, कृणाल, बलप्रीत, अंतरप्रीत एंड हिमांशु, मितेश, एनजी, और कौन है, स्नेहा एंड साथ में है नैव। आप सबके आंसर सही हैं, आप सबका मैंने नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया है। ऑल राइट, नाउ इफ यू कम टू मी दैट इज रेस्क्यू मी रिसाइकल मी। अब आपको आपकी लिमिट पता होनी चाहिए कि आपका ये जो ऑयल होता है आप उसे कितनी बार रीयूज़ कर सकते हो। और एक हीट होती है, चाहे वो कनोला ऑयल हो, पीनट ऑयल हो, कभी कभी 5-6 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग व्हाट वाज फ्राइड इन दैट। अब ये कह सकते हैं हम कि जब ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लेवर को जो आपने जो भी कुक किया है, इट्स बेस्ट आप उसको कैटेगराइज करें और स्पेसिफिक जार में आप ऐड कर दें। जैसे कि चिकन ले लिया तो आप दूसरे आइटम को उसमें ऑयल में ना फ्राई करें। अब ये कभी कभी जो ऑयल होता है ना वो फोम होना शुरू हो जाता है इसका, या फिर एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाता है। तो इट इज़ दैट आप अपने टारगेट फ्राइंग टेम्परेचर पे पहुंच चुके हैं और वो एक डार्क सिरपी ब्राउन कलर का होने लग जाता है। अगर वो डार्क सिरपी कलर का होने लग गया है या उसमें फ्रॉथ आना शुरू हो चुका है, इसका मतलब उस ऑयल को आपको फेंक देना चाहिए। आप जैसे ब्रेडेड आइटम्स होते हैं उसमें काफ़ी टाइनी क्रम्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो ये जो ऑयल होता है ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह में भी इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल के आप उस ऑयल को दोबारा से इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। चलो यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, और कुछ बाकी है आपको बताना? आई थिंक आई मोर लेस डन, लेकिन गाना ला रही हूँ 20s का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सॉन्ग जवाद अहमद की आवाज़ में।

बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब आपके साथ साथ ये टाइम गुजर जाता है पटापट चुटकियों में मिनटों में। तो चलो इसी के साथ साथ मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि कल सुबह 10 बजे आपके साथ फ्राइडे के मूड में वापस लौट कर आऊँगी। लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कीजिए स्वीकार काशी का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, जो भी इसे आप कहना चाहें। कल गुरु पूर्णिमा को भी आपने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया होगा, मैंने भी किया था। लेकिन अभी के लिए चलती हूँ और कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड स्टे वॉर्म।